0: with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke ek khoobsurat show jiska naam hai Lunchbox Show. Well, yes, मेरा नाम केतन है. मैं अभी से लेके हूँ 3 बजे तक बहुत सारी बातें होने वाली, बहुत सारे गपशप होने वाले. वेल यस, 5:12 पे सनसेट हो गया, यानी कि ये तीसरा है, चौथा दिन. एक्चुअली 5 दिन हो गए, बीच में वीकेंड मैंने गिना नहीं, बट 5 दिनों से यही सेम टाइम पे सनसेट हो रहा है. दैट मीन्स आई पर्सनली फील, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट आई पर्सनली फील दैट अब लग रहा है यहाँ से द दिन विल गो लॉन्गर, क्योंकि ऑब्वियसली सेप्टेम्बर, राइट, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, वी आर इन द मिड जून, सो जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर में फिर से चेंज आ जाएगा. वाओ, मतलब दिन फिर बड़े हो जाएंगे. आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है? व्हाट कुड बी द रीजन, व्हाट कुड बी द रीजन, ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस सेगमेंट में, आज के इस शो में, लंच बॉक्स शो. बट अभी के लिए आप होम सिक रेमेडीज के लिए मुझे मैसेजेस भेजिए, जहां पे हम करेंगे बहुत सारी बातें, ढेर सारी बोले तो ढेर सारी. जी हाँ,
0: बचाओ क्या,

0: One of the song, Hairat Lucky Ali ka bahut hi pyara gana hai. Hairat hai. Well, Lucky Ali ki yaar sare gaane acche hain. Aur I was lucky enough to watch him live. परफॉर्मिंग यहाँ पे जब वो लास्ट ईयर आए थे दिवाली के टाइम. अमेजिंग शो था यार, अमेजिंग शो था. प्लस मुझे बात करने का भी मौका मिला तो वो भी मेरे लिए, इनफैक्ट वो मेरा पहला कोई सेलिब्रिटी से इंटरव्यू लेने का मौका था. इन अमेजिंग यार, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी यार. एक होता ना कि धीरे धीरे धीरे धीरे स्टेप्स अपन आगे बढ़ा रहे. पर एनीवेज शो को आगे बढ़ाते हैं. कुछ मैसेजेस मिले हैं यहाँ पे. एक्चुअली आपके लिए फोन लाइन भी ऑन है. इफ एनीवन वांट्स टू शेयर देयर होमसिक रेमेडीज, वो क्या मिस करते हैं यहाँ पे, और मे बी सम अदर पर्सन कैन कॉल अस बैक एंड जस्ट गिव कि ये चीज़ कहाँ मिल सकती है. सो यस, आप मुझे 0800-004-866 पे कॉल भी कर सकते हैं. बट अभी के लिए जो मैसेजेस है वो भी पढ़ लेता हूँ. आरती कहती हैं पपकुरा से, आई मिस ओपनिंग द डोर ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एंड फाइंडिंग नेबर्स ड्रॉपिंग ऑफ होम मेड स्वीट्स विदाउट एनी नोटिस. अरे क्या बात है, सो नॉस्टैल्जिक. वेल, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था, ऐसे रखे नहीं जाते थे क्योंकि काफ़ी पेट्स भी हुआ करते थे हमारे घर के आसपास, तो उस वजह से वो नॉक ही करते थे और जब तक हम रिसीव नहीं करते तब तक वो जाते नहीं रहे. बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो यार, बहुत ही मस्त वाली कहानी आपने बताई है. रोहित भाई कहते हैं, माई होमसिक रेमेडी इज कॉलिंग माई पेरेंट्स वाइल आई एम ड्राइविंग. इवन अ 10-minute चैट मेक्स ऑकलैंड फील अ लिटिल क्लोजर टू होम. नाइस. शालिनी कहती है बॉटनी से, आई मिस दोज लॉन्ग family lunches that start at 1 p.m. and somehow finished at 5 p.m. because nobody wanted to leave the table. वो conversation इतनी लंबी होती थी. उसके बाद विजय कहते हैं, in Fiji, if your car broke down, someone you know would stop and help. I miss that strong community feeling. ये यहाँ नहीं होता है क्या? I mean, like, you can always ask the help, I guess. मेरे को नहीं लगता कोई मना करेगा यहाँ पे, और शायद नहीं करेगा. I don't know, मतलब मैं उस सिचुएशन में नहीं आया हूँ तो मुझे पता नहीं है, और ना ही मैंने कभी सुना है कि यहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे ऐसा. नेहा कहती है, आई मिस हियरिंग माई मम सेज टेक अ जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड. इवन व्हेन आई इंसिस्टेड आई डिड नॉट नीड वन, नाउ आई हियर हर वॉइस इन माई हेड एवरी विंटर मॉर्निंग. क्या बात है. वेल, थैंक यू अगेन ऑल द लवली मैसेजेस जो आपने भेजे हैं. अभी ऑफिस शाउट आउट के लिए आप मुझे भेजिए मैसेजेस. व्हाट यू ईटिंग, वे यू ईटिंग, एंड कहां से आपने ऑर्डर किया है. एंड सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स, कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं अपने कलीग को या फिर अपने बॉस को या फिर अपने एम्प्लॉय को, बताइए मुझे. 5599 पे भेज दीजिए एंड आई विल ट्राई टू सर्च द परफेक्ट सॉन्ग अगर हमारे लाइब्रेरी में हुई तो, फॉर श्योर. बट डू सेंड मी टेक्स्ट ऑन 5599. लंच बॉक्स विद केतन.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
3: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: TradeDepot.co.nz.
7: Trade Depot is your number one online store for home improvement products. Acoustic wall paneling from $99. Solar panels, just $179. Bed frame and mattress, just $379. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online.
8: TradeDepot.co.nz.
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
2: Kahani of Indelible Homes.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in।
13: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
14: शिद्दत के साथ करते हैं
13: हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स।
15: लंच बॉक्स विद केतन।
16: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
15: हम ऑफिस शॉट आउट।
0: ऑफिस शाउट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये रहे टॉप 5 मैसेजेस जो यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहला है सुनील का। सुनील कहते हैं, केतन भाई, टुडे आई फाइनली बॉट लंच फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ बाइंग फूड आउटसाइड। माय वॉलेट इज वेरी प्राउड ऑफ मी। वेरी कूल, वेरी कूल। राजेश कहते हैं, आई जस्ट हैड अ लंच मेड बाय मी सॉरी माय 10-year-old डॉटर। The sandwich was a little messy but tasted like 5-star meal. क्या बात है, so cute Rajesh भाई। Bula, the boys at work all brought leftover today. Looks like nobody felt like cooking this morning. Prakash ने ये मैसेज भेजा है। Anjali कहती है, I'm working from home and my mom keeps bringing snacks to my desk. At this rate, lunch will become lunch. Tea and dinner combined. Nice. School lunch today was supposed to last until afternoon, but I finished everything during first break. Arav कहते हैं ये। Well, thank you so much for a lovely message। जो अगला गाना है, actually अभी नया movie का आ रहा है, Cocktail 2 का, माशुका, मामा माशुका, ऐसा कुछ है शायद, right? राघव छत्र ने गाया है ये। Enjoy करी ये song, मैं actually dedicate करता हूँ अंजलि को, जो कहती हैं दैट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड माय मॉम कीप्स ब्रिंगिंग स्नैक्स टू माय डेस्क। एट दिस रेट लंच विल बिकम लंच, टी एंड डिनर कंबाइंड।
13: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप सुनेंगे बहुत ही जल्द एक लेटेस्ट आज के दिन क्या हुआ था हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में। पर उससे पहले आई हैव टू डिस्कस समथिंग यार, हैव टू डिस्कस। अभी थोड़ी देर पहले मैं और सैंडी ऐसे वार्तालाप कर रहे थे हम जंतो जहज में, और उन्होंने इतने अच्छे पते की बात बोली है। मतलब बिफोर आई इंट्रोड्यूस हर, वैसे तो ऑफकोर्स शी डजंट नीड द इंट्रोडक्शन। हाई सैंडी, हाउ आर यू?
1: सही है, कैसे हो केतन?
0: मतलब पॉपुलर हो यार, हर जगह छाए हुए हो। मैं फेसबुक में जब भी ओपन करता हूँ या तो आपकी पोस्ट होती या स्टोरी होती या फिर कोई और शेयर करता है।
1: मतलब फाइनली मैं सोशल मीडिया पे अच्छा कर रही हूँ।
0: हाँ हाँ, जब यार मेरा देखा,
1: मेहनत कर रही हूँ,
0: 5,000 मेरा क्रॉस हो गया है फाइनली।
1: क्या बात कर रहे हो,
0: इतने सालों की मेहनत अब 5,000 हुआ।
1: मेरी वो जो रील है कितने पे गई है अभी? 2.3 मिलियन।
0: 2.3 मिलियन
1: व्यूज हो गए है
0: एक्चुअली। उसकी वजह से
1: शैंकी सिंह ने तो सलमान खान, सलमान खान, बिकॉज उसने बात की थी सलमान खान के बारे में, इफ यू मिस्ड आउट, शैंकी सिंह ने, तो वो रील थोड़ी फट गई।
0: मतलब वो एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ये पॉइंट भी है, पता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सलमान खान दिखाता नहीं बट वो काफी लोगों को हेल्प करता है।
1: हाँ।
0: तो ये भी उनमें से है। उसने कुछ बोला नहीं है लेकिन हमें इनडायरेक्ट कितनी हेल्प मिली, कितने फॉलोअर बढ़ गया,
1: 500
0: इस रील से। प्लस मैंने जो एक ऑडिट डाला अपना, उससे 500 फॉलोअर बढ़े मेरे।
1: 500 नहीं हो रहा है ये, है ना,
0: इंस्टाग्राम नहीं होता
1: मोनेटाइज,
0: कोलैबोरेशन करना पड़ता आपको।
1: Okay.
0: लाइक पेड जो होता ना, प्रोडक्ट हो गए या फिर किसी का बिजनेस हो गया तो उसमें वो चीज होती है। बट माई पॉइंट, आपने जो एक टॉपिक बताया था मुझे थोड़ी देर पहले, दैट यहाँ पे काफी लोग, मैंने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मिलते हैं अननोन से या किसी भी, व्हेन दे कम टू नो एज अ म्यूचुअल, वी आर कनेक्टेड टू म्यूचुअल, तो वो हमेशा बुराई ही करते हैं,
1: किसी ना किसी म्यूचुअल की बुराई करना शुरू कर देते हैं।
0: इंस्टेड ऑफ दैट, जो आपने टॉपिक बताया
1: मेरे को, या वो ऐसा है ना, थोड़ा वो थोड़ी ऐसी है या समथिंग, हाँ, कुछ भी,
0: जैसे शुरू, अरे तू जानता है उसको, हाँ यार वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। बट एक्चुअली आपने जो पॉइंट बताया काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन स्टार्ट विद, यार हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर एक में कमियां होती है और अच्छाइयां भी होती है, बट बातें सिर्फ कमियों की होती है। म्यूचुअल लाइक बिहाइंड,
1: व्हाई डोंट टॉक अबाउट पॉजिटिव,
0: पॉजिटिव थिंग क्यों नहीं बात करते? मतलब ये होगा मेरे ख्याल से स्ट्रेस, वैसे ही आदत तो ऐसे गायब हो जाएगा,
1: खत्म ही हो जाएगा यार दुनिया में ये सब कुछ, उसके पीछे बात करना, ये करना, वो करना, सब खत्म हो जाएगा। वन यू स्टार्ट, एक चीज पिक कर लो किसी की अच्छी बात, मे बी अगर कोई आपके साथ बात कर रहे यार वो तो ऐसा है, तो मे बी जस्ट पिक वन थिंग अबाउट दैट पर्सन एंड से कि लेकिन उसमें ये भी है जो बहुत अच्छा है।
0: हाँ, मतलब ये, क्योंकि मुझे ज्यादा लगता है लोगों को प्यार की जरूरत है ना कि नफरत की। और आज वैसे भी जो कांड हुए जा रहे हैं हर जगह देश दुनिया में, उसके लिए तो मेरे को लगता है और ज्यादा हम जैसे लोगों को तो और ज्यादा चाहिए। बट बढ़िया है यार, मतलब गुड पॉइंट यार, मतलब
1: वेरी गुड पॉइंट।
0: एक्चुअली पॉडकास्ट भी हो सकता है इसमें।
1: हाँ, और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, केतन के साथ यहाँ पे शेयर करना? मैं तो चले जाऊंगी बट केतन अभी है यहाँ पे, केतन के साथ शेयर करना 5599 पर।
0: मुझे कॉल भी कर सकते हैं वैसे, 0800-00486 पे कॉल करिए और आप अपनी राय भी दीजिए इस पे। वुड लव टू हियर योर फीडबैक एज वेल यार, वुड लव टू हियर मेरे लिसनर्स जो सुन रहे हैं मुझे, उनकी तरफ से भी
1: रिएक्ट करते हैं, आप भी इनपुट देते हैं नेगेटिव पे नेगेटिव, या फिर
0: कोई ऐसा क्यों बोलेगा, कोई ऐसा क्यों बोलेगा कि मैं बुराई करता हूँ।
1: हम सब करते हैं यार, नहीं बट मुंह पे
0: सामने को थोड़ी बोलेगा कोई, वो पीठ पीछे करेगा ना। बट हाँ, मतलब फिर भी लेट्स हियर फ्रॉम ऑडियंस, हमारे लिसनर, कॉल करिए 0800-00486 पे और बताइए कि आपका इस पे क्या टेक है। मैंने कहा था ना लास्ट वीक फ्राइडे को, कॉल्स आपको आते हैं, मैसेजेस मेरे को आते हैं।
1: लंच बॉक्स
0: में लोग खाते हैं, सो देयर हैंड इज मोर बिजी, सॉरी देयर माउथ कंपैरेटिवली, और आपके टाइम पे हैंड इज सो बिजी, देयर माउथ इज लाइक वेरी वेरी फ्री। बट थैंक यू सैंडी फॉर आने के लिए, अभी आप बने रहिए, कॉल तो आए नहीं है बट कोई बात नहीं, हम इसी बात पे हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात करेंगे थोड़ी देर में।

0: वेलकम बैक। काफी अच्छा लगा सैंडी से बात करके, बट यस हम आ जाते हैं ट्रैक पे फिर से। अभी की जो आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड है उसके अगर बात करें तो वो ये है कि 1935 की ये बात है जब न्यूजीलैंड के लेजेंडरी रनर जैक लवलॉक ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फेमस माइल ऑफ द सेंचुरी रेस जीती, और इस रेस में उनके सामने दुनिया के टॉप अमेरिकन रनर्स भी थे जिनमें ग्लेन कनिंगम और बिल बॉन्थ्रोन भी शामिल थे। वैसे रेस का वेदर बहुत ही गर्म और हवा तेज थी उस दिन, और इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की उम्मीद कम हो गई थी। लेकिन शुरू में ग्लेन डॉसन लीड कर रहे थे, लेकिन लास्ट स्ट्रेट से पहले लवलॉक ने अपनी स्पीड बढ़ाई और सबको पीछे छोड़ दिया, और उनकी रेस 4:11.5 सेकंड में जीत ली। ये जीत सिर्फ एक रेस की जीत नहीं बल्कि लवलॉक को दुनिया के सबसे बेहतरीन मिलर्स में शामिल करने वाली परफॉर्मेंस भी थी।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम। Keep calm because Punjabi swag is on.

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: It's cold outside and the couch is on your mind, but you can't relax till you leave hunger behind. Hot pumpkin soup will really help you unwind. It's what you should need.
3: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
4: You don't need your toilets cleaned, do you?
3: Find a cheaper mechanic in Invercargill? Pretend you know what they're talking about?
5: Pretty sure the carbonara's playing up.
3: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
5: True Midas.
6: Wanna go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
7: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
8: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
7: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalvari Wagh and Vedang Raina.
8: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
7: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
0: Lunchbox with Ketan.
9: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
10: चटनी शॉट्स।
11: वेल, न्यूजीलैंड रिच लिस्ट 2026 रिलीज हो चुकी है और इस साल भी देश के सबसे अमीर बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर की नेट वर्थ में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। रिच लिस्ट इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में भी एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। फूड सेफ्टी अलर्ट, कुछ सुपरमार्केट डेली मील्स के रिकॉल्स किए गए हैं क्योंकि उनमें ग्लास के छोटे पार्टिकल्स होने का रिस्क पाया गया है। कंज्यूमर को एडवाइस भी दिया गया है कि अफेक्टेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ना करें। साइंस की दुनिया से एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, ऑस्ट्रेलिया में मिले इंसिडेंट एंशियंट टीथ फॉसिल्स ने मार्सुपियल फैमिली ट्री के इवोल्यूशन को लेकर नए क्लूज दिए हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये फाइंडिंग पुरानी थ्योरीज को चैलेंज कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रिसेंट शार्क अटैक के बाद एक्सपर्ट्स ने शार्क कल को लेकर क्वेश्चन की अपील की है। उनका कहना है कि इमोशनल रिएक्शन के बजाय साइंस बेस्ड सॉल्यूशन पर फोकस होना चाहिए। स्पोर्ट्स अपडेट में जापान और नीदरलैंड के बीच फुटबॉल मैच 2-2 ड्रॉ हो रहा, जहां डाइची कुमारे ने के लेट हेडर ने जापान को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिलाया। एंटरटेनमेंट में फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से ऑनर किया गया, जो उनके स्पोर्टिंग और कल्चरल इम्पैक्ट को सेलिब्रेट करता है। कल्चर और कम्युनिटी न्यूज में टे फंगानुई तारा कापाहाका रीजनल फाइनल्स के क्वालिफायर में पाकियतुआ ने इंप्रेसिव विक्ट्री हासिल की है और अब नेशनल स्टेज की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं।
0: दिल

जगाती है कयामत कोई।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला, 1.4 mm रिकॉर्ड हो गया आज की पानी की बरसात, बरसात पानी की होती है, बट आज का सनसेट होगा 5:12 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेलेस से बहुत सारी बातें और भी करनी है इस आर में, वैसे आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, जैसे कि ऑफ कोर्स आप एंजॉय कर सकते हैं हमारा लंच टाइम फ्रंट लाइन, जिसका टॉपिक मैं थोड़ी देर में लेके आने वाला हूँ, आपको बताऊंगा कब आपको मैसेजेस भेजने हैं, पर उसके साथ साथ आपको बॉलीवुड की भी खबर यहाँ पे देखने को मिलेगी। वेल, एक बहुत ही बढ़िया हुआ क्योंकि ऑफकोर्स स्पोर्ट्स में भी अगर देखे हैं तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ शुरू हो चुका है। क्रिकेट शुरू हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच हुआ था, शुरुआत हो चुका है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, और साथ में फीफा वर्ल्ड कप भी हो चुका है, तो काफ़ी एंटरटेनिंग है फॉर ऑल द स्पोर्ट्स लवर्स। बट यस, मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है, उसके बारे में बता देता हूँ। आप 104.2 FM के जरिए तो सुनते ही, बट रो ऐप के जरिए भी आप हमें सुनिए, बिकॉज उसके थ्रू आप काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉडकास्ट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। हमने हाल ही में निवेदिता शर्मा जी के साथ एक खास पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, जिसमें थैलेसीमिया और इसका साउथ एशियन कम्युनिटी पर इम्पैक्ट डिस्कस किया है। इस कन्वर्सेशन में हमने बात की है कि थैलेसीमिया क्या है, ये साउथ एशियन में ज़्यादा क्यों पाया जाता है, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री का क्या रोल है, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, और अर्ली स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे हमने ये भी डिस्कस किया है कि थैलेसीमिया को मेडिकल ट्रीटमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर मॉनिटरिंग और फैमिली सपोर्ट्स के थ्रू इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। पॉडकास्ट का मकसद सिंपल है, यहाँ पे

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल यस, आप अपना फोन उठाइए और मुझे 5599 में टेक्स्ट भेज दीजिए रिगार्डिंग लंच टाइम रेंट लाइन। वेल यू ऑल नो दैट व्हाट इज इट, व्हाट इट इज एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होती है। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज भी भेजते हैं जहाँ पे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए काफ़ी इरिटेट फील करते हैं, बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग। सो यस, फोन उठाइए और 5599 भी भेज दीजिए। बट जस्ट इन केस लास्ट मुझे कुछ मैसेजेस मिले, उन्होंने शायद सुना नहीं उस पॉडकास्ट के बारे में कि क्या करना है। वेल आई वॉज टॉकिंग, बट शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है सुना नहीं दिया हो। बट यस, जो पॉडकास्ट की बातें मैं कर रहा था थैलेसीमिया के बारे में, अगर आपको वो सुनना है तो मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक वो लिंक भी मिल जाए, ऑडियो लिंक। जी हाँ, एंड ऑफ कोर्स कुछ और भी अगर पॉडकास्ट सुनना है, स्पेशली अबिट्स कन्वर्सेशन विद विजन पूजा, तो उसके लिए भी आप BF लिखिए और 5599 पे भेज सकते हैं। बट अभी के लिए मेक श्योर कि आप लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम। लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: चलिए बात करते हैं अभी की लेटेस्ट खबर की. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वेस्टपैक इकोनॉमिस्ट सेज पेट्रोल प्राइस इन न्यूजीलैंड कुड फॉल बैक बिलो 3 per liter. जी हाँ, अगर जो इमर्जिंग पेस है एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग ईरान लीड और सस्टेन रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर होता है तो डेफिनेटली जो ग्लोबल प्राइसिंग है पेट्रोल और डीजल की वो कम हो सकती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है यार, बहुत ही बढ़िया बात है ये चीज़. बट यस, एट द सेम टाइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ग्लोबल ऑयल सपोर्ट में प्रेशर पड़ा था, जिसकी वजह से दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस बढ़ती नजर आई. अब पीस डील के खबर के बाद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है. जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो कुछ हफ्तों बाद पेट्रोल की प्राइस भी कम हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि पीस डील कितनी देर तक टिकती है और ऑयल सप्लाई नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है. वैसे इसके अलावा एक्सचेंज रेट्स, टैक्सेस और लोकल फ्यूल मार्केट के फैक्टर्स भी पेट्रोल की फाइनल प्राइसेस को अफेक्ट करती है. फिलहाल अगर सिचुएशन स्टेबल रहती है तो न्यूजीलैंड के ड्राइवर्स को आने वाले हफ्तों में फ्यूल प्राइसेस में अच्छी रिलीफ मिल सकती है और पेट्रोल दोबारा $3 per liter से नीचे आ सकता है, विच इज़ गुड न्यूज़.

0: काफी टाइम बाद ये गाना सुना है, बट एक नए वर्जन की, नए वर्जन में। जी हाँ, ये दुरिया मोहित चौहान ने गाया है, पुराना भी इन्होंने ही गाया था। बट यस, कुछ एक अभी स्पेशल अपडेट, द FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप भी होने जा रहा है 15 जून यानी कि आज से शुरू होने वाला है 21 जून तक हार्बर, नॉर्थ हार्बर में। हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विथ हम। जी हाँ, योर चांस टू गेट बिहाइंड द विंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन जब वो टाइटल यू नो डिफेंड करेंगे हमारे होम सॉइल पे। ऑफ कोर्स 8 कंट्रीज आ रही हैं, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास हॉकी होने वाला है और एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल हॉकी इवेंट होने जा रहा है न्यूजीलैंड में काफ़ी दिनों बाद। आप हॉकी NZ काफ़ी दिनों बाद नहीं, काफ़ी सालों बाद एक्चुअली, hockeynz.flickit.co.nz पे जाइए और वहाँ पे आप टिकट खरीद सकते हैं। बट यस, हमारे लिए, हमारे लिसनर के लिए स्पेशल बात यह है कि आप हमें हॉकी लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप डबल पास जीत सके इस गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। सो यस, हॉकी लिखिए HOCKEY और 5599 पे भेज दीजिए। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया मौका है, हम हमारी टीम के साथ स्टैंड करते हैं और उन्हें फुल सपोर्ट के लिए भी रेडी रहते हैं ताकि फुल ऑन हूटिंग मिले, फुल ऑन कॉन्फिडेंस मिले हमारी टीम को। ऑफ कोर्स होम सॉइल है तो एडवांटेज तो उनको मिलना ही चाहिए, राइट?
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
3: Weekdays, 6 to 10 a.m.
8: Bunnings Trade is here to help get interior jobs sorted with a huge range of kitchen and laundry cabinetry, flooring, wardrobes and more. Our kitchen experts can help with the plan and design of your next job. Call 0800 134 872 to arrange a quote or book a consultation at Bunnings Trade.
9: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: लंच के मंच पे
3: वेलकम बैक। बॉलीवुड की खबर ले लेते हैं। बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म कॉकटेल 2 को रिलीज से पहले CBFC ने ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि ये फिल्म सिर्फ 18 साल से ऊपर की ऑडियंस के लिए ही बनी है। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे। और ये सर्टिफिकेशन कृति सैनन के करियर की पहली ए रेटेड फिल्म है, जबकि रश्मिका मंदाना के लिए ये दूसरी ए रेटेड फिल्म है। उनकी पहली फिल्म एनिमल थी। शाहिद कपूर के करियर की ये पांचवी एडल्ट रेटेड फिल्म बन गई है। फिल्म का रन टाइम लगभग 2 घंटे 30 मिनट का है और ये 19 जून को रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में। ये 2012 की हिट फिल्म कॉकटेल का स्पिरिचुअल सीक्वल माना जा रहा है, लेकिन उसकी स्टोरी और कास्ट बिल्कुल नई है, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए, बिकॉज मुझे पहली भी बहुत पसंद आई थी। वैसे चलिए बात करते हैं। एक्चुअली मैं कल यही सीक्वल की बात हो रही थी तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बंदे ने इतना सही बताया कि 2006 में जो सबसे पहली जो सीक्वल मूवी थी वो एनी गेसेस कौन सी थी जिन्होंने दौर जो है वो शुरू किया था। वेल, पहली थी फिर हेरा फेरी। जी हाँ, ये पहली सीक्वल थी जो काफ़ी एंटरटेनमेंट लगी लोगों को। जो मुश्किल से सीक्वल जो होती है इतनी खास नहीं लग रही आजकल के टाइम पे, बट यस ऐसा ऑफकोर्स नॉट विद एवरी फिल्म, बट मोस्टली जितनी फिल्में हैं उनमें काफ़ी ऐसा होता है दैट मेजॉरिटी आर नॉट डूइंग सो वेल इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट दैट पीपल डजंट वांट टू कम, पीपल डेफिनेटली वांट टू कम, बट पीपल डजंट एंजॉय द फिल्म जो सीक्वल वाली होती है। तो यस, पहली जो फिल्म थी वो थी फिर हेरा फेरी। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद आई थी ऋतिक रोशन की क्रिश, जी हाँ, जो 2007 में रिलीज हुई थी आई गेस, जो कोई मिल गया के एकदम ही अपोजिट था। और जिस तरह से राकेश रोशन ने एक एलियन बेस्ड यानी कि एक साइंटिफिक अनप्रूवन चीज़ को कैसे सुपर हीरो में उन्होंने कन्वर्ट करके सीक्वल स्टोरी बना दी, इट वाज लिटरली हैट्स ऑफ टू राकेश रोशन, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। एंड इनफैक्ट आज की तारीख में देखें तो बड़े पर्दे पर सिर्फ एक ही सुपर हीरो है जो बहुत बढ़िया चल रहा है और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम शक्तिमान, या वो थोड़ा टीवी पे था। एंड देन उसके बाद आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, ये भी एक सीक्वल था जो सचमुच अपनी कैटेगरी, जो अपना जॉनर था उसको कम्प्लीटली चेंज करके, यानी कि एक गुंडे मवाली टाइप फिल्म ना बना के उन्होंने कम्प्लीटली ये बना दी थी लगे रहो मुन्ना भाई। इफ़ यू हैव सीन इट, काफ़ी सीख भी दी थी उस फिल्म में। तो यस, हेड्स ऑफ टू राजकुमार ईरानी। एंड उसके बाद फिर से क्रिश को ही टक्कर, क्योंकि उस फिल्म, उस साल की सबसे बड़ी फिल्म क्रिश ही थी, लेकिन उसी को टक्कर देने आ गई थी एक और नई फिल्म जिसमें खुद क्रिश ही थे। मैं बात कर रहा हूँ धूम फ्रेंचाइजी की सेकेंड मूवी, यानी कि धूम 2। ये जो दौरा था ये एक्चुअली सचमुच इतना बढ़िया था दैट उसमें जो भी सीक्वल्स आए सब एक से बढ़कर एक आए थे और सब ने बहुत एंजॉय भी किया। बट उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर एनी सीक्वल जो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग रही हो। ऑफकोर्स फिल्में हैं जैसे कि धमाल का सीक्वल काफ़ी एंटरटेनिंग था, गोलमाल का भी बहुत ही बढ़िया रहा है। एंड बताइए मुझे आपके अगर जहन में आपको पता है कि कौन सा ऐसा सीक्वल है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है अपार्ट फ्रॉम दीज 4 और 5 फिल्म, तो डू लेट मी नो। 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भेज के बता सकते हैं। बढ़िया, सभी और कौन सी फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली हैं उस पर भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं। वैसे आपने धमाल 4 का ट्रेलर देखा है, कैसा लगा आपको बताइए मुझे, उसका भी जवाब दीजिए 5599 पे। कॉकटेल 2 होने वाली है 3 दिन 4 दिन बाद रिलीज, 19 जून को। वेलकम टू द जंगल 26 जून को। अल्फा जिसमें आलिया भट्ट है 3 जुलाई को, 3 जुलाई को, शर्वरी भी है उसमें, 3 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। और धमाल 4 10 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। सो यस, आप मुझे 5599 पर टेक्स्ट भेज के बताइए कि आपने अगर धमाल 4 का ट्रेलर देखा है या फिर वेलकम टू जंगल का देखा है, तो 5599 पर मुझे टेक्स्ट करके बताइए आपको कैसा ट्रेलर लगा।

वेल अभी का एक्साइटिंग सवाल मेरी तरफ से ये है कि आपने जब पहली नौकरी की थी तो आपने सबसे पहली परचेज क्या की थी? आप मुझे 5599 बताइए कि व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू इन्वेस्टेड और यू बॉट और यू गिफ्टेड समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपको पहली पॉकेट से सैलरी आई थी। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने पहली बार मुझे ₹8,000 आए थे, यानी कि यहाँ के हिसाब से आई थिंक 80 समवेयर अराउंड 180 डॉलर आएंगे समय। जी हाँ, तो उतना मेरे को आया था। मैंने दो फ़ोन लिए थे और दोनों स्मार्टफोन थे, वो मैंने मम्मी और पापा को गिफ्ट किया था। दे वर सो हैप्पी एंड आई नो वो जो इंप्रेशन होता है एक अलग ही फीलिंग होती है। आई कैन इमेजिन नाउ कि यार जब आपका बच्चा आपके लिए कुछ बनाता है या कुछ करता है स्पेशल करता है आउट ऑफ बॉक्स जाके, ऑफकोर्स यू फील सो ग्रेट। सो यस, आप भी मुझे 5599 बताइए कि आपने अपनी पहली सैलरी से क्या गिफ्ट दिया था, क्या चीज़ खरीदी थी खुद के लिए या फिर किसी और के लिए। टू लेट मी नो 5599 पे।

0: गूंजेगी।
1: क्या नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। कीप लिसनिंग टू मी फॉर थ्रू ऑफकोर्स 104.2 FM, जी हाँ, अंटिल 3। उसके बाद सैंडी जुड़ेंगे इन द कॉफी ब्रेक एंड उसके बाद ड्राइव शो में उनका साथ देंगे रुजबे। पर यस, आप बने रहिए बिकॉज इस आर में काफ़ी खास खास चीज़ें हैं। एक तो आपको दो तीन चीज़ों के बारे में बताना, यानी कि कुछ यहाँ पे इवेंट्स होने जा रहे हैं उसके बारे में बताना है। सेकेंड, लेटेस्ट खबर क्या होगी वो भी बताएंगे, और साथ में ऑफकोर्स कुछ कॉम्पिटिशन भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। बस इन्जॉय करिए जान निसार फीमेल वर्जन आशीष कौर की आवाज़ में, आप इन्जॉय करिए।
2: बचाओ क्या,

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे। हम
2: वेल यस, एक बहुत ही बढ़िया एक इवेंट होने जा रहा है, गुड बाय। जी हाँ, ऑकलैंड, आप सब रेडी हो जाइए फॉर इवनिंग ऑफ लाफ्टर एंड एंटरटेनमेंट, जहां पे गुड बाय नी एक्सचेंज ऑफर स्टेरिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया। वेल यस, एक ब्रांड न्यू कॉमेडी शो होने जा रहा है यहाँ पे। गुज्जू भाई फाइंड हिमसेल्फ एक अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में फंस जाते हैं सिचुएशन में, जहाँ पे काफ़ी हिलेरियस कॉमेडी भी डाली है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स हैं उसमें, और ऑफकोर्स हंसी के फवार तो है ही। सिद्धार्थ रंडेरिया, गुज्जू भाई प्रोडक्शंस, आप सभी के लिए लेके आएंगे बहुत ही बढ़िया शो। 3 जुलाई को होने वाला है, 7:30 बजे के बाद आप विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में पहुँच जाइए, लेकिन उससे पहले आप टिकट खरीद लीजिए। प्रीमियर टिकट premiertickets.co.nz पे जाइए और इस अमेजिंग शो का लुफ्त उठाए बाय बाइंग द टिकट। यस, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एक और चीज़ होने वाली है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद, एक ऑलरेडी थिएटर चल रहा है फ्रॉम 3 जून अंटिल 20th जून, जो कि बलून डॉग है, रविंद्रनाथ टैगोर के एक बी लव्ड स्टोरी काबुली वाला पे, यू नो, उससे इंस्पायर्ड है। आप जाइए और देखिए, बहुत ही अमेजिंग शो होने जा रहा है, रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लुइस। जी हाँ, सो यस, जितना जल्दी हो सके आप इसको बुक कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी बढ़िया लोग जा रहे हैं और काफ़ी अमाउंट में लोग इसका रिव्यू भी अच्छे से दे रहे हैं। सो यस, iticket.co.nz से जाके आप टिकट खरीद सकते हैं। 3 जून से 20 जून तक होने वाला है ये, 3 जून से शुरू हो चुका था, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 ही दिन बचे हुए हैं। क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में ये हो रहा है, बलून डॉग।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Oh my, oh my, Bray South Road, greater than ever.
2: South Auckland's buses just became a lot better.
1: Weymouth Road, way better buses.
2: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
1: Woody, no worries. MIT, A-OK.
2: Search AT, Better South Auckland Buses for details.
1: Airport, got your transport.
2: Then turn up and go.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
0: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
6: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
5: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalvari Wagh and Vedang Raina.
6: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
5: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
12: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
11: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
12: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: वेल, थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था कि आपने अपनी पहली पगार से यानी कि फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदा था, क्या गिफ्ट दिया था। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोगों ने गिफ्ट दिया होगा या फिर पैसे दिए होंगे अपने घर पे। बट यस, कुछ मैसेजेस आए हैं। एक ने लिखा है उन्होंने अपनी मॉम को रिंग दी है, दूसरे ने कहा है कि उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी अपने मॉम डैड के लिए इंडिया में एक मंदिर के लिए। क्या बात है यार, वेरी नाइस ऑफ यू। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक फ़ोन लिया था क्योंकि उस टाइम मैं मुंबई में था और आई वॉज टू यंग टू प्लान आउट एनीथिंग, क्योंकि मुझे डर भी था कि यार मैं प्लान तो करूँ लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उस वजह से मैंने वो नहीं किया। इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं था बट इट वॉज वर्थ गिविंग द गिफ्ट। एंड उसके बाद एक ने लिखा है द फर्स्ट सैलरी वॉज टू ब्रिंग टू न्यूजीलैंड। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी वेल डन यार, काफ़ी अच्छी जॉब मिली आपको लग रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस। अभी लेटेस्ट खबर भी पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड की NBR रिच लिस्ट 2026 रिलीज हो चुकी है और इस साल सबसे बड़ी बात यह है कि देश में बिलियनर्स की संख्या 18 से बढ़कर 26 हो चुकी है। वाओ, सिर्फ एक साल में 8 और नए बिलियनर्स जुड़े हैं, यानी कि हम सब गरीब होते जा रहे हैं लेकिन कुछ और हैं जो बिलियनर पे बिलियनर बनते जा रहे हैं, विच इज ग्रेट यार, ग्रेट। रिच लिस्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के सबसे अमीर 150 लोगों और फैमिलीज की टोटल वेल्थ अब लगभग 129 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस साल लिस्ट में 19 नए एंट्रेंट्स भी शामिल हुए हैं जिनकी कंबाइंड वेल्थ $10 बिलियन से ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बिजनेस वेंचर्स के कई कीवी एंटरप्रेन्योर की वजह से वेल्थ की काफ़ी बढ़ाई हुई है। और साथ ही ये रिपोर्ट्स उस वक्त आई है जब कई न्यूजीलैंडर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर के सामना कर रहे हैं, इसीलिए वेल्थ इनइक्वालिटी पर भी कैरेक्टर काफ़ी चर्चा हो रही है। वैसे ओवरऑल NBR रिच लिस्ट 2026 दिखाता है कि न्यूजीलैंड में प्राइवेट वेल्थ रिकॉर्ड लेवल्स और पहुंच रही है और देश के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर अपनी संपत्ति में तेज़ी से वृद्धि भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। वाह, कुछ कॉल हो इस पे तो डू लेट मी नो, आप 5599 पे मुझे बता सकते हैं।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। ये सब बात करते हैं कुछ फीफा वर्ल्ड कप मैचेस की। वेल कल के दिन, कल नहीं एक्चुअली, ओवर द वीकेंड काफी मैचेस हुए और काफी एंटरटेनिंग भी रहे हैं। कतार वर्सेस स्विट्जरलैंड के बीच मैच हुआ था जो ड्रॉ हुआ है 1-1 के स्कोर के साथ। ग्रुप सी की तरफ से ब्राजील वर्सेस मोरक्को भी हुआ था, वो भी टाई ही रहा है। उसके बाद हाइती स्कॉटलैंड के बीच में मैच हुआ था जिसमें 0-1 से स्कॉटलैंड जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की के बीच में ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है ग्रुप डी से, 2 गोल किए हैं उनकी तरफ से। वैसे आज भी कुछ मैचेस हैं, जर्मनी वर्सेस कुराकाओ उसके बीच में भी मैच हुआ था 7-1 से। जर्मनी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रही है। एंड एक मैच हो रहा है स्वीडन वर्सेस टूनिशिया जो कि 1-0 से स्वीडन ने बढ़त बना रखी है। अभी चल रहा है मैच तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। नीदरलैंड वर्सेस जापान का जो मैच है वो ड्रॉ हुआ है 2-2 से। और उसके बाद आइवरी कोस्ट और इक्वेडोर 1-0 से आइवरी कोस्ट ने मैच जीत लिया है। कल भी कुछ मैचेस होने वाले हैं, स्पेन वर्सेस काबो वर्डे, बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट, सऊदी अरेबिया वर्सेस ऑरिग और ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड का कल मैच होने वाला है ग्रुप जी में। ये मैच होना यानी कि 1 बजे मैच ये शुरू होगा, देखने वाला होगा, मेरे टाइम पे होगा। सो यस, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू कीप यू पोस्टेड कि क्या क्या चल रहा है। दूसरी तरफ क्रिकेट की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, आगाज़ हो चुका है और उसमें अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था और देख लेते हैं, 170 रन बनाए थे इंडिया ने पहले खेलते हुए 6 विकेट खोकर और जवाब में पाकिस्तान 106 पे ऑल आउट हो गई। उसी के साथ पॉइंट में भी ऊपर आ चुकी है। और बांग्लादेश नीदरलैंड के बीच में भी मैच हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने मैच जीत लिया है। उसके बाद आने वाले मैचेस यानी कि आज के दिन न्यूजीलैंड वर्सेस 17 जून को नेक्स्ट मैच होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, वो देखने लायक होगा। 1:30 बजे वो भी शुरू होगा, उसको भी देखने में मज़ा आएगा। इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच भी मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश भी 17 तारीख को मैच होगा, तो देखते हैं अभी क्या रहता है, कैसा रहता है। लुकिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग है ये मंथ, तो बहुत ही जोरदार जाने वाला है। एक तरफ क्रिकेट, दूसरी तरफ फुटबॉल। क्या क्या सपोर्ट करते हैं, लाइक व्हाट आर यू एक्चुअली वॉचिंग राइट नाउ, क्रिकेट और फुटबॉल? आप 9599 पे मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं।

0: स्वागत करते हैं फिर से लंच बॉक्स शो में। वेल यस, न्यूजीलैंड में एक नई स्टडी से पता चला है कि कई कीवी कंज्यूमर्स जेनी एडिटेड काउस के मिल्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, उसमें क्लियर बेनिफिट होने चाहिए और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। रिसर्चर्स ने लगभग 1100 कंज्यूमर्स पे सर्वे किया और उनसे पूछा कि अगर मार्केट में जेनी एडिटेड मिल्क आए तो क्या वो उसे खरीदना पसंद करेंगे। सर्वे में नॉर्मल मिल्क, ऑर्गेनिक मिल्क और जेन एडिटेड मिल्क के अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। रिजल्ट से पता चला कि लोग अभी भी ट्रेडिशनल मिल्क को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर जेन एडिटेड मिल्क सस्ता हो या उसमें कोई ख़ास फ़ायदा हो जैसे एलर्जी फ्री होना या क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्शन, तो उसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलर्जी फ्री वर्जन जो है उसमें दिखता है। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जेन एडिटिंग से ऐसी डेयरी काउज डेवलप की जा सकती है जो गर्मी को और भी बेहतर हैंडल कर सके और कम मीथेन प्रोड्यूस कर सके, जिससे फार्मिंग ज़्यादा सस्टेनेबल बन सके। वैसे ओवरऑल स्टडी ये दिखाती है कि कंज्यूमर्स पूरी तरह से जेन एडिटेड फूड के खिलाफ नहीं है, अगर उन्हें क्लियर पर्सनल बेनिफिट और रीजनेबल प्राइसेस मिलती रहे तो फ्यूचर में जेन एडिटेड मिल्क को मार्केट में अभी अच्छी एक्सेप्टेंस मिल सकती है। व्हाट डू यू थिंक? 1599 पे आप मुझे इसका रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। लंच बॉक्स विद केतन। मुझे पसंद है लड़का।
1: ड्राइविंग यू होम। Drive show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Say no to mold and mildew. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800 DVS DVS.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
8: अच्छा
7: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह।
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

0: RNZ.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
0: हम.
1: TikTok.
4: Well, TikTok की बात करें तो हमेशा मेरे दिमाग में एक ही बंदा आता है, क्योंकि वो सचमुच ऐसा लग रहा है कि मार्स ग्रह पे पहुंच कर ही मानेगा. वेलेस उसी के लिए वो बहुत सारे सर्वे करवा रहा है. इलॉन मस्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनकी कंपनी SpaceX ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करके लगभग 75 बिलियन पैसे डॉलर्स जो हैं वो रेज किए हैं. कंपनी के शेयर्स की ज़बरदस्त डिमांड पर देखने को मिली और डेब्यूट के बाद वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन से भी ऊपर हो चुकी है. वाओ, अब सबकी नज़र IPO के बाद के अगले टेस्ट पर है. क्या SpaceX अपनी इतनी बड़ी वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगी? इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट्स, पॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, स्टारलिंक और AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर नजर रखे हुए हैं. वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ एनालिस्ट को लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशन काफी एग्रेसिव है. इसीलिए आने वाले मंथ्स में अर्निंग रिपोर्ट्स और बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. IPO के बाद भी इलॉन मस्क कंपनी पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि उनके पास लगभग 82% वोटिंग पावर बनी रहेगी. ओवरऑल SpaceX का स्टॉक जो है वो स्टॉक मार्केट डेब्यू के हिस्टोरिक सक्सेस रहा है, और असली चैलेंज जो है वो अब शुरू होगा. वैसे तो इन्वेस्टर्स को ये दिखाना कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और एम्बिशंस उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैल्यूएशन को सपोर्ट कर सकती हैं. वाओ, दैट्स सो ग्रेट. विलेस, आई हैव वन क्वेश्चन विद सैंडी. सैंडी, मेरा सवाल है, क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड
5: इलॉन मस्क की.
4: हाँ, मतलब ये सवाल था, बट खैर आपने जवाब पहले दे दिया. खैर, ये ऐसा सवाल है, मेरे को लगता है कि बच्चों को पता होगा. बट माई मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन ये तो हुआ टॉप लिस्ट. कभी कभी सोचा आपने कि अगर हमारी भी रैंकिंग दिखाई जाए पब्लिक के सामने,
5: कि वो पैसे के मामले में,
4: हाँ, लाइक हम कौन सी रैंकिंग में खड़े हैं.
5: ओके, तो सबसे अमीर कौन होगा, तुम्हें ये ऐसा पूछ रहा है लिस्टर से?
4: पूछना तो नहीं था, बड़ा अपना अच्छा रीजन दिया.
5: कौन लगता है आपको कि हम पे जितने भी अनाउंसर्स काम करते हैं उसमें से सबसे अमीर कौन हो सकता है?
4: अमीर कौन होगा बताइए. 55 99 आप टेक्स्ट नहीं, एक्चुअली कॉल करिए.
5: कोई भी रिवील तो नहीं करता है अपने एसेट्स या कुछ भी है, लेकिन आपको क्या लगता है?
4: वैसे आप गिना तो दो, अपन किस किस की बात कर रहे हैं.
5: सो हम यहाँ पे सबकी बात कर रहे हैं. वी टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग से. ओके, विजय, पूजा, ठीक है,
4: उनका कंबाइंड करना है, अलग अलग
5: अलग अलग भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, कहीं वही अमीर ना निकले सबसे ज्यादा.
4: वो तो हो भी सकता है, दोनों साथ में ही है तो.
5: या सो विजय, पूजा, देन वी हैव कशिका, केतन, सैंडी, रुजबे, क्रिश, अविनीत, जिकाश, रक्षा. तो इन सब में से 10 लोगों में से आपको क्या लगता है कि
4: आपने
5: सबसे
4: नाम लिया, मैं भूल गया
5: किसका. नहीं, नाम ले लो ना, तो अगर भूल गई तो वो.
4: अरे मैं भी भूल गया.
5: कौन?
4: एज.
5: नहीं, सिस्टर रेडियो स्टेशन.
4: हाँ.
5: नहीं, उनका
4: नहीं, नहीं, नहीं,
5: हाँ.
4: उसमें है ना,
5: ओ आरजू.
4: आरजू का भूल गया ना नाम, मैं वही.
5: हाँ, आरजू, गुड गुड. सो आरजू, ये 11 लोगों में से आपको क्या लगता है कौन सबसे अमीर आपको लगता है, फाइनेंशियल एसेट्स ये सब चीजों को देखते हुए, कि इन सब में से सबसे अमीर कौन होगा? हाँ, आपकी गट फीलिंग.
4: गरीब का मैं पहले बता देता हूँ.
5: गरीब
4: आपका लंच बॉक्स का होस्ट.
5: यू नेवर नो भाई.
4: अरे किसी ने जवाब दिया क्रिश.
5: क्रिश हो भी सकता है, लॉयर बाबू है यार.
4: हाँ यार,
5: वो
4: केस करते करते अच्छी मोटी रकम लेते हैं यार.
5: हो सकता है यार,
4: महंगे होते हैं लॉयर वैसे.
5: रुजबे बैंक में काम करते हैं.
4: हाँ, तो बैंक में छापता नहीं है ना, वो गिनता है. नहीं, मेक सेंस यार, कृष वाला तो यार उनका तो, क्योंकि मेरे को लगता है लॉयर, डॉक्टर और ये ऐसी फील्ड है, आप मतलब देना पड़ता है. यू डोंट नो राइट, सिक्योरिटी के लिए गारंटी दोनों तक नहीं है. बट फिर भी यू फील लाइक नहीं यार वो है सामने.
5: और रिसेंटली हुआ था ना, कृष ने बोला कि वो बस अच्छी डील्स देखता है, कि यू नो कम दाम में वो ट्रैवल करता है. उसको कम दाम में ट्रैवल करने इस बिजनेस क्लास.
4: सही में यार, वो बोलता है मैं बिजनेस क्लास में, मैं सस्ती प्लेन में जाता हूँ बिजनेस क्लास.
5: लेकिन उसके लिए भी ट्रिक्स होते हैं, विच आई एग्री. सो एनीवे, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है सारे अनाउंसर्स में से? आई वुड बी रियली इंटरेस्ट, एंड सबसे गरीब कौन होगा?
4: नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना।
5: अरे जरूरी थोड़ा है, यू नेवर नो उनकी नजर में कौन है।
4: हाँ, उनकी आपकी नजरों में क्या लगता है, लाइक यू नो हु इज द मोस्ट रिचेस्ट एंड
5: अपने एसेट्स थोड़ा बता रहा है कि मेरे पास इतने ही रह गए हैं या फिर मेरे पास इतना है।
4: ट्रू। और सबसे गरीब कौन है?
5: हाँ, सबसे अमीर कौन है अनाउंसर्स में से और सबसे गरीब कौन है, ये आज केतन का दिल से सवाल निकला है।
4: ओहो हो हो, आपका नाम सबसे टॉप पे।
5: मेरा अमीर में नाम आया है। वेल आई मैनिफेस्ट,
4: नहीं एक्चुअली उन्होंने लिखा नहीं है।
5: अच्छा नहीं लिखा
4: है, तो हम किस में कंसीडर कर रहे हैं? उन्होंने लिखा नहीं कि सैंडी का नाम किस में आ रहा है।
5: क्लियरली बताओ आप, जिसने भी नाम लिखा है मेरा, मैं गरीब हूँ कि अमीर हूँ?
4: हाँ, वो क्लियर
5: लिखो। बताओ जरूर।
4: वैसे स्माइल से तो देख, सैंडी की स्माइल देख के तो लग रहा है कि ऊपर अमीरों में ही है।
5: हाँ, गरीब थोड़ा आंसू निकल जाते हैं। मेरा प्लान यही है, एक दिन ऐसा पैसा होना चाहिए कि आप ना कहीं मेरे को
4: बिना सोचे
5: डील्स ना देखने पड़े टिकट की, बस मेरे को यहाँ जाना है, बुक करो और
4: मतलब
5: जाओ।
4: आप वो अकाउंटेंट को बोल रहे हो, आई वांट टू बाय दिस, प्लीज गेट मी। क्या बात है,
5: टिकट यहाँ की बुक करा दो बस।
4: अरे उनका रिप्लाई है सैंडी रिच है।
5: ओ सैंडी रिच है, थैंक यू सो मच यार, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है।
4: अच्छा लग रहा है, टेंशन हो रही है, पोल खोल रही है।
5: नहीं नहीं नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
4: नाइस यार,
5: वेरी हैप्पी।
4: और भी भेजिए आप 5599 पे, बिकॉज़ सैंडी कंटिन्यू करेगी यहां से टॉपिक। बट हमारा
5: मेरे को लगता है ये तो रुजबेक तक जाने वाला टॉपिक।
4: हां यार, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला ना।
5: या कौन अमीर है यहां पे, कौन गरीब है, आपको लिख के भेज रहे हैं 5599
4: पे। वैसे रीजन भी तो बताओ, लाइक सैंडी व्हाई व्हाई व्हाई यू थिंक सैंडी इज
5: से क्रिश का तो माना, क्रिश
4: का चलो बैकग्राउंड का, हाँ,
5: चलो like भाई,
4: वो हर जगह, प्लस उसका जो व्लॉगिंग का जो है इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, तो वो तो एक अमीर बंदा ही कर सकता है।
5: नहीं नहीं नहीं, ट्रैवल वाला कर सकता है, मैं भी ट्रैवल वाला बहुत बार, जब मैं कहीं पे जाती हूँ तो मैं व्लॉग करती
4: हूँ। जब कहीं जाते हैं उसका परमानेंट है।
5: हाँ ये भी
4: वो देखो ना, यहाँ पे कवर करना पड़ता है ना पंगु शो उसका।
5: पॉइंट है।
4: तो जल्दी से आप 5599 में बताइए हु इज द मोस्ट रिचेस्ट एंड हु इज द पुअरेस्ट।
5: अरे विजय भी हो सकते हैं। हाँ? विजय का नाम क्यों नहीं लिख के भेज रहा है यहाँ पे?
4: विजय, विजय, पूजा, कशिका,
5: कशिका।
4: हाँ, उनको कैसे भूल सकते हो?
5: कशिका को कैसे भूल सकते हो?
4: यार इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो।
5: सो यार
4: रुजवे भी है यार।
5: हाँ रुजवे,
4: देखो इतना नया फोन, इतना महंगा फोन,
5: खर्चे की करता है, गरीबों की करता है, लेकिन जो खर्चे की बात बहुत करता है अमीर बहुत होता है वो।
4: राइट, सो
5: ये नोट कर लीजिए।
4: सो ट्रू, सो यस, कीप सेंडिंग द मैसेज ऑन 5599। बट मैं थोड़ी देर तो रहूंगा बट यस, अगर आप मुझे मिस करें तो ऑफ कोर्स आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए एंजॉय करिए एंड कॉफी ब्रेक विल बी कमिंग टू यू शॉर्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2626।
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 16.8 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है।
0: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: Coffee break with Sandy.
1: 3:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में, और 4 बजे के बाद ड्राइव शो में मेरा साथ हो जाएगा रुस्बे के साथ। सो कैसे हैं आप? केतन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सवाल पूछा था कि सबसे रिच अनाउंसर आपको क्या लगता है, कौन हो सकता है? यू नो, एक का आंसर आया है कि सैंडी इज रिच विद हार्ट बिकॉज ऑफ स्माइल शोज, थैंक यू सो मच। लेकिन वैसे केतन ने यहाँ पे बैंक बैलेंस के हिसाब से पूछा है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं 5599 पर। थोड़ी देर में केतन को यहाँ पे लेके भी आएंगे। बट हाउ आर यू? आपका वीकेंड कैसा गया ज़रूर शेयर कीजिए यहाँ पे। इट इज़ 15 जून और आज ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद एक खास सेगमेंट आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। यू नो 14 जून एक ऐसी डेट थी जब हमने सेलिब्रिटी को, एक बॉलीवुड के ऐसे सितारे को खोया था जो कि मुझे लगता है कि अपने टाइम से बहुत ही अहेड थे। जब भी उनके हम इंटरव्यू सुनते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। एंड सुशांत सिंह राजपूत की जब वो पास अवे हुए उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई इन द इंडस्ट्री बॉलीवुड में। एक नज़रिया मूवीज़ को देखने का, एक नज़रिया स्टार्स को देखने का, उसके बाद एक लहर भी शुरू हुई जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। बहुत कुछ हुआ। सो वेल, सुशांत सिंह राजपूत जो उनके कभी फैंस नहीं थे, उनके जाने के बाद काफ़ी उनके फैंस बने एक्चुअली में। सो आज उनको एक स्पेशल ट्रिब्यूट हम देने वाले हैं बिटवीन 6 to 7 PM।

0: 3:12 हो चुके हैं, 15 जून है आज। और वैसे आपके सुपर सिटी में एक बहुत ही अच्छा प्ले भी होने वाला है। सो, एक लाफ्टर एंटरटेनमेंट का प्ले जिसका नाम है गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर। सो जिसमें लेजेंडरी सिद्धार्थ रेंद्रिया ये परफॉर्म करने वाले हैं। ब्रैंड न्यू कॉमेडी है। गुज्जू भाई फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ वेरी अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर, सो जिसकी वजह से बहुत सारी हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं एंड LOL सिचुएशंस वहाँ पे होती है। सो काफ़ी रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स जो है ये एक्चुअली में इस प्ले में रहने वाले हैं। सो एक ऐसा प्ले है जिसमें फुल फैमिली एक्चुअली में जा सकती है। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में 7:30 PM ऑनवर्ड्स 3 जुलाई को ये प्ले होने वाला है। सो यू कैन बुक योर टिकट्स फ्रॉम premierticketsco.nz।
1: 80s के रेट्रो गाने

0: 3:16 हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे ट्रेल्स के बारे में बात करते हैं तो देर इज वन वॉल्केनिक वॉक जो कि सेंट्रल ऑकलैंड में है। ये वॉल्केनिक वॉक काफ़ी अंडररेटेड मानी जाती है, सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस। सो बिग किंग इसका नाम है। सो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वॉल्केनिक वॉक इन सेंट्रल ऑकलैंड। सो बिग किंग, वैसे बिग किंग है क्या आपको बता दो, बिग किंग जो है ये लास्ट रिमेनिंग वॉल्केनिक कोन है ऑफ द ओल्ड थ्री किंग्स कॉम्प्लेक्स इन माउंट रॉस्किल एंड थ्री किंग्स। एंड ये जो साइट है इज अराउंड 28,000 ईयर ओल्ड। सो इट वॉज वंस पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ कोन्स। सो व्हाट यू सी टुडे इज बेसिकली द सर्वाइविंग रिम ऑफ मैसिव एशियन क्रेटर। सो जब आप वहाँ पे वॉक करते हैं तो लिटरली ऑन द एज ऑफ ऑकलैंड वॉल्केनिक हिस्ट्री में आप रहोगे। सो वॉक कैसी है, देर इज दिस ईजी स्टार्ट विच इज़ फैमिली फ्रेंडली। सो आप फ्लैट है बेसिकली एट द बिगनिंग, लेकिन ट्रैम्स, कैजुअल वॉकर्स, डॉग वॉक ये सब एक्चुअली वहाँ पे जा सकते हैं। देन शॉर्ट है, स्टीप अपहिल सेक्शन भी है वहाँ पे जो कि आपको टॉप पे लेके जाता है। देर दिस इज़ वेयर यू फील कि जो वॉल्केनिक शेप है वो कैसी है। 360 डिग्री का व्यू मिलता है आपको वहाँ पे। यू कैन एक्चुअली क्लियरली सी माउंट एडन, माउंट रॉस्किल, माउंट एल्बर्ट, वन ट्री हिल, इवन स्काई टावर अगर क्लियर डे है आज की तरह। एंड काफ़ी लोग जो है वहाँ पे जाते हैं एंड दे गो फॉर द लैंडस्केप स्टोरी एज वेल, बिकॉज वहाँ पे यू नो जो सराउंडिंग सबर्ब्स है उसका व्यू जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक ब्यूटीफुल सी सीनिक वॉक करनी है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सेंट्रल ऑकलैंड में है बिग किंग। ट्रेल चेक।
1: Most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. वैसे उधर जापान में जो साइंटिस्ट है, स्पेशली जो रिसर्चर्स हैं एट MIE यूनिवर्सिटी जापान में, इन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है. वेल, इन्होंने जीन एडिटिंग की है जिससे कुछ क्रोमोसोम्स को ये रिमूव कर सकते हैं जो कारण बनता है डाउन सिंड्रोम का. सो इन्होंने CRISPR जीन एडिटिंग की है बेसिकली, जहाँ पे दे वर एबल टू रिमूव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 जो कि मेजर कॉज होते हैं डाउन सिंड्रोम के. सो ये इन्होंने ह्यूमन सेल्स में किया है इन अ लैब, नॉट इन एम्ब्रॉयज और बेबीज. सो इट रीस्टोर्ड मोर नॉर्मल सेल फंक्शन इन दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. जो स्टडी है ये बेसिकली शो करती है कि जो टारगेटेड कटिंग है ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये पॉसिबल हो सकती है. सो इम्प्रूव्ड जीन एक्टिविटी हो सकती है एंड सेल ग्रोथ इन लैब टेस्ट, ये वो बताते हैं. बट दिस इज नॉट अ क्योर इन रियल लाइफ येट. ये एक लैब ग्रोन सेल्स में काम किया है जहाँ पे स्किन सेल्स एंड स्टेम सेल्स इन कंट्रोल्ड कंडीशन में रहते हैं. सो ये इन रियल लाइफ में, प्रेगनेंसीज में, ह्यूमंस में नहीं यूज़ हुआ है. इट डजेंट, अभी 100% प्रूफ नहीं है कि ये डाउन सिंड्रोम बेबीज़ का बर्थ जो है ये प्रिवेंट कर सकता है, बिकॉज जब लैब टेस्टिंग होते हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वो रहता है. रिसर्चर्स ने खुद बोला है कि अर्ली स्टेज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, स्टिल अनसेफ है क्लिनिकल यूज़ के लिए एंड रिस्क रहेगा DNA डैमेज का या फिर अनइंटेंडेड एडिट्स का भी इसमें रिस्क रह सकता है. तो साइंटिस्ट का बेसिकली जापान से कहना है कि दे कैन रिमूव द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो कि रीज़न होता है फॉर द डाउन सिंड्रोम, लेकिन अभी वो सेफली इसको फॉर अ डिवेलपिंग बेबी या प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते. इस रिसर्च से इतना ज़रूर पता चलता है कि जो डाउन सिंड्रोम है इज कॉज बाय फिजिकल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. इफ़ यू रिमूव इट, जो सेल्स है ये नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन जापानी साइंटिस्ट का ये कहना है कि दे आर ऑन देयर वे, होपफुली एक दिन इन फिजिकल लाइफ, इन नॉर्मल लाइफ इसको वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे.

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं और एक इकोनॉमिस्ट का कहना है, आरएनजेड पे आर्टिकल आया है कि ग्लोबल टेंशंस अगर इम्प्रूव होती है तो पेट्रोल प्राइसेस इन न्यूजीलैंड कुड ड्रॉप बैक टू अंडर $3 पर लीटर. सो वेल, एनजेड इम्पोर्ट ऑलमोस्ट ऑल इट्स फ्यूल. सो इवन स्मॉल ग्लोबल शॉक्स जो है, जिसकी वजह से इमीडिएट पंप प्राइस जो है ये इंक्रीज होता है. सो बैक डाउन तभी हो सकता है जब ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सही होती है. सो इफ़ देर इज़ अ पीस डील जिसके बारे में बातें हो रही है या फिर रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट रिस्क होता है तो ऑयल सप्लाई यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकती है, शिपिंग रूट्स बिकम सेफर, मार्केट जो है रिस्क प्रीमियम को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से हमें बिलो $3 पर लीटर जो है पेट्रोल दोबारा से मिल सकता है. लेकिन रियलिटी चेक ये भी है कि इवन इफ पीस हैपन्स प्राइसेस डोंट ड्रॉप इंस्टेंटली, एक डिले रहता है. एंड देन देर इज़ अ रिफाइनिंग, शिपिंग, रिटेल मार्जिन्स जो कि स्टिल पंप प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं. सो न्यूजीलैंड फ्यूल टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहेगी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है. बट अंडर 3 हो सकते हैं जब ग्लोबल टेंशन जो है ये थोड़ी सी इम्प्रूव होती है.

थ्रोबैक में ये गाना आप सुनने वाले हैं एंड स्टे ट्यून. आज 5 बजे एक और अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है. आज 5 बजे एक कॉन्सर्ट होने वाला है आपकी सुपर सिटी में. कौन आने वाले हैं आपकी सुपर सिटी में इसके बारे में आज अनाउंसमेंट होने वाली है, खुलासा होने वाला है. एंड काफ़ी फैंस हैं इस आर्टिस्ट के. जो आर्टिस्ट है पिछली बार जब मैंने इनका शो देखा था, ये पहली बार नहीं आ रहे, पहले आ चुके हैं. इट वॉज़ अ सोल्ड आउट शो. एंड क्या शो था, क्या प्रोडक्शन थी, अमेजिंग. और तभी काफ़ी लोगों ने जब वीडियोस देखी तो बोला कि भाई ये शो कैसे मिस हो गया. तो हम 5 बजे आपको बताने वाले हैं ये जो शो है ये होने वाला है और इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी. एंड ऑल्सो यू कैन बी द फर्स्ट वन टू विन अ डबल पास फॉर दिस शो. सो स्टे ट्यून्ड.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: चार बज चुके हैं, 4:02. आज वेदर का हाल ऑल राइट है, मतलब लुका छुपी खेल रहे आज सन एंड क्लाउड्स और उसमें मिला जुला सा वेदर है. 5:12 पे आज होगा सनसेट, फील्स लाइक 16. ओवरनाइट टेम्परेचर विल बी एज लो एज 10 डिग्रीज टुनाइट.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: You're listening to The Drive Show. Good afternoon. Monday, 15th of June. Hi, Sandy. Good afternoon.
4: Good afternoon, Rusby. कैसे हो तुम?
1: मैं बहुत बढ़िया, Sandy. आप कैसे हो? How was your weekend?
4: Weekend was good. It was nice.
1: Yeah. We can see it.
4: Yeah.
1: आपने

0: हमने देखा आपने बहुत धूम मचाई लेडीज नाइट में.
1: बहुत धूम मचाई यार, इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड. तो सब लेडीज थी वहां पे,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के. एंड आई वांट टू टेक माय कमेंट बैक, लाइक आई मेड अ मिस्टेक. मुझे लगता है कि लेडीज नाइट में यू डोंट नीड लेडीज, बिकॉज लेडीज आई थिंक द वीडियो दैट आई सॉ वन ऑफ योर वीडियोस, इट वाज सो सरियल, इट वाज सो ब्यूटीफुल टू सी. कि मैं बोला नहीं यार, यहाँ पे यू डोंट नीड मेल एनर्जी.
1: Yeah.
0: Just women energy is like just amazing.
1: Yeah, because baki concerts to hote hai na jahan pe both hote hai.
0: Yeah, yeah, exactly.
1: So it's always there. But anyway, how was your weekend?
0: My weekend was very nice actually. Bahut khana khaya humne idhar udhar jaake, kafi bahut thusa. So yeah, time to get to the gym now.
1: Kitni der baad jaoge tum gym?
0: Aaj main gaya hu actually, kafi samay baad. देखो मेरी छुट्टी खत्म होने को आई है अभी, और तब जाके मैं अभी जिम जाके पहुंचा हूँ.
1: इसकी छुट्टी खत्म होने को आई है और उसको नोटिस मिला है, कौन छुट्टी लेने की जरूरत है
0: यार, क्या हो रहा है मेरे साथ. लाइक लिटरली दिस ईयर हैज बीन सो अनप्लान्ड फॉर मी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग हॉलीडेज.
1: अनप्लान्ड है मेरे को लगता है दिस वीक. और मैं सोच रही हूँ यार, तुम कितनी बार यहाँ से छुट्टी पे जाते हो, तुम्हारी फिर भी कैसे बड़ी है, मेरे माइनस में अभी तक.
0: मैं कब जाता हूँ छुट्टी पे,
1: बीच बीच में रहते हो ना कभी कभी इधर उधर, बट मेरी माइनस में अभी तक.
0: मैं आपको दे देता हूँ.
1: हाँ कुछ ऐसा करो ना, लॉ पास करो.
0: वैसे भी यू आर द रिचेस्ट इन हम, तो प्लीज ट्रांसफर मनी. मैं आपको दे देता हूँ मेरी छुट्टियाँ, ले लो आप.
1: आज हमने सवाल पूछा है क्योंकि न्यूजीलैंड के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आई है, केतन ने वो शेयर की थी. सो केतन ने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि हम पे जो अनाउंसर्स काम करते हैं उनमें से सबसे रिच कौन है, सब में से रिच कौन होगा, सबसे अमीर कौन है,
0: सबसे अमीर कौन है.
1: उसबे का नाम कोई ले नहीं रहा है अभी तक, मतलब बातें तुम्हारी मैं, अगर खर्चे वाली होती है जरूरी थोड़ी ना है कि रिच नहीं हो.
0: नहीं नहीं, मैं हूं भी नहीं रेज में, लेकिन मुझे लगता है कि सैंडी ओनली इज द,
1: आई विल बी वेरी हैप्पी यार अगर मेरे को मैक्सिमम वोट्स मिलेगी,
0: बिकॉज हर स्माइल शोज.
1: या वो तो मैंने पढ़ा, लेकिन अगर मेरे को सबसे ज्यादा वोटिंग आती है आई विल बी वेरी हैप्पी. मतलब इसका मतलब है कि आई एम वेरी करीब टू इट ना, मैनिफेस्ट वर्क्स दिस वे.
0: या या 100% एंड पीपल आर मैनिफेस्टिंग, पीपल आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू.
1: या या 100% तो मेरा ही नाम लिखो यहां पे.
0: हां, डबल फाइव डबल नाइन पे ड्राइव कीवर्ड के साथ लिखकर भेजिए आप. बट आज ड्राइव शो में हम आपसे काफी सारी बात करेंगे. आज ट्रेंड मेकर्स में मैंने देखा है कि ऑलरेडी प्लान हो गया आज 6 से 7 के बीच.
1: यस, बिकॉज वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत टुडे. Yesterday was his death anniversary. And Sushant Singh Rajput ek aisa celebrity hai Ruzbe, unke pass away hone ke baad unke zyada fans bane hain. So after he passed away, then people started watching his movies, his interviews, and people realized ki yaar ye banda to was way ahead of his type. Jo baatein ye banda karta tha, कोई एक्टर वैसी बातें नहीं करता है.
0: एक्चुअली
1: द इंटेलेक्चुअल बातें वो.
0: एंड सुशांत सिंह राजपूत आई थिंक दिस 14 जून
1: या
0: कितने साल हो गए अभी इसको,
1: ही पास्ड अवे इन 2020.
0: या 6 साल हो गए,
1: 6 साल टोटल हो चुके हैं.
0: तो ये 6 सालों में बॉलीवुड पूरा चेंज हो गया है.
1: 100% दैट वाज अ डे. उसके बाद बॉलीवुड चेंज हो गया, मूवीज को देखने का नजरिया चेंज हो गया, स्टार्स के बारे में चीजें चेंज हो गई. रियलिटी क्या हुई वो हमें नहीं पता है, एंड वो कभी आएगा सामने नहीं आएगा, वी डोंट नो व्हाट इट इज़, बट व्हाट वी कैन डू इज ऑलवेज रिमेंबर दी स्टार्स फॉर देयर वर्क, वी कैन सेलिब्रेट देम.
0: Yeah, and that's what we are going to do tonight. Trend Makers, 6 से 7 के बीच आपके लिए हम सुशांत सिंह स्पेशल आज ये शो लेकर आएंगे. एंड अभी ड्राइव शो में ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स होने वाले, ढेर सारी चीजें होने वाली है,
1: और 5 बजे खास अनाउंसमेंट होने वाली है.
0: ओह, एक और खास अनाउंसमेंट आज.
1: या 5 बजे वी गोना अनाउंस समथिंग वेरी बिग. कुछ कोई आने वाला है यहाँ पे उनके बारे में, एक कंसर्ट अनाउंसमेंट, एंड यू कैन बी द फर्स्ट वन टू विन some passes as well.
0: Guess कीजिए यहाँ पे 5599 पे message करके कि हम कौन किसके concert का announcement करने वाले हैं.
1: कौन है जो यहाँ पे आने वाला है?
0: Yeah, guess कीजिए.

0: अरिजीत सिंह की आवाज जब हैरी मेट सेजल का ये गाना आप सुन रहे थे, इम्तियाज अली की मूवी का ये गाना है। वैसे इम्तियाज अली का बर्थडे आ रहा है ना बहुत जल्द।
1: यस,
0: कल है इम्तियाज अली का भी बर्थडे।
1: या सो कल या इसके बारे में भी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल वैसे आपको हम बताते हैं कि हमारे सुपर सिटी में और आसपास क्या हो रहा है। जो यूएफसी फाइट्स है, तुम्हें पसंद है?
0: नहीं,
1: सुपर सिटी में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग बड़े फ़ैन हैं इसके। लेकिन यूएफसी फ्रीडम 250 फाइट है, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प होस्ट करने वाले हैं।
0: वो उनको एक्सपीरियंस है ना WWE होस्ट करने का।
1: इज गोना होस्ट इट बेसिकली, देखा जाए तो। एनीवे, सो बैक टू सुपर सिटी आते हैं, तो एक लिस्ट आई है रुजबे। द लिस्ट इज अबाउट द रिचेस्ट पीपल ओवर हेयर इन न्यूजीलैंड।
0: अच्छा, कोई है क्या, कोई मतलब कोई अपने है क्या कोई?
1: So, हाँ, New Zealand's richest families and individuals are now worth a combined $129 billion.
0: $129 billion.
1: Yeah. So this is the latest National Business Review Rich List. So which is a sharp increase from the previous years. Like पहले $102 billion था, अभी $129 billion।
0: अरे वो लोग ने वो चालू किया ना, वो गोल्डन वीजा, वो जो था वो गोल्डन वीजा, पता है ना आपको?
1: Yeah.
0: इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, रेजिडेंसी ले जाओ।
1: Yeah.
0: उसमें बहुत लोग आए ना अभी।
1: या तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा,
0: बढ़ गया मतलब।
1: या काफी ज्यादा बड़ा है।
0: वेल मतलब दूसरे लोग यहां पे माइग्रेट हुए ना बेसिकली।
1: या 100%। सो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा एंड द ट्रेंड, द पिक्चर लुक्स फेयरली कंसिस्टेंट एट द टॉप। सो लाइकली रिचेस्ट न्यूजीलैंडर्स जो है निक एंड मैट मॉबरे जोरू के ये है। They expected to top the list like $20 billion plus combined wealth. So then Graham Hart का नाम आता है, जो कि long time industrialist है वो. Then Goodman family,
0: अच्छा,
1: the brand, yeah. Global property investment को लेके $5 billion. Then Todd family, energy infrastructure investment empire and का about $3 to $4 billion का. Then we have Sir Peter Jackson and Dame Fran Walsh. फिल्म और इन्वेस्टमेंट्स को लेके $2 to $3 billion।
0: वेरी नाइस यार।
1: या
0: इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है? लेकिन कोई इतने बड़े बड़े लोग कुछ कर रहे हो हमारे लिए भी यार। हमारे रास्ते सुधारो, कुछ तो करो।
1: नहीं, या
0: मैं ऑनेस्टली जब भी ये मैंने टाइटन स्टोरी देखा ना, मेरे को काफी सारी चीजें बहुत
1: अच्छी लगी।
0: मैं देख ली टाइटन स्टोरी, वेरी नाइस यार, इट्स लवली, इट्स सो लवली। या इट्स गुड यार, एंड इट जस्ट शोज अबाउट द टाइम्स एंड हाउ यू नो The whole Titan story was not just about one man making money, but it was more about how you are going to create a community. Pura, but it's very.
1: How you raise a community together? मतलब community साथ में कैसे grow करती है?
0: हाँ, community को कैसे तुम build करते हो साथ में, और कैसे तुम एक recognition लेकर आ रहे हो global level पे तुम्हारे country के लिए. So that's why it's like made in India and like ऐसा उसका title दिया. But it's very nice. It's very interesting. आपने देखना चाहिए। बहुत rarely हमें चीजें मिलती हैं ना जो हम ऐसे देख सके सबके सामने।
1: Yeah.
0: This is one of those things that you can watch.
1: I think you must watch भी है, because एक history बताती है ये जो कहानी है।
0: और कितने contradicting series उन्होंने एक साथ launch किए। एक है Titan Story और दूसरा है Pyramid Scheme.
1: Okay.
0: Complete opposite.
1: Okay.
0: Full about कैसे पैसे बनाने हैं, पैसे कैसे बनाना है। आप फंसे हो कभी Pyramid Scheme में?
1: नहीं, what is it?
0: तो पिरामिड स्कीम इज बेसिकली, जय हो मूवी देखा है आपने?
1: हाँ।
0: जय हो में कॉमर्स डाल दो आप। तो बेसिकली आप तीन लोगों, चार लोगों को आपके अंदर लेकर आओ, ठीक है, वो हर कोई 11,000-11,000 रुपए भरेगा, फिर वो चार लोग उनके अंदर और चार लोग लेकर आएंगे, तो चार चार चार चार चार ऐसे, और वो लोग सब 11,000-11,000 भरेंगे, फिर वो उनके अंदर और चार लेकर आएंगे,
1: तो जो ऊपर के लोग हैं उनको कमीशन मिलता जाएगा।
0: उनको कमीशन मिलता जाएगा।
1: ओह, I heard this one। हाँ। बहुत स्कैम भी होता है ये।
0: ये स्कैम ही था।
1: ओके।
0: तो उसके ऊपर ही है ये पूरा पिरामिड स्कीम। लेकिन आप कभी फंसे हो ये पिरामिड स्कीम में?
1: नहीं।
0: मैंने पैसे डाले उसमें।
1: मेरे को बोला जरूर था लाइक इस चीज के लिए।
0: मैं बहुत, मेरे को मेरी वाइफ भी बोलती है कि तेरे को कोई भी बहुत इजीली कन्विंस कर सकता है कोई भी चीज के लिए। I'm a very easy.
1: पर मुझे लगा था कि पैसों के मामले में, investments के मामले में you will not.
0: ये बचपन में था ना?
1: Yeah.
0: तो वो
1: तभी सीखे तुम?
0: तभी सीखा मैं उससे। लेकिन अभी भी मेरे को अगर कोई कहीं पे अगर कोई बोलता है ना कि अरे यार ये डील है, भारी है, ये है, अगर something that I will go with it, I'll be like
1: you will invest.
0: हाँ मतलब इन्वेस्ट,
1: देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग ना. लाइक स्पेंड तुम कर सकते हो, जैसे हेडफोन बे मतलब कि $600 के ले लिए,
0: हाँ
1: जिस जो कि $50 का
0: हमेशा सुनाने की जरूरत नहीं है,
1: काम कर सकता है, उसमें तुमने $600 डाले,
0: हाँ
1: लेकिन दैट इज फाइन, वो वैसी चीजें जो तुम करते हो. बट इन्वेस्टमेंट,
0: इन्वेस्टमेंट में मतलब अभी प्रॉब्लम ये है ना कि आई एम नॉट द ओनली डिसीजन मेकर ना. अगर मैं ओनली होता तो मैं तो भाई
1: कर लेते,
0: मैं तो बहुत जगहों पे डाल देता पैसे.
1: लेकिन
0: अभी मेरे को हर चीज का हिसाब देना पड़ता है. तो लाइफ इज डिफरेंट, इट्स ग्रेट,
1: या गुड. Daily dose of wisdom, wit and wild conversations. The Drive Show with Sandy and Rizbe. आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस. Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages. तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today. Available at selected branches. T's and C's apply.
2: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
3: Thinking about becoming a teacher? Visit the Ministry of Education's Become a Teacher store at the Auckland Showgrounds on the 16th and 17th of June. Discover what teaching involves, explore your study options, and find out where a career in teaching could take you.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
6: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
7: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. एक बहुत ही बढ़िया मैसेज आया हमारे पास यहाँ पे अभी. 8573, thank you so much, आपने ये मैसेज लिखा. इन्होंने कहा है कि अभी हम जो बात कर रहे थे, ये पिरामिड स्कीम की बात कर रहे थे हम लोग. आप भी कॉल कर सकते हो 0800-004-866. क्या आपको कभी लूटा है किसी ने, मतलब ऐसा चिपकाया बहुत भारी कि अरे ये बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, और ऐसा करके
1: आप फंस गए उसमें, और इट इज ओके टू एक्सेप्ट इट. मतलब इट इज ओके.
0: मेरे को तो बहुत भारी पहनाया था. ये उस जमाने के टाइम की बात है जब मेरी पगारी होती थी 15,000 या 17,000 रुपए शायद अराउंड, और उसमें मेरे को 11,000 इन्वेस्ट करने बोला पटाया है लोग ने. तो मेरे पैसे तो नहीं, मेरे पापा के पैसे गए उसमें. मेरे डैड ने बोला भी था मेरे को कि देख ये सब ऐसा स्कैम होता है, ये सब सोच समझ के कर. मैं बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं,
1: अभी ये सदियों से चलता हुआ स्कैम है. मेरे को नाम नहीं पता था, बट दिस द डूइंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये सदियों वाला स्कैम है,
0: मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर जो भी उसको. तो ये प्रूव करता है कि सैंडी रिच है, इसलिए इधर उधर ट्राई नहीं मारती.
1: बेचारा रुस्बे ट्राइंग, गरीब आदमी लोटो खरीदता है.
0: भूखा नंगा,
1: भूखा नंगा को लूटो. या
0: यस, वेरी नाइस. आप कॉल कीजिए यहाँ पे, बताइए 0800-004-866. हैव यू हैड अ वेरी लाइक हैव यू हैड एन एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको ड्यूप किया किसी ने, मतलब जहाँ पे आपको किसी ने मामू बनाया है, जहाँ पे आपको लूटा है, आपके पैसे लॉस हो गए हैं.
1: हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ ही होता है यार. ऐसा
0: आपके के लाइफ में क्या हुआ ऐसा?
1: टॉप ऑफ द ऐसा लाइक मेरे को याद नहीं है, लेकिन 100% हुआ होगा यार कि जहाँ पे लाइक बिग अमाउंट होनी चाहिए कि बिग अमाउंट डूबे, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है.
0: क्या पैसे डुबा दिए?
1: हाँ, मतलब मैंने कभी ऐसा इन्वेस्ट ही नहीं किए ना, तो मैं मेरे पैसे ऐसे गए क्या ही डूबेंगे.
0: वही तो ना, बिकॉज आपको
1: इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है गाइस.
0: या 0800-004-866 कॉल कीजिए यहाँ पे, बताइए हमें. आज वैसे बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जानव अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 6th बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू जानव, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस फ्रॉम डैड विमल, मम जसलीन, मासी रोजलिन, ब्रदर्स आर्यन, शैन एंड विरव, आज और आजी की तरफ से भी. एंड हैव एन अमेजिंग डे एट स्कूल माय बेबी, ऐसा उन्होंने लिखा है.
1: नाइस जानव, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू.
0: हैप्पी बर्थडे.
7: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
8: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम.
7: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: You're listening to Humbling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से एक गाने यहाँ पे लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी यहाँ पे हम करते हैं आपके साथ.
1: Yes, और आपको बताते हैं कि आपके सुपर सिटी में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है जिसकी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं 5 बजे के बाद. फिलहाल वैसे एक और बहुत ही सुपर इवेंट है रुजबे जो होने वाला है आपकी सुपर सिटी में, गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
0: क्या क्या क्या वापस बोलो.
1: गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
0: ये चाइनीज थोड़ी है, ये भाई गुजराती है.
1: नी क्या है?
0: तो गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
1: गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
0: गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
1: गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
0: इतना है मतलब नी इज लाइक की. गुज्जू भाई की एक्सचेंज ऑफर को क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे आप?
1: गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
0: अरे एक नंबर भाई, क्या सिखाता हूँ मैं यार. प्रोफेशन चेंज का टाइम आ गया मेरे को लग रहा है फिर से.
1: जस्ट बिकॉज यू नो द लैंग्वेज.
0: या
1: सो ये ब्रांड न्यू कॉमेडी है जिसमें गुज्जू भाई फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ एक्सचेंज ऑफर, जिसके बाद बहुत कुछ होता है. सो ये जो प्रोडक्शन है एक्चुअली में जो थिएटर है ये होने वाला है 3 जुलाई को 7:30 PM onwards विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में.
0: और ये जो लेकर आ रहे हैं यहाँ पे ही इज द लेजेंडरी सिद्धार्थ रणदेरिया. ये बहुत जाने माने, बहुत जाना माना हस्ती, जाना माना नाम है इनका. कॉमेडी सर्किट में, कॉमेडी सीन में ये लेजेंड है.
1: ओके
0: जी, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ऑन 3rd of July 7:30 PM.
1: या सो गुजरात के मोस्ट लव्ड कॉमेडी करेक्टर लाइव होने वाले हैं यहाँ पे स्टेज पे. सो अभी टिकट खरीद लीजिएगा. टिकट कहाँ से खरीदनी है?
0: टिकट खरीदनी है premierTickets.co.nz पे.
1: सो वहाँ पे जाके अगर आप गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर सर्च करते हैं यू विल गेट द टिकट.
0: गुज्जू भाई नी एक साथ बोल दो,
1: गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
0: अरे क्या बात है सैंडी.
2: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum, accurate traffic.
3: Would you trade in your house? Cloudy for Auckland showers overnight and a low of 10 degrees. We're getting reports of a crash on the southern just north of the Ellerslie interchange. That's affecting northbound traffic. It's pretty heavy in both directions between Ellerslie and Newmarket. From the city to Drury, taking 49 minutes to Manukau, 31. All good on the southwest and the northern to Silverdale, taking 40 minutes.
4: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
5: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
7: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
6: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
8: TradeDepot.co.nz. Get 299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, 299. Washing machines, 299. Dishwashers, 299. Ovens, 299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
12: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner, free chicken dinner. Yeah! Foursquare, what'll it be today? T's and C's apply.
13: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा. available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.

0: Sunar Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जा रही है आपके लिए और वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हम आपको बॉलीवुड की थोड़ी खबरें यहाँ तक पहुँचाते हैं आप तक. और अभी हम आपको ट्रेलर सुनाने वाले हैं एक, और ये ट्रेलर है फ्रॉम धमाल फोर
2: का. ये ट्रेलर है जहाँ पे कौन कौन से एक्टर्स इसमें
1: अब देखेंगे ना. अभी हम लोग अभी वी आर रिएक्टिंग लाइव ऑन रेडियो टू द ऑडियो ऑफ द ट्रेलर, क्योंकि आपको तो ऑडियो ही दिखेगा ना, हमको वीडियो दिख रहा है यहाँ पे. सो या ये अब काफी चल रहा है सैंडी, ये रिएक्शन टाइप वाले वीडियो. सो लेट्स डू इट.
3: एकदम ठीक सामने देखिए, व्हील के
1: देवगन फिल्म्स बना रहा है.
3: रेड बटन है,
4: दबा दिया.
3: नहीं दबाना था,
2: ये पहले का फेमस डायलॉग था.
1: हां, नहीं दबाना था.
5: खजाने काट रहे, जरा जोर से बोले बे.
6: खजाना भूल जाओ,
7: किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए.
8: जोर से बोल
9: एम के नीचे.
7: ये तो गया,
10: ये भी गया.
7: कौन?
10: जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था.
2: साड़ी से लटके थे बेसिकली. एंड जावेद जाफरी इज बैक टू हिज कैरेक्टर.
11: Adios, Osmat.
12: यार बच्चों को तुम पसंद आ गए, हमारी फैमिली कंप्लीट.
13: माँ को पटा लिया तो बच्चों की तो
14: उंगली तो किस्मत ने किया हमारी. इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी.
1: बहुत ही इनअप्रोप्रिएट जोक है यार.
15: आग में उंगली डाल, तो आग में उंगली डाल. भाभी की आग में नहीं, मगर बस की आग में मत.
16: अरे स्टैचू
15: उतर गई.
17: खजाने का नशा कहाँ है? नहीं बनाऊंगा. गला सीरियस की
18: बॉस, इसके बटुए में तो आपकी गर्लफ्रेंड शबनम का फोटो है.
17: और किसके किसके पास मेरी शब्बो की फोटो है?
19: अरे खजाने का नक्शा मिल गया.
2: So everyone is after the khazana.
1: हाँ, same like OW के नीचे.
14: ये तो सांपों का चुम्माश भी निकला बे. देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब ना ही चलता है.
2: एक और रीमेक.
1: अरे भगवान,
16: चक गया ये.
17: बचाओ.
20: अरे हम है ना जी.
16: अरे तुम इसे तो बच रहा है.
21: फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी.
22: चाय पियोगे भैया?
23: तो भूतनी की मुर्च कली पाते हो.

0: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
1: बच्चों के लिए अच्छी मूवी होगी शायद।
2: मुझे लगता है कि एक दो डायलॉग्स फनी लगे मुझे जो रिपीट टेलीकास्ट है,
1: क्योंकि अपने को वो पुराना रेफरेंस है ना उसमें।
2: yeah.
1: ओ फूल।
2: सो मूवी का ट्रेलर देखते समय पता क्या रियलाइज हो रहा है?
1: क्या हम बड़े हो गए? मीम्स यूज हो रहे हैं यार मूवी में।
2: मीम्स यूज हो रहे हैं बेसिकली, अगर आप रील्स को ना स्क्रॉल करते हैं एंड उसमें बहुत सारी कॉमेडी रील्स देखते हैं ना, वो सारे के सारे रील्स को कोलैबोरेट कर दो इज अ धमाल फोर।
1: आजकल हर कॉमेडी मूवी ये क्यों हो गई है, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। ये भूत बंगला में भी हमने वही देखा था ना कि कुछ
2: मत याद दिलाओ, यहाँ
1: ये देखकर मुझे वही याद आया। लेकिन
2: या ये सिनेमा में
1: ये अगर बेटर रहेगी, भूत बंगले से बेटर रहेगी।
2: या हो सकता है
1: क्योंकि बच्चे तो एंजॉय करेंगे ये मूवी।
2: डिपेंड करता है या
1: बड़े भी एंजॉय करेंगे एक्चुअली जो बच्चे के साथ जा
2: मतलब
1: रहे।
2: या हर किसी की चॉइस होती है। सो यू नो अगर आप जाके मे बी आपको जस्ट हंसना पसंद है, कि कई बार काफियों को पसंद होती है ऐसी मूवीज ना जहाँ पे विदाउट एनी हम स्क्रिप्ट के थ्रू भी ऐसा जाते हैं कि ठीक है हंस तो रहे हैं ना मूवी एंजॉय तो कर रहे हैं। तो पहले क्या होता है ना कुछ मूवीज के एंड में क्लाइमेक्स के सीन ऐसा होता था जहाँ पे हफड़ा दफड़ी होती थी, सब भाग रहे इधर उधर हो रहा है। ये मूवी में फुल ऑन हफड़ा दफड़ी है।
1: हाँ ऐसे पूरे ट्रेलर में हफड़ा तफड़ी लग रही है। मैं आपको पता है सैंडी, पहले आपने जब बोला ना तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई। पहले ऐसा होता था कि हम मूवी देख के हमें मूवी देख के हंसी आती थी कि अरे कि कुछ जोक अच्छा मारा या कुछ हुआ तो हम हंसते थे। अब हम उस बात पे हंसते कि ये जोक क्यों मारा ये लोग ने ये क्यों डाला ये लोग ने।
2: रिपीट हो रहे हैं ना जोक्स शायद इसलिए।
1: या ओरिजिनलिटी कहीं तो भी लैक हो रही है। बट ये धमाल फोर का ट्रेलर आया है, धमाल डबल धमाल मेरे को मालूम है एक कोई मूवी आई थी मैंने वो भी नहीं वो देखी है आपने? डबल धमाल
2: देखी है?
1: डबल नहीं ट्रिपल धमाल देखी आपने? डबल धमाल थ्री भी आई थी क्या?
2: नहीं याद,
1: धमाल थ्री तो याद ही नहीं बिल्कुल भी मेमोरी में। एनीवे आपको भी हम एक गाना एक या दो गाने सुनाते क्योंकि सैंडी खास रही है अभी बहुत ज़्यादा। सैंडी आई यू ओके?
2: या थैंक यू रुज़बे,
1: या शी इज ओके। ओके तो आपको आज 5 बजे के बाद हमारे साथ बने रहना क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं 5 बजे के बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट। एक यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है एंड एक ऐसा आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना है इससे पहले। वो आ चुके हैं पहले,
2: वो आ चुके हैं
1: लेकिन
2: सोल्ड आउट कर चुके हैं।
1: हमें अब तक मैसेजेस में वो सही आर्टिस्ट का नाम नहीं आया है। सो या 5599 पे आप मैसेज करके हमें बताइए क्या लगता है आपको हम किसका शो लॉन्च करने वाले हैं ऑन हम एट 5 टुनाइट टुडे।

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Winter immunizations are available now.
3: Cloudy for Auckland, showers overnight, a low of 10 degrees. The northern pretty good to Silverdale, 44 minutes. On the northwestern, 26 to Massey. On the southern, reports of a crash just north of the Ellerslie interchange, so it's heavy from Sylvia Park to Green Lane for northbound traffic. On the southwestern, reports of a crash affecting eastbound traffic near Lambie Drive.
2: Book your winter immunizations, including flu. Search Book My Vaccine or ask your healthcare provider.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा फाड़ देंगे.
4: 5:02 हुए हैं. You're listening to Power Drive at 5. Good evening. Hi Sandy.
5: A very very good evening to you. Yes, Power Drive at 5 आपके लिए शुरू चुका है. थोड़ी देर में देसी और नॉट सो देसी बिहेवियर भी आज आपके लिए लेके आएंगे.
4: Monday.
5: Yes, it is Monday. So कैसा जा रहा है आज का डे आपका, ये आप बता सकते हैं यहाँ पे?
4: वो सब रहने दो अभी सैंडी. Now is the time where we launch what we are supposed to launch.
5: Yes, global sensation जो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं. And अगर आप social medias पे बहुत active हैं तो Facebook पे आपको already पता चल चुका होगा हम पे कि कौन आने वाला है यहाँ पे. So finally बताने का वक्त आ चुका है.
4: This is the first time you would be hearing on air right now. And काफी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा. But yes, your boy Karan Aujla is back in Auckland.
5: Yeah, Karan Aujla is back, guys. और इस बार Karan Aujla P-pop culture world tour लेके आ रहे हैं.
4: I'm guessing it's Punjabi pop.

0: या सो पी पॉप कल्चर जो है ये ऑकलैंड में एक मैसिव शो लेके आ रहे हैं स्पार्क अरीना में. सो स्पार्क अरीना में इनका शो होने वाला है 25th अगस्त को. लास्ट टाइम तुमने अटेंड किया था ना करण औजला का शो?
1: मैंने किया था. ओह माय गॉड, पीपल वर क्रेजी. वेडनेसडे को था ना उनका शो लास्ट ईयर?
0: वेडनेसडे को सोल्ड आउट था. दिस टाइम इट्स ट्यूसडे.
1: ओह नाइस, ओके.
0: या सो चार्ट टॉपिंग हिट्स एंड एंथम्स उनके तो रहेंगे एंड जॉइनिंग हिम विल बी अ स्पेशल गेस्ट हिट मेकर इक्की,
1: जो लास्ट टाइम भी डीजे कर रहे थे.
0: मतलब उन्होंने जब शुरू किया शो इक्की ने एंड एक उन्होंने रिदम बिठा दी थी इस शो का लेवल नेक्स्ट क्या होने वाला है. एंड देन करण औजला ने वहां से पिक किया. सो अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. करण औजला विल बी हियर परफॉर्मिंग लाइव फॉर यू स्पार्क अरीना में 25th अगस्त को. एंड यहीं पर ख़त्म नहीं होता है. टिकट्स इन्फॉर्मेशन जो है ये hum.rover.nz पे आपको पता चलेगी. रिजबे जो प्री सेल है ना टिकट्स की, ये 17 जून से शुरू होने वाली है.
1: अच्छा, ये अब तक शुरू नहीं हुई है. ओके,
0: या सो टुडे इज 15, 17 जून से 10 बजे से प्री सेल शुरू हो जाएगी 19 जून तक. तो मेक श्योर कि आप अपने टिकट जल्दी से बुक करें बिकॉज दिस गोना बी अ सोल्ड आउट शो एंड उसके बाद कुछ और भी सेल्स रहने वाली है. बट अभी टिकट ऑनलाइन नहीं गई है सेल होने के लिए. But we are giving you a chance to win a ticket.
1: Double pass, na?
0: Double pass, yahan pe hum
1: aapko de rahe hain. Double pass, jeetne ka mauka hum aapko de rahe hain. Before even you can go and buy on online, you can win a double pass for Karan Aujla live in concert, jo P-pop culture lekar aa rahe hain. P-pop culture world tour lekar aa rahe hain Auckland mein.
0: Yeah, aur aapko double dhamaka hum de rahe hain. So you have two ways to participate. Do chances hai aapke paas participate karne ke liye. ध्यान से सुनेगा. पहला चांस आपके पास है, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए. वहाँ पे अभी अभी करण औजला की पोस्ट की है हमने जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है विन अ डबल पास. आपको करना क्या है, वो जो पोस्ट है मेक श्योर यू आर लाइकिंग द पोस्ट. लाइक करना बहुत ज़रूरी है एंड कमेंट सेक्शन में यू आर टैगिंग अ फ्रेंड जिसके साथ आप जाना चाहते हैं. सो टैग अ फ्रेंड, लाइक अ पोस्ट, दैट्स इट. आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. एंड व्हाट इज़ द सेकंड वे रुजबे?
1: मेरे को नहीं पता, आप बताओ.
0: अच्छा, ओके. द सेकंड वे इज
1: हम आपको एक सवाल पूछेंगे करण औजला के बारे में. और 5599 पे आपने आंसर लिखकर भेजना है के ए कीवर्ड के साथ. के ए इज फॉर करण औजला.
0: या
1: और आपके पास डबल पास हो सकता है. तो अभी के अभी हम सवाल पूछते हैं आपको.
0: अभी के अभी आपसे हम सवाल पूछने वाले हैं. सो के ए स्पेस, आज का सवाल आपके लिए ये है कि कौन से बॉलीवुड एक्टर का गाना बहुत ही उसका हुक स्टेप बहुत ही फेमस गया जो करण औजला ने गाया है. सो एक बॉलीवुड एक्टर है, उसने एक हुक स्टेप किया करण औजला के गाने के ऊपर. मतलब बॉलीवुड गाना है वो भी
1: और वो एक्चुअली मूवी का ही गाना है. फीचर्ड ऑन दैट एक्टर.
0: उस एक्टर का नाम आपको बताना है जिसने वो डांस स्टेप किया एंड इट वेंट क्रेजी. मतलब लोग उसके ऊपर रील पे रील बनाना शुरू हो गए और वो करण औजला का गाना है. सो आपको वो गाना या फिर वो एक्टर का नाम लिख के भेजना है. मेक श्योर कि के ए कीवर्ड आप साथ में जरूर लिख रहे हैं. के ए बहुत इजी है गाइस. करण औजला
1: के आ गया. ए के नहीं, ए के
0: नहीं. देखो आई नो जल्दबाजी कर रहे हैं आप, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए. आपके पास टाइम है, मैं आपको बता रही हूँ. आपके पास टाइम है, यू हैव लाइक गुड 20 मिनट्स अभी.
1: अच्छा, 20 मिनट है आपके पास. तो
0: 20 मिनट है आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए. तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इसमें.
1: आराम से गाड़ी पार्क कीजिए, आराम से आप मैसेज कर सकते हो.
0: आराम से मैसेज कीजिए के ए स्पेस किस एक्टर के ऊपर वो गाना फीचर था, ये आपको बताना है. गाने का नाम लिखना है वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन के ए कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है. कॉल्स अभी हम यहाँ पे पिक नहीं कर पाएंगे इस कंपटीशन के लिए.
1: सो मेक श्योर कहते हैं तभी आप कॉल नहीं करते हो यार.
0: ना थोड़ी देर में हम बोलेंगे आपको कॉल करने के लिए, तभी आप कॉल करना. बट फॉर नाउ ओनली दिस के ए स्पेस कौन सा गाना था या फिर कौन सा एक्टर था, एक्टर का नाम जरूर लिखना है जिसने हुक स्टेप किया करण औजला के गाने के ऊपर विच वेंट वायरल. सो
1: या बिकॉज इट्स करण औजला कमिंग. ये करण औजला का एक गाना आपके लिए इस बार. वेल, आर यू एक्साइटेड? करण औजला इज गोना बी इन आवर सुपर सिटी. इफ यू आर, के ए लिखकर भेजिए 5599 पे. ऐसा कौन सा गाना है जो काफी ट्रेंड किया बॉलीवुड

0: சீக்கு சொல்றிய.
1: தேசி ஆர் நாட் சோ தேசி.
2: देसी नॉट सो देसी आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं, और ये देसी नॉट सो देसी में हम आपके साथ एक बिहेवियर यहाँ पे शेयर करते हैं, और आपको फिर बताना है कि इफ इट इज अ देसी बिहेवियर और नॉट सो देसी बिहेवियर, और फिर अ देसी थिंग और नॉट सो देसी थिंग.
3: सो आज का जो बिहेवियर है ना वो आपको बताना है,
2: या थिंग है आज का,
3: या आज की जो थिंग है. सो इट्स लाइक जब आप अपने घर पे गेट टूगेदर्स करते हैं, ठीक है, आपने अपने घर पे कोई फंक्शन किया एनीथिंग, या फिर आपके घर पे शादी हुई, कोई भी ओकेजन है, सो देर इज ऑलवेज दिस वन पर्सन जिसको हर चीज से प्रॉब्लम रहेगी, जिसको
2: किसी को कुछ ना कुछ चीज से प्रॉब्लम रहेगी.
3: या लेकिन देर इज ऑलवेज दिस वन पर्सन रिज़बे ऑलवेज इन द गैदरिंग, अगर हर कोई खुश है तो देर इज वन पर्सन जिसको प्रॉब्लम निकालनी है. खाने में ना पनीर नहीं था.
2: अच्छा.
3: या फिर कुछ भी, एनीथिंग.
2: यू मीन द फुफा.
3: Yeah, the fufa of the get together. बेचारे fufa
2: को क्यों इतना बदनाम करते ना यार.
3: I know. So is it a desi behavior or do you think this is not so desi behavior? कि बाकी cultures में भी ऐसा होता है, western culture में भी ऐसा होता है. Call us and कोई experience share करना है तो वो भी share कर सकते हैं 0800 00 हम 0800 00 4866 पर. कैसा होता है कि सबको सही लग रहा है लेकिन एक ने तो कुछ निकालने की, या बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये कपड़े नहीं सही है, या अरेंजमेंट ना थोड़ा डेकोरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम
2: मतलब
3: आ रही है.
2: आप शादी के सीन बोल रहे हो. शादी
3: भी हो गया, ओकेजन भी हो गया, कुछ भी हो गया यार,
2: कोई भी इवेंट हो गया, कोई इवेंट हो गया,
3: या
2: हाँ
3: एनी ओकेजन इट कैन बी.
2: कोई एक कोई ऐसा पर्सनैलिटी जो कुछ ना कुछ कुछ खामियां निकाले. मेरे को लगता है इंग्लिश वर्जन ऑफ फुफा इज कैरन.
3: या कैरन
2: कि वो कंप्लेन कर रही है या कोई चीज नहीं पसंद आ रही,
3: कंप्लेन करनी करनी है.
2: ये देखो ना यार, ये कितना इंटरेस्टिंग है. इन अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट फीमेल अवतार दिया है उसको, कैरन बोला है, और इंडियन पर्सपेक्टिव में उसको एक मेल अंकल बताया है.
3: वो इसलिए हुआ ना क्योंकि रील फेमस हुई थी ना कैरन की, वो पहले नहीं था कभी कैरन ऐसा.
2: बट कैरन तो बहुत फेमस क्योंकि एक क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट भी खुला था ना कैरन का. वो
3: या अभी भी है?
2: नहीं बंद हो गया यहाँ पे.
3: बंद हो गया?
2: हाँ बंद हो गया.
3: और यहाँ पे बंद हो गया लेकिन एक जगह पे है ये.
2: अच्छा. So बट यहाँ पे भी था, न्यूजीलैंड में भी था, बंद हो गया वो लेकिन.
3: ओके. नहीं दिस इज टू सॉफ्ट कंट्री टू हैव अ कैरन रेस्टोरेंट.
2: या वेरी कर्टियस कंट्री.
3: वेरी कर्टियस कंट्री यार, यहाँ पे नहीं चल सकता था.
2: बताइए आप हमें. लेकिन यहाँ पे देखो, अगर अभी हम बोलते हैं ना कि अगर आप कॉल करोगे हूएवर कॉल्स विंस करण औजला टिकट्स, तो धप्पा धप कॉल आते हैं. अभी
3: देखो ना, पहले आ रहे थे कॉल्स आंसर देने के लिए कि किसने डांस किया, कौन से एक्टर ने डांस किया,
2: बट वो अभी फिर से बोलेंगे. नहीं वो नहीं, हमें देसी नॉट सो देसी आज करना है आपके साथ, तो उसके लिए आप कॉल कीजिए यहाँ पे.
3: कि ये जो बिहेवियर है, और आपने कभी ये बिहेवियर फेस किया है अपनी लाइफ में? रुज़बे तुमने कभी ये बिहेवियर फेस किया है?
2: हाँ हमेशा.
3: घर पे गेट टुगेदर या कहीं पे भी?
2: या मैं हमेशा, मतलब ये जो आप बोल रहे हो ये यूजुअली मेरे को लग रहा है इसके स्मॉलर लेवल पे हम डे टू डे, मतलब नॉर्मल जो गेट टुगेदर्स है उसमें भी एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि कोई ना कोई होगा वो बोलेगा कि अरे यार आज ना वेदर नहीं सही है यार, कि यार ठंड बहुत है यार,
3: ये गाने चल रहे हैं ना, गाने नहीं सही लगा के रखे आपने.
2: कुछ तो कुछ ना कुछ तो खामियां, मतलब
3: कुछ ना कुछ निकालनी है,
2: निकालते हैं कुछ.
3: या
2: वो एक कॉमन ट्रेट है,
3: होता है हर किसी के साथ होता है. तो आप भी बताइए, और फैमिली मेंबर्स में भी होता है, नॉट जस्ट द गेस्ट, इट्स विद द फैमिली मेंबर्स एज वेल. वो अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है ना. सो इसीलिए तो फूफा नाम आया था ना, बिकॉज फैमिली मेंबर.
2: हाँ फूफा इज दैट पार्ट ऑफ फैमिली जो एक्चुअली में दोनों साइड, दोनों पार्टीज को फैमिली, दोनों पार्टीज उसको फैमिली नहीं कंसिडर करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द फूफा विल नॉट कंसिडर your family to be your family.
3: Yeah.
2: And you will also not consider fufa as part of your family.
3: Yeah. Yes, sir. Yeah. लेकिन फूफा को खुश भी बहुत रखना होता है ना.
2: हाँ, क्योंकि वो
3: घर के दामाद
2: है. फूफा is basically बुआ के पति ना.
3: हाँ. तो घर के दामाद हो गए ना.
2: हाँ.
3: तो इसीलिए. So एक का मैसेज है, कैरन ऑफ माई लाइफ इज माई हस्बैंड.
2: हो सकता है ऐसा होता है. मेरे को लगता है हस्बैंड ज्यादा क्रैंकी और वो होते हैं,
3: चिड़चिड़े
2: होते हैं. या आई थिंक सो.
3: या कुड बी. तो आप भी बताइएगा कि आपको इसके बारे में कुछ शेयर करना है, तो कॉल करके भी यहाँ पे एक्सपीरियंस बता सकते हैं. और बताइए कि इज इट देसी बिहेवियर, ये सिर्फ अपनी देसी फैमिलीज ही ऐसा करती है, या फिर आपने कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि किसी वेस्टर्न फैमिली में भी ये बिहेवियर होता है,
2: खुद की इसमें वो लोग ने ऐसी खामियां निकाली है,
3: खामियां निकाली है, कोई ना कोई है जो अपसेट हो जाता है। मैंने अभी तक तो शायद नहीं देखा है,
2: पर आप कितना आपका रहा है उठना बैठना?
3: उठना बैठना नहीं, मतलब थोड़ा बहुत देखा है जो नहीं एक्सपीरियंस किया उतना, जितना भी देखा है।
2: या आई डोंट आई कांट कमेंट बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन डायरेक्ट लाइक वेरी क्लोज,
3: जितना सुना है बेसिकली कि या कि जैसे एक ने शेयर किया किसी फैमिली में ये हुआ ये हुआ,
2: हाँ।
3: I was like, इतना स्मूथ तो होता नहीं है।
2: हाँ, काफी स्मूथ हमेशा सुना है मैंने भी।
3: या
2: बढ़िया, आप भी शेयर कर सकते हो यहाँ पे मैसेज करके ऑन 5599।
1: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी। The Drive Show with Sandy and Rizvi.
0: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
1: Accurate traffic.
4: Switch to AMI car insurance. Cloudy with showers overnight for Auckland. A low of 10 degrees on the northwestern, quite heavy around Rosebank off ramp for westbound traffic on the northern. 43 minutes to Silverdale at the moment. Southern pretty good, heading south to Drury 47, but it is heavy northbound Sylvia Park to Green Lane. And reports of a crash in the southwestern affecting eastbound traffic near Lambie Drive.
5: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic holiday destinations in the Pacific. Fly return to Samoa from just $795 or to Tonga return from only $735. Take that well-deserved holiday in Fiji and beyond with Fiji Airways. Sail on now. Book today at fijiairways.com or call your travel agent.
7: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
9: Sounds like you've got a bloody busy week. Well, here's one more thing to add to your calendar. Don't worry, it's all good. It's an invite to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, get your blood group together and lock in a time to give blood or plasma. Each one of you could save lots of lives. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
11: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: Are you ready to go home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
13: Power Drive at 5.
1: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
14: Kundi Khadgao. सीधा अंदर आऊं
15: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: आप सुन रहे हैं हम, माहौल तो बन चुका है यहाँ पे एब्सोल्युटली बढ़िया वाला, क्योंकि करण औजला इज गोइंग टू बी लाइव इन आवर सुपर सिटी नॉट टू फार अवे, बट इट्स ऑन द 25th of August.
1: यस, पार्क अरीना में वो यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. फॉर द इन्फॉर्मेशन, टिकट्स जो है ये 17 जून से शुरू हो जाएगी प्री सेल. मेक श्योर कि आप लाइंड अप जरूर कर रहे हैं टिकट खरीदने के लिए. livenation.co.nz पे जाके आपको जितनी भी टिकट्स की इन्फॉर्मेशन है वहाँ मिल जाएगी. एंड rova.nz हमारी वेबसाइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी.
0: या वैसे सैंडी, ऑयल को लेकर काफ़ी लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है कि भाई फ्यूल प्राइसेस का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा RNZ पे, जहाँ पे ऐसा कह रहे कि इट्स लाइकली टू बी गुड न्यूज़ फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस शायद ड्रॉप हो सकते हैं, मतलब या फिर
1: अंडर $3 जा सकता है अगर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ग्लोबल सिचुएशन.
0: या डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर सिचुएशंस, बट ऐसा कह रहे हैं कि कोई डील हो रहा है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जिससे कुछ फायदे हो सकते हैं. बढ़िया, लेट्स सी. अब तक कुछ आइडिया नहीं है इसको लेकर और कुछ ऐसा मूवमेंट दिख रहा भी नहीं है.
1: अगर वो डील होता है तो या डेफिनेटली अफेक्ट होने वाला है यहाँ पे, इफेक्ट होने वाला है यहाँ पे, पर उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा रूस पे, बिकॉज देयर गोना बी अ डिले एज वेल जब चीजें थोड़ी होंगी तो.
0: जी वैसे व्हाट अ ईयर ना फॉर सो मच ड्रामा एंड ट्रेजेडी. दिस इज द ईयर फॉर इलेक्शन इन न्यूजीलैंड और इतने सारे
1: तो, हाँ ये सब चेंजे, बहुत सारी चेंजेस आई हैं. एंड हमारा अनफिल्टर्ड का जो पॉडकास्ट है गाइज, हमने वो भी रिलीज किया है. एंड दिस टाइम वी टॉक्ड अबाउट थैलेसीमिया जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है. इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है, मस्ट लिसन पॉडकास्ट है. आई विल से सो ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, यू विल गेट द फुल एपिसोड.
0: जी, इफ यू आर प्लानिंग टू हैव किड्स तो इस पॉडकास्ट को आप जरूर जाके सुनिएगा.
1: या
0: बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू नो इज नॉट वेरी स्पोकन ऑफ, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक टेस्ट कराएं थैलेसीमिया की, ताकि आपको पता चले कि आप माइनर हो या नहीं हो.
1: सो या हमने इसमें थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है.
0: माइनर मतलब नॉट अंडर 18, मतलब
1: थैलेसीमिया का जो रेंज है उसके बारे में बात की गई है. एंड हमने निवेदिता शर्मा विज के साथ एक्चुअली में बात की है, जो कि एक सीजनड हेल्थ प्रोफेशनल है एंड मदर विद लिव्ड एक्सपीरियंस एज वेल. सो इन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल के साथ हमारे साथ डिस्कस किया है.
0: जी, ड्राइव लिखकर भेजेंगे 5599 पे, वील सेंड यू द लिंक फॉर द पॉडकास्ट, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं जहाँ पे भी आप पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं वहाँ पे.
1: एंड ग्रेट कॉमेडी नाइट होने वाली है जहाँ पे ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर इनका शो लेके आ रहे हैं. VIP सीट सोल्ड आउट हो चुकी है उसपे. सो 18 जुलाई को ये शो होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. आपने टिकट जल्दी से बुक करवा लीजिए bookmyevent.co.nz पे जाके. हमारे फेसबुक पेज पे एक हमने पोस्ट भी किया है, वहाँ पे जाइएगा. सो वहाँ पे कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर इनकी फोटो है, आपको कैप्शन करना है कि वो दोनों क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं.
0: Oh, wow, that's quite creative.
1: Yeah, so वहाँ पे कैप्शन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है.

0: Happy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
1: See it, hear it, speak up. Cloudy for Auckland. Showers overnight. A low of 10 degrees. There is an emergency services incident on the southern before the Parker State Road overbridge. So the right southbound lane is blocked there. Delays in that area at the moment. Northwestern, but heavy around the Rosebank off-ramp. The southwestern reports of a crash affecting eastbound traffic near Lambie Drive.
2: Free and confidential elder abuse support available from ageconcernauckland.org.nz.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Oh my, oh my, Grey South Road, greater than ever.
7: South Auckland's buses just became a lot better.
6: Weymouth Road, way better buses.
7: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
6: Woody, no worries. MIT, A-OK.
7: Search AT Better South Auckland Buses for details.
6: Airport, got your transport.
7: Then turn up and go.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
9: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hai. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. Uske liye apno ko khane pe bulaye. रिश्तों को और करीब लाए कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स
10: एट Kogan Mobile वी वांट टू हेल्प Kiwis एक्सपीरियंस मोबाइल Aussie स्टाइल दैट डजंट मीन सेइंग या ना हे गॉन फ्लाइमन गला It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mom without having to call your accountant first. Right now, get a 180 gigabyte yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than 21 bucks. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
11: Are you ready to go home?
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: Power Drive at 5.
13: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
14: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Power Drive at 5 आपके लिए जारी है अभी और आज 6 बजे के बाद हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आने वाले हैं 6 से 7 के बीच.
15: Yes, सुशांत सिंह राजपूत इनको हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं. 14 June 2020 was the day when he passed away and 6 years on, I think आज भी उनके गानों को, उनकी मूवीज को, उनकी बातों को बहुत याद रखा जाता है. In fact, आज हम नेक्स्ट आवर में ना 6 से 7 के बीच में हम कुछ उनके इंटरव्यू के सेगमेंट्स प्ले करने वाले हैं बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत बीन सच अ पर्सनैलिटी रुजबे जिनकी बातें ना लाइक अगर मुझे को लगता है कोई प्रोफेसर किसी को मोटिवेशनल स्पीच देनी हो ना ही कुड हैव बीन अ टेड स्पीकर वो इजीली एक टेड स्पीकर बन सकते थे जहाँ पे वो एक मोटिवेशनल स्पीच देते
14: या आई थिंक काफी अहेड ऑफ इट्स टाइम बातें वो करते थे ही वाज मच इनटू स्पेस एंड स्टफ आल्सो ना उसको बहुत अच्छा शौक
15: उन्होंने जमीन खरीदी थी ना लाइक मून पे
14: ना हां ऐसा कुछ सुना था
15: मेनी अदर थिंग्स सो वी आर गोना टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड प्ले हिज मूवी सॉन्ग्स नेक्स्ट आवर में बिटवीन 6 to 7 PM सो सुना ना भूलेगा आप
14: जी जरूर सुनिएगा और
15: लेकिन उससे पहले स्ट्रीमिंग रेस के नए लीडर का नाम अनाउंस हो चुका है
14: किसके
15: स्ट्रीमिंग जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है
14: अच्छा
15: सो यू नो people are spending more time on YouTube each day than on Netflix. So YouTube is trending more than Netflix now.
14: Haan, kyunki YouTube free hai, yaar, of course, wohi hona chahiye na.
15: Yeah, even with the premium also, agar paid wala bhi lete hai, wo still sasta padta hai kafi logon ko.
14: Achha.
15: But kafi log abhi YouTube pe stream kar rahe hai, Netflix se bhi zyada. YouTube stream ho raha hai. So this
14: but
15: is
14: yeah, this doesn't come as a shock to me because obviously YouTube is more widespread na. YouTube jitna reach hai YouTube
15: more available
14: ka,
15: as well
14: and more available free app hai compared to Netflix jahan pe ek paid subscription model hai jahan pe matlab
15: yeah.
14: dono YouTube bhi subscription wala hai premium if you don't want to see ads
15: yeah
14: but yeah YouTube definitely would be more the most streamed platform I think even over Spotify
15: yeah
14: For that matter, क्योंकि काफी सारे Spotify के podcast और songs वो सब YouTube पे वैसे भी होते ही है
15: 100% वो भी होते हैं वेल एक और चीज जो बहुत ट्रेंड कर रही है हमारे लोकल मीडिया जो है वहाँ का एक आर्टिकल सो देयर इज वन मीडिया जिन्होंने यू नो वुमेन वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना उसमें न्यूजीलैंड की टीम की हार हुई है तो वहाँ पे जो उन्होंने लिखा है ड्रॉप्ड पहले कैप्शन ये है ड्रॉप्ड कैचेस Cost white ferns in T20 World Cup lost to West Indies. और फोटो किसकी है जो अपनी है ना पटेल उसका कैच ऐसा ड्रॉप हो रहा है उसकी फोटो है बट इन रियलिटी द कैच शी ड्रॉप्ड वॉज अ वेरी टफ वन जो बाकी कैच ड्रॉप हुए हैं दोज वर वेरी ईजी वन
14: ओह माय गॉड
15: सो या एक मीडिया है जिन्होंने ऐसी हेडलाइन बनाई है मतलब वही फोटो के ऊपर उसी की फोटो के ऊपर ऐसा हेडलाइन बनाई
14: है कैन आई गेस व्हिच मीडिया
15: यू कैन इजीली गेस ऑफ कोर्स यू कैन 100% गेस व्हाट मीडिया इज दिस
14: या
15: बट उसके ऊपर भी लोग थोड़ा ऐसा अपसेट है कि भाई अगर आपको फोटो डालनी थी तो मतलब या तो फुल टीम की डालते स्पेसिफिक एक पर्सन को वहां पे फिंगर पॉइंट आउट करके
14: Catches नहीं नहीं ऐसा लिखा है catches win matches
15: yeah
14: और drop catches cost अरे यार this is so really so bad यार
15: it is bad
14: terrible
15: so,
14: terrible
15: yeah ये भी होता है
14: anyway what can we do

0: Sansar, 138 Great South Road, Papa Toitoi. Sona Sansar, you're never too old for gold.
1: Here at Bunnings, you can warm up any outdoor space this winter. Gas heaters are great for the backyard. It's a portable thing, so you can move it around, and we've got the fire pits, make it feel cosy and warm.
2: Secure your home with an Arlec 7-watt solar sensor LED floodlight, only $49.90. Get around a Glow Tambo steel fire pit, $98. And solid energy roundwood firewood is just $15.95.
1: Get your outdoor space winter ready for less. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
3: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. The Prime Minister isn't counting his chickens on the Middle East crisis yet, despite a peace deal being announced between the US and Iran. Christopher Luxon is welcoming the plan, but says the benefits to New Zealand will lag, even if the deal holds.
5: It's going to take a while for the logistics to work their way through the system. We've historically thought it was always in the 3 to 4 week range we'd start to see relief from prices.
4: New data has revealed the extent of online bullying in New Zealand. A Justice Ministry report shows 1 in 4 young people have been bullied in the last year, half of them online. Sector Insights Manager Rebecca Parrish says some were getting more than 5 hours screen time a day.
6: It's really important that we have policies and practices that are in place to ensure that online is a safe place for young people as well.
4: Consultation has opened in Tauranga on a proposed ban on fireworks in public places. The ban would cover any land owned by the council, including parks and roadside berms. It follows concerns about property damage and harm to animals. And a common sea sponge could be the key to conservation in Wellington Harbour. Victoria University researchers found Superites australiensis can survive short-term increases in sediment washed in by intense storms. They say it could be used to help filter harbour water. To football updates brought to you by Hisense. Tomorrow afternoon from 1, the All Whites will open their World Cup campaign against Iran. The All Whites are trying to ignore the political discussions surrounding the game. And in today's late match, Sweden thrashed Tunisia 5-1. And the NRL will investigate that shot clock confusion that cost the Warriors on Saturday against the Sharks. Chanel Harris-Tavita was penalised after he was timed out.
3: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
7: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
8: सूचित किया जाता है मोटा गुजरात के स्वर्गीय भिकुभाई टेलर की पत्नी महेंद्रा चंद्रकांत सुशीला बेन हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड के मंजुला बेन भिकुभाई टेलर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार मंगलवार को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0274-202-4411-441 पर कॉल कर सकते हैं गुजरात के स्वर्गीय भिकुभाई टेलर की पत्नी महेंद्रा चंद्रकांत सुशीला बेन हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड के मंजुला बेन भिकुभाई टेलर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0274-202-441 पर कॉल कर सकते हैं स्वर्गीय सोनी हरिलाल और सविता बेन धर्मसी की पुत्री के पुत्र अरविंद और राकेश धर्मसी के भाई सोनी प्रवीण धर्मसी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0224-521-984 पर कॉल कर सकते हैं स्वर्गीय सोनी हरिलाल और सविता बेन धर्मसी की पुत्र अरविंद और राकेश धर्मसी के भाई सोनी प्रवीण धर्मसी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार कल दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0224-521-984 पर कॉल कर सकते हैं सूचित किया जाता है शैलेंद्र सैम निव ईश्वानी के पिता बिंदमती के पति सिंगाटोका फीजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0216631001 पर कॉल कर सकते हैं शैलेंद्र सैम निव ईश्वानी के पिता बिंदमती के पति सिंगाटोका फीजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार

0: बुधवार 17 जून दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है रवि रविबा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के राम करण के भाई मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जय करण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को 1 बजे मांगरे लॉन सेमेट्री 85 मैकेंजी रोड मांगरे में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0834-3575 पर कॉल कर सकते हैं। रवि रवि बा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के राम करण के भाई मांगरे के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मांगरे के जय करण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को दोपहर 1 बजे मांगरे लॉन सेमेट्री 85 मैकेंजी रोड मांगरे में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0834-3575 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है लोतोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की माँ सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार फ्राइडे 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0647-520 पर कॉल कर सकते हैं। लोतोका के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की माँ सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार फ्राइडे 19 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0647-520 पर कॉल कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: You're listening to The Drive Show with Sandy and Rizvi. Good evening, Sandy.
4: A very, very good evening to you. आज 15 जून, आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को इस आवर में. अमेजिंग एक्टर रहे हैं, अमेजिंग आई विल से मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, जिस वजह से उनकी वीडियोस बाहर आती है उनकी इंटरव्यूज की.
3: जी, मतलब आपने एक चीज तो सही कही थी ड्राइव शो में पहले कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे सेलिब्रिटी, एक पर्सनालिटी है या थे जो जिनकी फैन फॉलोइंग उनके डेथ के बाद ज्यादा बढ़ी.
4: या
3: एंड उनके इंटरव्यूज ज्यादा प्ले होने लग गए और उनके बाद में डेथ के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ओ देयर वाज मोर देन सुशांत सिंह राजपूत द एक्टर.
4: या एंड एक्टर में भी ना रुजबे 7 साल, मतलब ही बीन इन इंडस्ट्री लाइक फ्यू मूवीज आई विल से, बट या ही वाज जस्ट फॉर 7 years इन बॉलीवुड.
3: ओनली सेवन इयर्स.
4: 7 years में बट ही पिक द रोल जिसमें वो अपने आप को खुद एकदम से ढाल देते थे, उसको स्टडी करते थे वो हर एक रोल को. रिमेम्बर, हैव यू सीन दैट मूवी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी?
3: नहीं, वो नहीं देखी मैंने.
4: वो मूवी देखोगे ना, he actually spent time in Kolkata to study the role.
3: Oh.
4: And us role mein ghusne ke liye. So it's such a nice movie. Very nice movie. Different kind of movie, I will say. Not a masala entertainer movie. It's a very different kind of movie.
3: Right.
4: Kai logo ko shayad samajh mein bhi na aaye.
3: Achha hai.
4: Jis vajah se us movie ko banaya gaya. Thoda different kind of movie hai.
3: Slow movie hai, thoda alag
4: se. Slow movie hai. But very interesting role usne kiya tha usme, detective Byomkesh Bakshi is movie mein. But yeah, there's so much about Sushant Singh Rajput. आज हम सब कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ उनकी आवाज़ में आपको सुनाएंगे भी.
3: तो शुरू करें.
4: Yeah.
3: तो ये जो एक इंटरव्यू है, this is with वो टोपी वाले भाई साहब, क्या है उनका नाम?
4: फरीदून
3: के साथ इनका ये इंटरव्यू है. ये सुनना आप.
5: Moral and moral sense or ethics sense, but also in terms of getting people together and making them good individually and as a team. So that's great.
6: High time से भी अगर कुछ ज़्यादा immediate time हो सकता है तो वो time है अभी. Because this is for sure, our ignorance cannot stop what is inevitable. और मैं जो inevitability की बात कर रहा हूँ वो है जो अभी technology से भी आएगी. आपको मैं एक fact देता हूँ, 65% of the kids who are going to kindergarten this year will end up, if they ever end up having a job, will end up working for technologies that are still not invented yet. So jab aisa hota hai to schools ko bhi pata nahi hota ki wo padhayen kya. To abhi hum aise state pe hain ki hame pata hi nahi hai ki hame padhana bhi kya chahiye. To hum kitna acha padhte hain aur aapas mein hamari ranking kya hai, ye to immaterial ho gaya. Main aapko pure global problem bata raha hu. Hame naya knowledge structure bana rahe hain एडुकेशन का, जिसमें हम इमोशनल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि अननोन सिचुएशंस में कैसे डील करें, क्योंकि हमेशा अननोन सिचुएशंस ही होंगे, क्योंकि अब रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है. पहले चेंज कांस्टेंट था, अब रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ही नहीं पता कि क्या होने वाला है. सो फॉर दैट योर इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड. सो इमोशनल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. कोडिंग सिखाई जा रही है बच्चों को, क्योंकि अगर आपको कोडिंग नहीं आती 5 साल के अंदर, अभी जैसे आप, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमें अंग्रेजी आती है, हमें मैथमेटिक्स आता है, वर्किंग नॉलेज है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, 5 साल के बाद कोडिंग वैसी चीज़ हो जाएगी. और हमारा इग्नोरेंस, हमें नहीं पता है, लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, विल नॉट स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग. अगर लोग इसके बारे में पता, सबके पास गूगल है, गूगल पर जाएँ पता करें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये होंगी नहीं, हो रही हैं. एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस. Future is already here. It is just unevenly distributed.
3: That's okay. So cool, yeah.
4: मतलब ये 6 साल से भी पहले की बातें, I think तकरीबन 8 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ने,
3: 8 साल पहले इसने
4: ये जो बातें की है, उस समय पर AI का कुछ पता भी नहीं था कि AI gonna exist. And the thing he said कि मतलब schools में पढ़ाया क्या जाना चाहिए जो आगे जाके काम आए. Like there is one thing, right? Like people are confused. Like ये technology कहीं तब तक ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, inevitable क्या है. So it's Yeah, that's the mind of Sushant Singh Rajput. Yeah, छोटा सा snippet हमने यहाँ पे, small snippet हमने यहाँ पे सुना.
3: Very intelligent band, Sushant Singh Rajput. उसको आज tribute दे रहे हैं हम. उनकी movie का ये गाना आपके लिए.
4: He started with Kai Poche.
3: Kai Poche से, Kai Poche में बहुत, वो first movie नहीं थी ना?
4: It's a debut movie.
3: Debut movie?
4: It's a debut movie of Sushant Singh Rajput.
3: क्या बात कर रहे हो?
4: Yeah.
3: वो debut कहीं से भी नहीं लगी यार.
4: Exactly.
3: What? But because he had done TV serials na, for so many years.
4: Exactly. So, yeah. Bollywood movie mein, like he, it was a debut and this was from the novel na, Three Mistakes of My Life.
3: Yeah, Three Mistakes. Chetan Bhagat ki novel thi. And I think wo time bhi aisa tha na, that someone else also had done this. They had left TV ka bahut achha show.
4: Yes.
3: Wo Sujal, kya Rajiv Bhatia, Rajiv?
4: Rajiv Khandelwala.
3: Rajiv Khandelwala. तो राजीव खंडेलवाल ने भी यही किया था. He had left a very high paying job.
4: It didn't work for him.
3: But didn't work for him. और फिर सुशांत सिंह राजपूत ने जब किया तो तभी यही लोग इसमें थे कि is this the right decision, like you know.
4: But it worked for him.
3: But worked, yeah, well worked for some time.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए आज हम सुशांत सिंह राजपूत स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं because yesterday was his death anniversary.
2: Yeah, सुशांत सिंह राजपूत वैसे ऑल इंडिया रैंक इनका आया था 7 इन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम नाउ DTU. वहां पे ही एक्चुअली स्टडीड, उनकी बातों से पता चलता है सो इंटेलिजेंट दो, बट यू नो ही कुड राइट विद बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम.
1: ओह वाओ, एम्बिडेक्स्ट्रस टाइप. एट द सेम टाइम वो करते थे,
2: एट द सेम टाइम.
1: तो वीरू सहस्त्रबुद्धे, मतलब ये अपन ने पहले बात की है शायद इसके बारे में.
2: शायद हमने की है इसके बारे में बात.
1: वाओ, क्रेजी यार.
2: एंड आल्सो अगर आप उनके इंस्टा पे जाए तो यू विल आल्सो नोटिस उनका डीप कनेक्शन टू हिज मदर्स नेम. So he was very very close. So एक बार उन्होंने proudly ऐसे point out किया था कि उनका नाम जो है सुशांत, अगर उसको थोड़ा ऐसा space out करेंगे तो उसमें उषा आता है.
1: Oh wow.
2: It's a name of his mother. तो वो हमेशा बहुत close मतलब अपने family members के बारे में, especially अपनी mom के बारे में काफी post किया करते थे. अगर मैं उनके insta पे जाऊँ तो last post उनकी mother की है.
1: Oh wow.
2: Yeah, so a person who was obsessed with astronomy, space, moon, in sab ke bare mein. And yaar, unke insta mein diagrams ki photos hai.
1: Okay.
2: Astronomies, wo sari cheez hai jo samajhni thodi mushkil hai ki ye kya diagram banaye hue hai.
1: Matlab he was not, aur wo unka aisa bhi plan tha na ke he wanted to live like on a farm, like completely aisa kuch maine suna tha.
2: Yeah.
1: Like he wanted to be very away from everything and that was his dream, like खेती करना.
2: Yeah.
1: Oh, उनका सपना था.
2: Yeah. But the movies he did, like जब जो अभी हम गाना सुनने वाले हैं MS धोनी का, ये movie देखते समय ना रुजबे ऐसा लगा नहीं कि मैं सुशांत को देख रही हूँ.
1: नहीं, बिल्कुल नहीं.
2: It was whole time like मैं MS धोनी को देख रही हूँ.
1: Yeah, absolutely. मैं अभी actually बस ऐसे सोच रहा था इसके बारे में, like you know अभी काफी debate चल रहा है ना कि रणवीर सिंह डॉन नहीं कर रहे तो हु कैन बी द डॉन. यू नो सुशांत सिंह राजपूत वुड हैव बीन अ ग्रेट डॉन.
2: या
1: ही वुड बीन अ ग्रेट डॉन.
2: यस, इसे वो एक ड्राइव मूवी की थी जो कि ऑनलाइन आई थी.
1: हाँ, वो तो
2: है काइंड ऑफ लाइक सिमिलर लाइक वो पर्सोना.
1: हाँ, वैसा पर्सोना
2: कर सकते थे वो.
1: या वैसा टाइप का था वो मूवी. ओके थी,
2: या
1: बट या
2: नॉट सो ग्रेट मूवी.
1: बट आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत कुड हैव बीन अ ग्रेट डॉन. But from his movie, MS Dhoni, this is a very beautiful track, Arman Malik ki awaaz mein.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. और आज सुशांत सिंह राजपूत के स्पेशल गाने आपको हम सुना रहे हैं
1: फ्रॉम हिज मूवीज. या तुम्हें पता है रुजबे, ही एक्चुअली हैड अ लिस्ट ऑफ 55 ड्रीम्स ही वांटेड टू अचीव.
0: 55 ड्रीम्स,
1: ही हैड अ बकेट लिस्ट.
0: वाओ.
1: सो इट वाज लाइक लर्निंग हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, टीचिंग कोडिंग, जिसके बारे में उन्होंने बहुत बातें की,
0: कोडिंग के बारे में बहुत वो बात कर रहे थे,
1: अंडर प्रिविलेज किड्स को वो सिखाना चाहते थे, बहुत सारी और चीजें लाइक आर्चरी सीखना. सो ही हैड अ लिस्ट लाइक 55 ड्रीम्स उन्होंने वहां पे लिखे हुए थे.
0: मेरे पास वो लिस्ट भी नहीं है यार, आपके पास है क्या कोई लिस्ट? आपको क्या
1: मैंने
0: करना
1: बहुत
0: है?
1: पहले बनाई थी लिस्ट, बहुत साल पहले मैंने लिस्ट बनाई थी. उस लिस्ट में काफी चीजें की है मैंने.
0: ओह वाओ.
1: उस लिस्ट में काफी चीजें की हुई है. बट या काफी उनकी बातें हम यहाँ पे कर ही रहे, लेकिन कुछ सुनाते भी हैं आपको.
2: I have that quote, that Mahatma Gandhi's quote, and I've actually added two lines, which I also tweeted recently.
3: Right.
2: It's like, when you, how do you know? What's the litmus test of knowing that you're going right? So first, people, they ignore you completely. Then they will laugh at you.
3: Right.
2: Then they will fight with you.
3: Right.
2: And then you win. Till now, it was Mahatma Gandhi. I've added two lines. And the funny thing is, you were never bothered. Not because you are dismissive of people's opinion, but you are doing it because of something completely different. I don't want money in the sense of I don't work for money. You give it to me, I'll keep it. But if you don't give it to me, I'm still happy. So I don't work for that. You think that by doing your negative stories, people would think badly about me? I don't care. That's their headache. They need to deal with it. As far as me and my equation with my work is concerned, it is undiluted. So please don't waste your time. I have that quote.
0: That's so,
1: so cool,
0: cool,
1: man. But the life lesson is bande ne diye.
0: Don't waste your time. दूसरों को दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने के टाइम पे.
1: वो भी
0: या उनको जज करने से पहले,
1: जज करने से पहले भी या.
0: लेकिन फिर अगर वो वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, तो फिर वो लिटमस टेस्ट कैसे पास होगा ना? वो लिटमस
1: हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उन बातों की तवज्जो देने के लिए.
0: ये है मैसेज.

0: Maki Road, Papa Totoy, plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
0: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
0: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: Let's go! 3, 2, 1!
7: Trend Makers.

0: beds from only $7.99 on sale now.
1: Trend makers में आज सुशांत सिंह राजपूत को हम tribute दे रहे हैं और उनके गाने आपको यहाँ पे सुना रहे हैं, कुछ dialogues भी आपको सुना रहे हैं।
2: Yes, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ FIU है हॉकी शुरू हो चुका है ये टूर्नामेंट रूल्स पे, इसके बारे में अपडेट दे देते हैं आज के मैचेस का अगर आपने मिस आउट किया है। नीदरलैंड्स और इंडिया के बीच में जो मैच था, नीदरलैंड्स की जीत हुई 3-2 के साथ। कोरिया न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच था, न्यूजीलैंड की जीत हुई 6-2 के साथ। इंडिया US ने खेला जहाँ पर इंडिया की जीत हुई 3-2 के साथ। दैन जापान यूरुग्वे में जापान की 3-1 के साथ जीत हुई। चिली एंड फ्रांस के बीच में 2-0 के साथ चिली की जीत हुई। तो सो फार दीज आर द रिजल्ट ऑफ द मैचेस जो अपकमिंग है, इसके बारे में अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। नाउ कमिंग बैक टू सुशांत सिंह राजपूत, वैसे इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को प्लान किया था अंडर प्रिविलेज को एजुकेट करने के लिए एंड टू स्पॉन्सर स्टूडेंट्स टू विजिट नासा एज वेल।
1: Oh wow, NASA के लिए भी प्लान किया था।
2: Yeah,
1: he was lot into space study and as well, ना?
2: Yeah,
1: space,
2: उस सब में
1: इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे वो।
2: You know what? They actually co-founded companies which has focused on AI and virtual reality.
1: अच्छा।
2: Yes.
1: So that's why he knew so much about coding and
2: 100% ये सारी चीजें।
1: Oh wow.
2: So the future of technology में काफी इंटरेस्ट रहा है।
1: Right. So anyway, we've got like a message, one more thing that we've got from Sushant Singh Rajput, मतलब उनके जो हमें online मिला है, तो इसको सुनते हैं। ये inspiration के बारे में उनको पूछ रहे कि ये किससे inspiration लेते हैं। Let's listen.
3: अपने आप से।
4: Wow, कोई किसी और से नहीं।
3: Till the time you know the why of doing what you do, you don't need an inspiration.
4: What do you think is the secret to staying relevant?
3: You know, when you are like really talented and you learn, you acquire skills, you try to hold on to everything that you know. But there is a time when you let go of those things. I would quote my favorite Cohen line. It says that you lose your grip and then you slip into the masterpiece. Yeah. So that is what it is.
1: What a beautiful thought, yeah.
2: Man, बहुत books पढ़ी है सुशांत सिंह राजपूत ने, that's why like he's always like this. Well, इसी note पे आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। हम कोशिश करेंगे ये जो segment है ये बाद में आप रूवा पर भी सुन सके।
1: Have a wonderful evening. Bye.
2: Bye.

0: Traffic.
1: Join Skinny, get $30 happier.
2: Cloudy for Auckland, showers overnight and a low of 10 degrees. Pretty clear on our roads now. We just understand still on the southern, there's an emergency services incident before the Parker State Road overbridge. Right, southbound lane blocked there. In the southwestern, a little bit slow heading west around May Road. From the city to Drury, just 29 minutes to the airport, 23.
1: Switch to Skinny and get $30 credit. Available on $27 plus plans. Terms apply.
3: Dadi ke haath ki churi ho, yabba. के हाथ के पराठे सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि क्राइंग विंडोज सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है
5: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111 रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Hum. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक Select New Navara Models पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket.

0: limited time. So, देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: Hum. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. The Finance Minister is insisting she plans to maintain the government's strict approach to spending. Speaking after today's Cabinet meeting, Nicola Willis said she thinks voters will show their gratitude for that discipline come election time. A new report has confirmed young people who have experienced state care have higher rates of exposure to sexual harm. The Justice Ministry report says they're also more likely to become an offender in the justice system. Two people have been taken into custody after a vehicle was seen driving erratically on Auckland's southern motorway this evening. Officers stopped the Mercedes-Benz south of the Papakura on-ramp near Drury. In sport, football updates brought to you by Hisense, and the All Whites step onto the international stage tomorrow afternoon, taking on Iran. The Iranians are saying all the right things about their build-up, saying the political tensions may have damaged World Cup preparations, but the players are not paying any attention to the hype. And the NRL will investigate that controversial penalty awarded against the Warriors over shot clock confusion on Saturday night in the narrow loss to the Sharks.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari good brands nahi hai.
2: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
5: नाइट कैफे में लेकर आ गया हूँ. ये हफ्ता भी हमारे साथ होगा नाइट कैफे, मंडे टू थर्सडे 8 PM टू मिडनाइट. ये चलता रहेगा आपके लिए. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मैं भी उतना ही तैयार हूँ, क्योंकि आई एम गियर्ड अप फॉर टुनाइट्स शो जो आपके लिए रहेगा नाइट कैफे. मिडनाइट तक आपको हमारा साथ देना है, क्योंकि बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स तो लेकर आएंगे, लेकिन 8 to 9 जो हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है वो भी आपके लिए हम आज लेकर आने जा रहे हैं. आज का है नो लॉजिक मंडे, और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए नो लॉजिक मंडे.
2: Where sense takes a break.
6: नो लॉजिक मंडे.
5: नो लॉजिक मंडे में आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. नो लॉजिक के बारे में तो आपको पता है, गाने ऐसे जिसमें लॉजिक कम, बातें ऐसे जिसमें लॉजिक उतना नहीं. कुछ सरप्राइजिंग, कुछ आश्चर्य करने वाले जानकारी हम लेकर आए हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. बस आपको हमारा साथ देना है, और इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग प्रोग्राम, क्योंकि आज मंडे है. मंडे ब्लूज आई एम श्योर हमेशा लोगों के पास होता है, लोग फील करते हैं. तो फाइनली मंडे इज़ ओवर, थैंक गॉड. मतलब वर्किंग आवर्स आ होगा, और अभी आप आराम कर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ लाइट टॉपिक्स आपके लिए आज हम लेकर आएंगे नो लॉजिक मंडे में. मैं आपका स्वागत करता हूँ. 8 to 9 ये सेगमेंट आपके लिए चलेगा.

0: Tyrie e fyrde mu qakke.
1: When nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.
2: You're listening to No Logic Monday और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए या अपना नाम कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर 2 pounds ऑफ हनी एक मिनट में खाना पड़े तो कैसा रहेगा। दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इस आदमी ने बनाया है। ये जो कॉम्पिटिशन था ऑक्सबर्ग जर्मनी में हुआ था, जहाँ पर इस आदमी ने 1273 grams ऑफ 44.91 ounces ऑफ हनी 60 seconds के अंदर खाया। और शुगर रश की बात करें तो आई थिंक ये दिस इज़ द हाइट ऑफ इट कि इसने ये किया है। इस आदमी का नाम है ओटोल्स। इन्होंने सक्सेसफुल रिकॉर्ड सेटिंग अटेम्प्ट किया है और अब ऑनलाइन इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ करके एक रिकॉर्ड बनाया है। 11 June ऑफ दिस ईयर इस स्टोरी को पब्लिश किया गया है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, नो लॉजिक मंडे जारी है। कुछ और भी गाने जिसमें लॉजिक कम सुनाई देता है आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं।

0: नाइट कैफे
1: नो लॉजिक मंडे आप सुन रहे हैं और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। ये स्टोरी आपको भी काफी फनी लगेगा और आई थिंक फायदेमंद भी। साउथ कोरिया की स्टोरी है, 11th जून ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है। यहाँ के जो यंग लोग हैं अभी डोपामिन साइट्स का इस्तेमाल करते हैं जो इमिटेट करता है रियल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। और इनफैक्ट इसकी खास बात यह है कि कोई एक्चुअल परचेसेस नहीं होते हैं। ये साइट पर लोग जाकर प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हैं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, आइटम्स को कार्ट्स में ऐड कर पाएंगे और इवन कंप्लीट कर सकते हैं फेक चेकआउट प्रोसेस। और यहाँ पर दे कैन वॉच वर्चुअल कुरियर डिलीवर देयर ऑर्डर इन रियल टाइम, लेकिन कुछ एक्चुअली शिप नहीं होता है। काफ़ी लोगों ने कहा कि एक्सपीरियंस वही एक्साइटमेंट देता है, वही एंटिसिपेशन देता है जो एक रियल शॉपिंग से होता है, लेकिन इससे पैसे बचते हैं क्योंकि रियल शॉपिंग दरअसल होते नहीं है। और एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये ऐप्स आगे चलकर कॉस्ट रिड्यूस करेंगे और एडिक्टिव बिहेवियर्स को कम करेंगे लोगों में, स्पेशली यंग लोगों में। क्या आप में स्टोरी में लॉजिक दिखा है? मुझे तो बहुत लॉजिक दिखा है, लेकिन आज नो लॉजिक मंडे में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग और सरप्राइजिंगली बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ और प्यारे गाने आपको सुनाते हैं।

Monday. You're listening to No Logic Monday और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इंटरेस्टिंग खबरें भी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ. 10th जून ऑफ दिस ईयर एक पब्लिश हुआ है स्टोरी शंघाई चाइना में, जहाँ पर 70 ईयर ओल्ड वुमन जिनका नाम यिंगजी है, ये इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है फॉर हर यूथफुल अपीयरेंस और बोल्ड फैशन स्टाइल. इनको बहुत पॉपुलरिटी मिली बाय पोस्टिंग वीडियोज ऑफ हर सेल्फ, जहाँ पर ये हाई हील्स पहनकर डांस कर रही है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली पोज कर रही है ऑन सिटी स्ट्रीट्स. यिंगजी बिलीव करती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सपेंसिव ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इन्होंने कहा है कि इनका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, जैसे डेली योगा, हेल्थी ईटिंग और अवॉइड ईटिंग आफ्टर 5 PM, ये हैबिट्स ने इनको बहुत मदद किया है. 70 साल के होने के बाद इन्होंने सीनियर फैशन ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां पर इन्होंने अपना ड्रीम ऑफ वॉकिंग द रनवे फुलफिल किया, जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर हुए हैं कि एज इज़ जस्ट ए नंबर और कोई लिमिटेशन नहीं है. इनको देखकर लोगों ने कहा कि शायद ये AI का इस्तेमाल करती होंगी या बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल करती होंगी और ये इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी थी. मजाक भी लोग इनके करने बनाने लगे थे, लेकिन ज़रा सोचिए ये सब झूठ निकला या फॉल्स निकला. शी इज़ इनफैक्ट अ वेरी फिट 74 ईयर ओल्ड वुमन जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैशन सेंस है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. नो लॉजिक मंडे में एक और प्यारा गाना आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं, आप पेश करने जा रहे हैं. आप ज़रूर इन्जॉय करें. और भी बातें बहुत ही जल्दी.

0: Cafe on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: idea. Streaming on Rover.
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
3: The beat of Bollywood.
4: Night Cafe on Hum.
3: You're listening to Krish.
5: Let's go!
6: No Logic Monday आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ ऐसे गाने जिसमें लॉजिक कम, कुछ ऐसी बातें जिसमें लॉजिक कम लेकिन इट इज़ सरप्राइजिंगली ट्रू। यूनाइटेड किंगडम की स्टोरी है, 5 जून को पब्लिश हुआ ऑफ दिस ईयर। क्लेयर हॉब्सन नाम की एक मेकअप आर्टिस्ट है, इन्होंने एक यूनिक वे ढूंढा कि किस तरह से ये अपना डॉग जो अभी इनके बीच नहीं है, वो शी इज़ पास्ड अवे, उनका नाम पैच था, उनको ये अपने बहुत करीब रखना चाहती थी इवन आफ्टर हर पासिंग अवे। तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग हिज एशेज विद हर ऑल द टाइम, इन्होंने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एशेज लिया और उसको मिक्स किया इंक के साथ में और सेमी परमानेंट आईलाइनर टैटू बनवाया, ताकि ये आइडिया से जब ये अब्रॉड जाएंगी या यहाँ वहाँ अगर इनको ट्रैवल करना होगा और ऐश जो डॉग ऐश के साथ ये नहीं ट्रैवल कर पाएंगी, इन्होंने कहा कि शी इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग विद हर डॉग्स ऐशेज इन अ सूटकेस, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो एक आईलाइनर टैटू से ये अपने डॉग को अपने पास रख पाएगी हमेशा। एक फेलो मेकअप आर्टिस्ट ने इनको हेल्प किया टू कैरी आउट द अनयूजुअल प्रोसीजर, जहाँ पर पैचेस को के एशेस को ब्लेंड किया गया इनटू द टैटू पिगमेंट, और ये आईलाइनर टैटू विल लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, और क्लेयर ने कहा कि ये इनफ एशेज है फॉर फ्यूचर टच अप्स, अगर इनको कराना है तो वो भी एशेज जो बाकी एशेज इनके पास है, और दिस इज़ टू एंश्योर कि पैच जो इनका बिलव्ड डॉग है ये हमेशा इनके साथ रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। दिस इज़ समवॉट इमोशनल लॉजिक, थोड़ा अलग लगता है कि ऐसा कोई करे, लेकिन आई एम श्योर जब कोई आपके दिल के इतने करीब हो तो आप ये कदम ये उठाएंगे या इस हद तक भी जा सकते हैं उनको अपने करीब रखने के लिए हमेशा के लिए। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: Mr. and Mrs. Khiladi.
1: Where sense takes a break.
2: No Logic Monday.
3: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ही देर तक, और ये सेगमेंट आपके लिए चलेगा और उसके बाद में 9 to 10 आपके लिए रहेगा नाइट कैफे, जहाँ पर आपके लिए बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और बैक टू बैक सॉन्ग्स भी आपके लिए हम पेश करेंगे। एक महिला के ऊपर ऑपरेशन किया गया और ये अब अपना आँखें बंद नहीं कर पा रहे ड्यू टू बॉच्ड ऑपरेशन। अब ये डेफेमेशन केस कर रही है अपने सर्जन के ऊपर ताकि इनको कॉस्ट मिले जो इन्होंने इस सर्जन पर खर्च किए, सर्जरी पर खर्च किए हैं। 1 जून को ऑफ दिस ईयर ये स्टोरी छपी है और कहा गया है कि डबल आईलिड सर्जरी एट एन अनलाइसेंस्ड क्लिनिक के पास ये गई और वहाँ पर डबल आईलिड सर्जरी हुआ और अब ये सेवरल ईयर्स तक अपने आँखें नहीं खोल पा रही है फुली, इवन वेन स्लीपिंग इनकी आँखें खुली रहती है। और मैं फ़ोटो देख रहा हूँ जिसमें बहुत बुरा काम इस पर किया गया है और ये अब सर्जरी जो कॉस्मेटिक सर्जरी हुआ है उसके लिए अब ये कॉम्पेंसेशन और डेफेमेशन केस सर्जन पर डालना चाहती है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, आज के लिए बस इतना ही। नो लॉजिक मंडे में एक और नो लॉजिक गाना और फिर अगले घंटे पर मुलाकात होती है।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते हैं हम पर बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. द FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप ये नॉर्थ हार्बर में आ रहे हैं फ्रॉम 15th to 21st of June और हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विद हम. ये आपका चांस होगा टू बी बिहाइंड द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन जब ये अपना टाइटल डिफेंड करेंगे ऑन होम सॉइल. 8 कंट्रीज है, वर्ल्ड क्लास हॉकी होंगे एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स होगा जो न्यूजीलैंड में आपने देखा है 4 years. अगर आपको यहाँ पर रहना है तो मतलब जाना है इस इवेंट में तो आपको हमें सुनते रहना है क्योंकि आपका फेवरेट अनाउंसर आपको कॉल करने के लिए बोलेगा. फिर आपको हॉकी टेक्स्ट करना है 5599 पर फॉर योर चांस टू विन अ डबल पास टू द गेम्स. और हमें स्टैंड्स को पैक करना है, वी हैव टू मेक सम नॉइज और हमारे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन को सपोर्ट करना है. टिकट्स आप hockeynz.flicket.co.nz से ले सकते हैं. स्टिक विद हम और बी पार्ट ऑफ द एक्शन. मैं क्रिश आप

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: एडोर योर फ्लोर फॉर लेस विद फ्लोरिंग एक्सेस Walk into winter sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
7: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Hum.
0: Night Cafe on Hum.
9: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Indian Ink Theatre Company presents Balloon Dog. Ye ek award-winning performer hai Jacob Rajan, jo abhi stage par aapke liye lekar aayenge in the world premiere of Balloon Dog, jo ek deeply moving aur timely new production hai, jo Rabindranath Tagore ki kahani Kabuliwala se prabhavit hai. Aur 21st century mein iski setting hai is kahani ki beautifully tender tale, jisme unexpected friendship between a 5-year-old girl aur ek lonely migrant worker ki बीच में होता है और कहा गया है कि सोल्ड आउट प्रीव्यू सीजन के बाद इंडियन इंक्स लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस में ह्यूमर हार्ट लाइव ओरिजिनल म्यूजिक डांस और प्यूर थिएट्रिकल मैजिक होने जा रहा है जो बहुत आपको आगे तक लेकर जाएगा जिसमें रिजिलियंस और ह्यूमैनिटी देखने का मौका मिलेगा करेज कनेक्शन और सीइंग वन अनदर बियॉन्ड कल्चर क्लास एंड सर्कमस्टांस ये क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में होगा 3rd to 20th of June तो आप ये मिस ना करें दिस इज गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस टिकट्स के लिए iticket.co.nz आप विजिट करें

0: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Please everyone, aapko support karna hai Glow Red for Thel NZ. Global awareness campaign hai by Muskan Care Trust. जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनेमिया पर जागरूकता फैला रहा है. ये ऐसे कंडीशन है जो काफ़ी हद तक इनविजिबल होता है लेकिन लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है. काफ़ी पेशेंट्स रिलाई करते हैं ऑन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस और ख़ासतौर पर ऑफ्टन एवरी 3 वीक्स पर ये होता है टू सिंपली टू स्टे अलाइव. तो आप भी रियल डिफरेंस इनके ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं बाय बिकमिंग ए ब्लड डोनर. अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इनकरेज करें क्योंकि इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव होने जा रहा है 20th जून को मनुकाओ एनजेड ब्लड सेंटर. यहां पर आपको पहुंच जाना है. और भी जानकारी के लिए अगर आप अपने डोनेशन को बुक करना चाहते हैं तो muskancaretrust.org.nz आप जाए या फॉलो करें मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड ऑन फेसबुक पेज. और टुगेदर आप यू कैन शाइन लाइट ऑन थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया. आप सपोर्ट कर सकते हैं ब्लड डोनेशन हीरोज को और ऐसे करके बहुत सारे लाइव्स को सेव कर पाएंगे. ग्लो रेड डोनेट ब्लड और शेयर होप. ये ही सूचना मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड की ओर से. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ.
1: Now listen. Yeah. That's right.

0: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.

0: thinking about becoming a teacher? Visit the Ministry of Education's Become a Teacher store at the Auckland Showgrounds on the 16th and 17th of June. Discover what teaching involves, explore your study options, and find out where a career in teaching could take you.
1: Okay, listen up, team. Don't forget your bloody important meeting this National Blood Donor Week to give blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
2: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods.
3: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good evening to you with the latest at 10. I'm Geoff Bryan. The Prime Minister's not counting his chickens on the Middle East crisis just yet, despite the peace deal being announced between the US and Iran. Christopher Luxon is welcoming the plan to reopen the Strait of Hormuz. Key mediator Pakistan saying the signing will be later this week in Switzerland. A new report on youth bullying is being lauded as the first to quantify the problem in New Zealand. The Justice Ministry report reveals one in four young people experienced bullying in the last year. A suspicious fire at an Oamaru school has seen two young people referred to youth aid. Eight fire trucks had to be used to put out the large hedge fire at Waitaki Boys High last week. In sport, football updates brought to you by Hisense. The All Whites trying not to listen to the political discussions surrounding their opening World Cup game against Iran tomorrow afternoon. Captain Chris Wood says they're just trying to shut out the outside noise. A 1 o'clock kickoff. And the NRL will investigate the shot clock confusion that cost the Warriors on Saturday night. That penalty gifted 2 points to the Sharks in what turned out to be a low-scoring match.
3: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
6: नाइट कैफे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। 12 तक तो हमारा साथ रहेगा ही रहेगा। 15 जून आज है और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हैं हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। मिड ऑफ जून हम पहुँच चुके हैं और बहुत तेज़ी से समय आगे बढ़ता जा रहा है। इस घंटे पर भी बहुत कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। योगा ग्लोबल मेडिटेशन होने जा रहा है, इस पर जानकारी, और रामलीला भी हमारे समक्ष आएंगे बहुत ही जल्दी, इस पर जानकारी। आप भी अगर इस टीम को, क्रिएटिव टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। करण औजला और गुज्जू बाई नी एक्सचेंज ऑफर, ये सभी कुछ आपको बताना है तो इस घंटे पर आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स सुनाने का टाइम आ चुका है। प्यारे गाने आपके लिए मैंने रखा है, ये लिस्ट आप ज़रूर एंजॉय करें। बेनी दयाल, उदित नारायण, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह जैसे सिंगर।

चाल, बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठान कड़कती कमान, कातिल अदा

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapka saath de raha hun. Sahaja Yoga Global Meditation. Ye weekly free meditation sessions aapke liye organize kar rahe hain. Aur meditation classes are open to everyone, regardless of experience. Aur ye entirely free hai. क्योंकि आपके मेंटल वेलबींग को ये खास ध्यान में रख के ये मेडिटेशन जो सेशंस है आपके लिए रखा गया है. मरीज बे में एड्रेस है आउटरैम हॉल 478 बीच रोड मरीज बे. एवरी मंडे होगा 7:15 PM टू 8:15 PM. मारिया से बातें करें और जानकारी के लिए 022-303-9918 पर. माउंट एल्बर्ट में अवारा का सी स्काउट्स हॉल रेंज व्यू रोड मरी हॉलबेग पार्क माउंट एल्बर्ट आप जा सकते हैं. सैटरडे 10 AM टू 12 PM रहेगा. कॉन्टैक्ट आरती 022-404-8386 पर. हविक में है द ग्रीन रूम अक्स ब्रिज सेंटर 35 अक्स ब्रिज रोड हविक. एवरी ट्यूजडे होगा 7 PM टू 8 PM 022-566-9445 पर आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे. एंड फाइनली नॉर्थ कोट में 27 लेक रोड नॉर्थ कोट ओकलैंड एवरी ट्यूजडे यहां पर होगा 7 PM टू 8 PM. ओमकार से बातें करें और जानकारी के लिए 022-107-4456 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.
2: अपना ही गैराज है. ट्रक्का वाला गीत है जी.

0: ਕੀ ਲੱਗੀ
1: ਓ ਲੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁੱਡਵੈਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
2: Night Cafe on Hum. Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
3: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
4: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
3: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
5: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
3: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
5: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
3: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं
6: है. Night Cafe.
8: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ तो रहेगा क्योंकि हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए Bollywood's biggest hits. कुछ सामाजिक सूचनाएं भी आपके लिए हम लेकर आते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री राम लीला को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे. अगर आप टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर तो आप कॉल करें मास्टर अशोक को 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होगा. 8 अगस्त को ये होने जा रहा है और भी डिटेल्स बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही में माँ दुर्गा टेम्पल 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापटोए में माँ भागवती जागरण ये सैटरडे 20th जून को होगा. महाप्रसाद 7 PM होगा और ज्योत प्रचंड ये 9 PM रहेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

You're listening to your number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapka saath de raha hoon. Hum podcast aap zarur sunein, interesting topics aapke liye lekar aaya ja raha hai. Aur is hafte ke podcast mein Nivedita Veej ke saath baatein kiya recently aur Rusbe ne thalassemia and its impact on the South Asian community par baatein hui hai. Ye conversation explore kiya hai ki thalassemia kya hai aur kyun ye South Asian community mein prevalent hai. Role of genetics, family history, common symptoms aur importance of early screening ke bare mein bhi baatein hua hai. किस तरह से इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर पेशेंट्स और फैमिलीज इस पर भी बातें हुई है पॉडकास्ट में ये बात हाईलाइट हुई है कि किस तरह से रेजिंग अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट और स्टिग्मा को रिड्यूस करना ये भी बहुत ही ज़रूरी है और किस तरह से इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशंस रखना और इसको इनकरेज करना ज़रूरी होता है एक इंसाइटफुल और एजुकेशनल डिस्कशन है तो आप ज़रूर ये सुने ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फुल ऑडियो आपको के लिंक आपके पास आ जाएंगे साथ ही मैं ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा द ब्रेकफास्ट शो के लिए आप बीएफ टेक्स्ट करें 5599 पर और कैचअप आपका जो पॉडकास्ट है ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर जानकारी आपको मिल जाएगा इन ए रिप्लाई मैसेज मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Oakland, get ready to laugh until it hurts. क्योंकि अब हमारे Facebook पेज पर अगर आप जाते हैं, show us your fun side और कैप्शन करें the photo जो वहाँ पर posted है, आप ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीत सकते हैं. ट्राइविजन इवेंट्स की ओर से ये शो आने जा रहा है, कृष्णा, अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव. इसमें आइकॉनिक कैरेक्टर्स और रेजा शार्प विट होगा और ये एक कॉमेडी नाइट है जिसको आप मिस नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहिए. द ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्णा, अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव, ये ओकलैंड में होने जा रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. वीआईपी सीट्स ख़त्म हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो आप अपना टिकट्स आज ही जल्दी ले लें. 18th जुलाई को ये होगा विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. टिकट्स आप bookmyevent.co.nz से ले पाएंगे. अगर आप को ऑनलाइन टिकट खरीदने में मुश्किल रात का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप कॉल कीजिए 021-043-2720 पर और भी जानकारी के लिए. आफ्टर पे ऑप्शन अवेलेबल है. गेट रेडी टू लाफ लाइक नेवर बिफोर. तो द ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्णा, अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव ओकलैंड में देखने का मौका है आपके पास. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ एंड यू लिसनिंग टू हम.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. Oakland, एक और इवेंट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए. Evening of laughter और entertainment होगा with गुज्जू भाई. नी एक्सचेंज ऑफर जिसमें लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया लेकर आ रहे हैं ये शो. ब्रांड न्यू कॉमेडी है जिसमें गुज्जू भाई कॉट अप हो जाते हैं अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में, जिससे सीरीज ऑफ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और लाफ आउट लाउड सिचुएशंस हो जाता है. काफ़ी विटी डायलॉग्स है इसमें इस प्ले में. रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स होंगे और क्लासिक गुजराती ह्यूमर होगा. होल फैमिली शो ये होने जा रहा है और आप इन्जॉय कर पाएंगे अपने फैमिली के साथ में. सिद्धार्थ रंधेरियाज़ गुज्जू भाई प्रोडक्शंस आर नोन टू सेल आउट जहाँ पर भी ये जाते हैं, तो लास्ट मिनट तक आप ये ना छोड़े. टिकट्स बुक कीजिए premierTickets.co.nz से और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 जुलाई को होने जा रहा है 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ओकलैंड में ये होगा. तो टिकट्स आप premierTickets.co.nz से ले पाएंगे. क्रिश का साथ है एंड यू लिसनिंग टू हम.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है कल रात 8 पर, हम आ जाएंगे आपसे मुलाकात करने, आपसे मिलने और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ और प्यारे गानों के साथ। अपना ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, गुड नाइट एवरीवन।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: अंडा, अंडा, अंडा, अंडा. हम सब ने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है. ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है. जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर। यार
2: क्यों क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: Flight.

0: फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
1: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.

की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Playing Bollywood's biggest hit.

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. Bollywood ka asli blockbuster.
5: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Hum. Night flight on Hum.
7: Kuch kum jum chikum, kuch kum jum chikum, kuch kum jum.

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है.
6: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
4: Cocktail 2, releasing in cinemas on 19th June. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.

0: अपने जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Night.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

Rewind, सिर्फ रोवा पर। फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: shift for. The globally powered tap and pay solution for your business. Same local service, same low cost with the latest payment technology. So tap into the future of payment for your business.
1: Nissan Big Deals sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
2: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The text of the deal between the US and Iran will be released, likely after the official signing this week. Both sides have signed virtually. President Trump is keen for people to see the document.
4: I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document.
3: The so-called IKEA effect is in full swing. There's been a boost in spending across the likes of furniture and electronics by nearly 5%. Retail NZ's Carolyn Young says it's the one to watch.
5: We have seen that figure be really positive. It'll be interesting to see how that can continue to roll through.
3: Police are thanking those who called in with complaints about a driver on the southern motorway in Auckland. Numerous reports were made about a Mercedes-Benz swerving across the lanes and nearly hitting other vehicles last night. Officers stopped the car south of the Papakura on-ramp, taking the driver and passenger into custody. The UK Prime Minister has announced a full social media ban for under-16s, saying it's making children unhappy. Keir Starmer says it's stopping children doing their homework, reading, playing and getting to bed at a decent hour.
6: That may not sound like much, but these are the activities that help a child develop into an adult.
3: To sport, where All Whites captain Chris Wood doesn't want his team to get overawed at the opening FIFA World Cup game. They're taking on Iran in Los Angeles from 1 p.m.
7: The biggest thing for us will be the occasion, how the players deal with it. Until you play on the proper big stage, you don't really know what it's like.
3: Football updates brought to you by Hisense. And there's four changes to the England cricket team for tomorrow's second test against the Black Caps at the Oval.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
8: Hum par shok suchnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
9: Suchit kiya jata hai ki Mota Gujarat ke Swargiya Bhikku Bhai Taila ke patni, yani Mahendra, Chandrakant, Sushila Ben, हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड की मंजुला बेन भीकुभाई टेलर की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0274-202-441 पर संपर्क कर सकते हैं. मोटा गुजरात के स्वर्गीय भीकुभाई टेलर की पत्नी यानी महेंद्र, चंद्रकांत, सुशीला बेन, हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड की मंजुला बेन भीकुभाई टेलर की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0274-202-441 पर संपर्क कर सकते हैं. स्वर्गीय सोनी हरिलाल और सविता बेन धर्मसी के पुत्र अरविंद और राकेश धर्मसी के भाई सोनी प्रवीण धर्मसी की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0224521984 पर संपर्क कर सकते हैं. स्वर्गीय सोनी हरिलाल और सविता बेन धर्मसी के पुत्र यानी अरविंद और राकेश धर्मसी के भाई सोनी प्रवीण धर्मसी की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0224521984 पर संपर्क कर सकते हैं. बिंदमती के पति यानी शैलेंद्र सेम निव और ईश्वानी के पिता सिंगटोका के भूतपूर्व निवासी और सिंग्स लोयस के मंगल सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर संपर्क कर सकते हैं। बिंदमती के पति यानी शैलेंद्र सेम निव और ईश्वानी के पिता सिंगटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी सिंह स्लोयस के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी या श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर संपर्क कर सकते हैं। रविराविम्बा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन के रामकरण के भाई यानी मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी के जयकरण प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे मैंगरी लोन शमशान भूमि में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02108343575 पर संपर्क कर सकते हैं। रविराविम्बा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन के रामकरण के भाई यानी मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी के जयकरण प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे मैंगरी लोन शमशान भूमि 85 मैकेंजी रोड में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02108343575 पर संपर्क कर सकते हैं। लोटोका के भूतपूर्व निवासी और शक्ति एंड कंपनी के मालिक नीलिन के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी

0: संस्कार शुक्रवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एनाउंस एट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
0: Almost 13 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16, overnight kam se kam 10 degrees aaj hone wala hain. Aaj subah ke waqt barish hogi, kuch gambhir barish ka anumaan lagaya gaya hai. Baad mein mausam mein kuch sudhar aap notice karenge. Sunrise 7:32 AM par, sunset sham 5:12 par hoga.
4: With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Breakfast catch up.
0: 8 मिनट हो रहे हैं 6:00। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज मंगलवार है, 16 तारीख जून। आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
5: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी बिजी स्टार्ट टू द मॉर्निंग टू द शो, और जहाँ कहीं भी आप हैं साथ हमारे तेरे, इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ट्यूजडे है, 16 जून है, तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का हमारा ब्रेकफास्ट शो का ये सफर।
0: अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक ये चलता रहेगा हमारे साथ 104.2 FM और रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। आज की सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस दिन की मंगल कामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी की सारी आज पूरी हो, यही हमारी दिले तमन्ना है। इस प्रोग्राम में एक तो आपके फेवरेट गाने, साथ में कुछ ज़रूरी खबरें और जो हमें जानना चाहिए अपने फन और एंटरटेनमेंट के लिए, वो सारी चीजें हम लेकर आए हैं और 4 घंटों तक ये सफर आपके लिए चलता रहेगा।
5: बिल्कुल, शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट कैचअप में खबरों के साथ। खबरों में क्या कुछ है, एक क्विक कैचअप आपके साथ जरूर होगा। ग्लोबल हेडलाइंस रहेगी, हम आपके लिए लेकर आएंगे, और आज का सनी साइड अप, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, समथिंग जो आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए। लेकिन ये स्टोरी एक्चुअली में है किस चीज के बारे में, जानने के लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है। तो चलिए आज के सफर की, आज की सुबह की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। 10 मिनट हो रहे हैं 6:00 और आज है ट्यूजडे 16 जून। ये सुबह एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बार मुबारक हो।

0: Sunnyside Up.
1: आज के सनी साइड अप कहानी का वक्त जो है ये अब आपके लिए हो चुका है और क्या हो रहा है और ये कहानियां जो है ये आपके लिए हम पर हम लेकर आते हैं हर दिन। तो आज की कहानी जो है ये जिम्बाब्वे से है और वहां पर जो ग्रामीण यानी रूरल रिमोट एरियाज़ हैं और इन दो एरियाज़ के बारे में कहा गया है, करीबा और हुरुंगवे। यहाँ पर लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल सेवाएं जो हैं ये बराबर नहीं मिलती हैं और जब ये सर्विसेज उनको बराबर नहीं मिलती हैं तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है लोगों को। और इसीलिए वहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने एक पर्सनल इनिशिएटिव लिया आपस में बातें करने के बाद और इन एरियाज़ में बहुत ही ज़रूरी HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशंस जो है ये पहुंचाने का फ़ैसला किया। ये फैमिलीज़ जो हैं टैक्सी फेयर अफोर्ड नहीं कर सकते ताकि वो रीजनल हॉस्पिटल्स जाएं और वहां पर ये इंजेक्शंस जो है ये लें। तो ये वॉलंटियर जो हैं ये माउंटेन बाइक्स पर मैनुअली जाकर लोगों को ये जो HPV सर्वाइकल वैक्सीनेशंस जो हैं ये देते हैं। 65 वर्षीय एक ग्रैंड मदर हैं जिनका नाम कुरेहवा है और वो अपनी अनाथ पोती जो है उनको अकेले पाल रही हैं और उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते पूर्व जब एक साइक्लिस्ट उनके घर पर आकर पहुंचा तो शी गॉट रियली इमोशनल क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो चलकर पैदल अस्पताल तक नहीं जा सकती अपनी पोती को लेकर। और जब साइक्लिस्ट उनके घर पर पहुंचा इट वॉज लाइक देयर फादर्स ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन।
2: देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सनी साइड अप तो डेफिनेटली ऐसी कहानियां जो है आपके सुबह की शुरुआत भी अच्छी कर देती है ना। तो आज का सनी साइड अप आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे थे 20 मिनट हो चुके हैं अब 6 बजकर थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: ए देखो हम आ गए।
3: Ladies and gentlemen,
5: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Crispy on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Day out with the family? Explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
0: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
11: Subah ke Global Headlines mein. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने ईरानियन पोर्ट्स के यूएस ब्लॉकेड को हटाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के अग्रीमेंट पर वर्चुअली साइन कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में होने वाली फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी में जाने से मना किया है। इस डील का अभी तक कोई ऑफिशियल टेक्स्ट रिलीज नहीं किया गया है और दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस खबर के बाद ऑयल प्राइसेस पिछले तीन महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। लेबनान के मामले पर पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस अग्रीमेंट के बाद वहां कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, जबकि इसराइल और यूएस ऑफिशियल्स ने साफ किया है कि इसराइली फोर्सेस को सदर्न लेबनान से हटने की जरूरत नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रतिस्लावा पहुंचे जो 1993 में स्लोवाकिया के आजाद होने के बाद किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल पहला विजिट है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को और मजबूत जो है ये करने पर बातें की। स्लोवेक प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको के साथ हुई इस मीटिंग में डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर्स को लेकर एक बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। फिजी के एजुकेशन मिनिस्टर असेरी रोनरो ने खराब मौसम, लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए आज देश भर के सभी स्कूल्स को बंद रखने का ऐलान किया है। पहले स्कूल्स खुले रखने का फैसला था, पर रात भर में मौसम ज्यादा बिगड़ने के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस और मेट्रोलॉजिकल सर्विस से सलाह करके बच्चों और टीचर्स की सेफ्टी के लिए ये प्रिकॉशनरी स्टेप उठाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज सुबह स्पेन और कई वेडे के बीच मैच नीलोल से बराबर ठहरा। अभी से 35 मिनटों बाद बेल्जियम अपना पहला मैच इजिप्ट के खिलाफ खेलेगा। सुबह 10 बजे सऊदी अरेबिया यूरुग्वे का सामना करेगा और दिन में 1 बजे ईरान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस कल खेले जाएंगे। कल सुबह 1:30 बजे न्यूजीलैंड श्रीलंका का सामना करेगा, जबकि इंग्लैंड की भिड़ंत सुबह 5:30 बजे आयरलैंड के खिलाफ होने वाली है। फिजी में इस सप्ताह अंत बिग फिजी फैक्ट की शुरुआत होगी। यह टूर्नामेंट सुब्रेल पार्क लंबा समय खेला जाएगा। शुक्रवार को दिन में 1 बजे पहले मैच में लोटोका नसीनू से खेलेगा, 3 बजे मबाकी भिड़ंत नंडरोंगा से होगी, 5 बजे रेवा नावुआ से खेलेगा और रात 7:30 बजे आखिरी मैच लंबासा और सुबह के बीच खेला जाएगा। शनिवार को दिन में 12 बजे नसीनू नंडरोंगा का सामना करेगा, दिन में 2 बजे रेवा सुबह की भिड़ंत होगी, 4 बजे मबा लोटोका खेलेंगे और 6 बजे नावुआ और लंबासा का खेल होगा। पूल राउंड के अंतिम मैचेस रविवार को खेले जाएंगे जिसमें दिन में 11 बजे नसीनू और बा का खेल रहेगा, 1 बजे सुबह नावुआ की भिड़ंत होगी, 3 बजे लंबासा रेवा से खेलेगा और 5 बजे नंडरोंगा और लोटोका का खेल होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
12: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 28 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 7:07 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे। बॉलीवुड में अगर देखें, आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले बातें की थी अबाउट द मूवी काला हिरन।
1: काला हिरन, yes, yes, I remember it now.
0: और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जानी और काफ़ी कंट्रोवर्सी है काला हिरन को लेकर एंड कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इट कुड बी इंस्पायर्ड जो सारा का सारा मामला हुआ था 1998 में। तो अब एक नया ट्विस्ट आया है, जो प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, इन्होंने एक लीगल नोटिस इशू किया है वेटरन एक्टर गोविंद नामदेव को।
1: उनको क्यों नोटिस इशू कर दिया उन्होंने? वो तो है ही इस फिल्म का हिस्सा।
0: क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के टीजर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट और कंसर्न जो है ये जताया था। गोविंद नामदेव ने कहा था ही वाज शॉक्ड आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ काला हिरन और उन्होंने आरोप भी लगाया दैट द फाइनल प्रोडक्ट अपीयर्ड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड अग्रीड टू वर्क ऑन।
1: Oh, I think I read this article somewhere and it's quite, you know, shocking to know कि एक एक्टर है जो इस फिल्म में एक बहुत ही ज़रूरी किरदार प्ले कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर फिल्म की कहानी क्या है। कहानी इनफेक्ट उनको कुछ और बताई जाती है, कुछ और दर्शाई जाती है, बट जब द टीज़र ऑफ द मूवी कम्स दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि अरे ये फिल्म की कहानी तो कुछ और ही है।
0: तो अमित जानी ने एक्स पर जाकर शेयर किए हैं, गोविंद नामदेव को लीगल नोटिस दिया, 7 दिन में सार्वजनिक माफी मांगे और प्रोडक्शन हाउस को 50 लाख रुपया जुर्माना दे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी।
1: ओके, लेट्स सी अब इससे आगे क्या होता है इसका ना?
0: पता नहीं भाई, गॉड नोस।
1: इसलिए तो बोला लेट्स सी।
0: एग्जैक्टली, बॉलीवुड की और भी खबरें आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे। अभी 26 मिनट रह गए हैं 7:00 में।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Accurate traffic.
5: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
6: A high of 16. Windy today with some showers. Into the city, Northern Motorway 20 minutes from Constellation Drive 44 from Silverdale. Slowing at Silverdale, heavy at Constellation and slow patches through to the bridge. Northwestern 24 minutes in from Massey, slow there to Te Aratu and Great into the city. Southern 26 in from Manukau, slow Papakura to Manurewa at Papatoetoe and before Mount Wellington.
5: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
7: Nissan Big Deals. Serve 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
8: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2. Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
9: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है।
10: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है। और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
8: Cocktail 2. Releasing in cinemas on 19th June. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
11: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी 24 मिनट रह गए हैं 7 बजे में और गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस आए हैं. राम राम, हैप्पी ट्यूसडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर मटर मटर, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
3: और इसके अलावा एक और गुड मॉर्निंग मैसेज जो है कि हमारे पास आया है और इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग गाइज, लगता है आज भी सुबह सुबह जिम जाते समय इन्होंने हमें मैसेज किया. थैंक यू सो मच मैंडी आपकी मैसेज के लिए, हैव अ वंडरफुल डे अहेड.
2: और बॉबी मान जी, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए जो सुबह सुबह आपने हमारे पास भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया हर सुबह हमें याद करने के लिए और हमारा साथ जो है ये देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और साथ ही में मत भूले कि इनाम जीतने के कई मौके जो है ये भी हम आपको देते रहते हैं. एंड आपको करना क्या है, हमारा फेसबुक पेज विजिट करें क्योंकि यहाँ पर द ग्रेट कॉमेडी नाइट, इसके लिए एक डबल पास जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं. ट्राई विजन एंटरटेनमेंट आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर, 18th of July को रहेंगे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में द ग्रेट कॉमेडी नाइट में. पहली बार एक साथ यहाँ ऑकलैंड में ये परफॉर्म करेंगे. VIP टिकट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं और bookmyevent.co.nz से टिकट्स आप ले सकते हैं.
3: अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सून एज यू ग्रैब द टिकट्स देन बी अश्योर्ड कि आपके लिए एक सीट जो है ये है एंड यू कैन गो एंड एंजॉय दिस अमेजिंग शो हैपनिंग ऑन द 18th of July एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. नाउ bookmyevent.co.nz, याद रहे यहाँ से तो टिकट्स आपको लेने ही लेने हैं. वर ऑन दी अदर हैंड आपके पास मौके है कि आप हमारे साथ जीत सके कुछ पासेस एज वेल जो आपको ट्रैविजन इवेंट्स की ओर से जीतने का मौका जो है ये मिल रहा है. ऑल यू नीड टू डू इज हमारा फेसबुक पेज आपको विजिट करना है. हम 104.2 FM हमारे फेसबुक पेज का नाम है और जैसे ये फेसबुक पेज आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको एक पोस्टर जो है ये दिखेगा ऑफ द शो पोस्टेड इन आवर पिंड पोस्ट एंड ऑल यू नीड टू डू इज उस पोस्टर को आपको दरअसल देखना है और उसमें जो फोटो है उसको एक कैप्शन जो है ये आपको देनी है. After you see the poster and you just have to caption the photo and once you caption it, you will be part of the draw jahan par aapke paas opportunity hai to win double passes.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Switch to AMI car insurance.
3: Cloudy today with some showers, high of 16 degrees. Coming into the city, southern starting to slow, 32 minutes to Manukau to town, over an hour from Drury, slow Papakura on and off through to Mount Wellington. Southwestern slowing a bit but still looking okay. Northwestern 26 minutes in from Massey, slow there to Te Aratu and St. Luke's to the city. Northern 24 from Constellation, heavy there and slow patches to the bridge.
2: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
4: Fuel ke dam rose bad रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods।
8: Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: Breakfast catch up. Throwback.
9: आपको पता है कल पहले दिन के जो मैचेस थे FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप के, ये बहुत इंटरेस्टिंग थे। रिजल्ट्स 7:30 बजे न्यूज़ हेडलाइंस में हम आपको देने वाले हैं। बट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप भी जो वेंटेज ब्लैक स्टिक्स हैं उनको जाकर सपोर्ट कर सकते हैं।
10: बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है इनफेक्ट आपके पास, जहाँ पर ऑल यू नीड टू डू इज आप टिकट्स जो है ये अपने ग्रैब कर लीजिए बाय विजिटिंग hockeynz.flickit.co.nz। और वंस यू डू दैट तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपको मौका मिल जाता है कि आप जाकर ये विटनेस कर सके। इनफैक्ट आज भी मैचेस जो है ये होने को है और इसके लिए भी पासेस जीतने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप नॉर्थ हाबा में हो रहा है आज से लेकर, या कल से इसकी शुरुआत हुई है, 21 जून तक ये चलता रहेगा। सो आप भी वेंटेज ब्लैक स्टिक्स को अपना सपोर्ट दे सकते हैं बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग वर्ल्ड क्लास हॉकी टूर्नामेंट। और 8 कंट्रीज जबकि यहाँ पर आ रही है पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब आ चुकी है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, उनको सपोर्ट करना, वेल ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है। और अगर आपको भी हॉकी बहुत पसंद है, रिमेम्बर hockeynz.flickit.co.nz आप विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए।
9: और साथ ही में पासेस जीतने के मौके भी हैं। टू द गेम्स हॉकी लिखकर आप 5599 पर हमारे पास अपने नाम के साथ भेज दें एंड यू गो इनटू द ड्रॉ, जहां पर ये पासेस आप जीत सकते हैं। याद रहे बस हॉकी लिखना है, अपना नाम लिखना है और 5599 पर आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं।

0: Madness. Welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए जारी है और 104.2 FM रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. आज सुबह सुबह गोविंद का मैसेज जो है ये आया है. उनका मैसेज पढ़कर मुझे कपिल शर्मा शो का एक कैरेक्टर याद आ गया
1: जो कपिल प्ले करते थे कि वो ऐसा ऐसा बोल के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया.
0: हाँ, तुम्हारा चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. तो गोविंद का जो टेक्स्ट है, इन अ नटशेल मैं आपको बताऊं, तुम्हारा रिकमेंडेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया.
1: हाँ, बट ही सेड इट इन अ मच बेटर टोन. और उन्होंने यही बताया कि हमारा रिकमेंडेशन सुनकर उन्होंने माँ बहन जो आपका नहीं, आपने तो देखी भी नहीं है, रिकमेंडेशन तो मैंने दी थी क्योंकि मैंने देखी थी. तो उन्होंने कहा कि मैंने माँ बहन
0: नहीं देखी है.
1: आपने देखी
0: है?
1: I didn't know, आपने देखी है. तो Netflix पर है ये, हमने कहा था. इन्होंने कहा कि unfortunately, I didn't enjoy it at all. I found it to be one of the worst movies I've seen. That said, thank you both for entertaining us every morning with your wonderful music and conversations. Regards, Govind. इन्होंने कहा है.
0: चलो, हमारे recommendation पर कम से कम आपने
1: react तो किया.
0: हाँ, कम से कम you went and watched the movie, took time out and अपने आप को टोचा किया आपने.
1: नहीं, अच्छा लगा, नहीं लगा, it's a different case. I totally get it. क्योंकि हर किसी की choice एक जैसी नहीं होती. And माँ बहन basically is a dark comedy movie. Dark comedy ज्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं आती है. That's another thing, right? तो that's something that we can say कि it's not something that everyone will enjoy. At the first place, I should have mentioned that as well. But on the other hand, आपने देखी और you know, you experienced it, वही बहुत है. चलो, अच्छी लगी नहीं लगी वो अलग बात है.
0: Okay, जय श्री राम भाई विजय एंड पूजा. Keep humming, have a great day. संजेश, thank you so much. सुबह सुबह आपने भी हमारा साथ जो है ये देने का फैसला किया है एक बार फिर. So, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस घंटे भी तमाम चीजें आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं.
1: और साथ ही साथ आपको याद दिला दे कि आज हम द ब्रेकफास्ट शो एक बहुत ही बढ़िया मौका आपको हम देने वाले हैं. समथिंग दैट यू डेफिनेटली वी वांट टू पार्ट ऑफ इट. और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे इसी तरह से, तो आपको ये एक्सपीरियंस करने का या इसके बारे में जानने का मौका जरूर मिलेगा. व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट.
0: तो हमारे साथ रहें, डिटेल्स हम आपको देंगे थोड़ी देर बाद. आज के आपके राशि वाइब्स.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: तो अब वक्त है आज के आपके राशि वाइब्स का. सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज कोई गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है. और अगर आप नौकरी की तलाश में थी, आपकी तलाश भी आज पूरी होगी. अपना ये ख्याल रखें कि अपने मन में अहंकार की भावना जो है ये ना आने दे, घमंड ना करें किसी भी चीज़ को लेकर. पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स आप और बनाएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है.
3: वृषिणी टूरिस्ट, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि फालतू के खर्च जो है ये हो सकते हैं. कुछ लोग हैं आपका बुरा चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, इनसे थोड़ा केयरफुल रहना है आपको. और साथ में आज सलाह दी जा रही है आपको कि किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा ना दे. व्हेयरएवर देयर इज आर्ग्यूमेंट हैपनिंग, जस्ट मूव अवे.
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज ट्रेवल आपका अच्छा जाएगा और कोई रिस्क ना ले. पत्नी के बताए रास्ते पर चलने से आपको फायदा आज हो सकता है.
3: क्या बात है भाई.
2: और बाकी सब ठीक ठाक है. और मशीन्स वगैरह जो है ये आज आप खरीद सकते हैं.
3: इसके अलावा चलिए आज बताया जा रहा है कर्क यानी कैंसर आपके लिए कि आज का आपका दिन जो है कुछ नया प्लान्स जो है आप बना रहे हैं, तो अपने काम करने के तरीके में सुधार लाने के लिए कीप वर्किंग दिस हार्ड, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. मान सम्मान बढ़ता रहेगा. आंखों में किसी तरह की तकलीफ है जिससे परेशानी जो है आपकी बढ़ सकती है इफ यू डोंट एड्रेस इट. इसीलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एड्रेस इट एंड गेट इट सॉर्टेड स्ट्रेट अवे.
2: सिंह यानी लियो, आज पति पत्नी के बीच रिश्ता बहुत प्यार भरा और मजबूत होगा. अच्छे कर्मों का फायदा आपको मिलेगा और साथ ही में बिजनेस ठीक ठाक चलेगा और कुछ इवेंट्स में भी हिस्सा लेने का मौका आपको मिल सकता है.
3: और उसके बाद अगर देखा जाए कन्या यानी वर्गो, आज आपके लिए कहा गया है जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा. गाड़ी चलाते समय केयरफुल रहें और किसी भी आर्ग्यूमेंट को ज्यादा बढ़ावा ना दे. एक्साइ ना किसी को आर्ग्यूमेंट करने के लिए इनफेक्ट, क्योंकि अगर किसी और को ऐसा करने पर आप इनकरेज करेंगे, बाद में चलकर यही चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है.
2: तुला यानी लिब्रा, आज मन में कुछ भ्रम सा आ सकता है. लीगल प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे. हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी ये भी खत्म होगी. बिजनेस अच्छा चलेगा. ख्याल रखें कि अपनी वैल्यूबल चीजों को आप केयरफुली ख्याल करके रख रहे हैं.
3: अच्छा, ख्याल रखें कि वैल्यूबल चीजों को ख्याल करके रख रहे हैं.
2: हाँ, हाँ,
3: नहीं, इसको उपयोग आपके लिए कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो है आपकी, इसको लेकर थोड़ा केयरफुल हो जाए. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग इट और इसे एक्सपेंड करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, अगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सही जगह पर सही लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए बिफोर यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड योर मनी. और दूसरी ओर आपके लिए कहा गया है कि आज कुछ ऐसी चीजें होंगी जो फ्यूचर में चलकर आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा. इनफैक्ट ऐसा कुछ रहेगा जिससे कि भविष्य में चलकर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे.
2: और उसके बाद धन यानी सेजिटेरियस, आज तो खाना भाई क्या मजेदार आप एंजॉय करेंगे. अच्छे लोगों से मिलना हो सकता है जो आपके फायदे के बारे में सोचेंगे. आपके प्लान्स पूरे होंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि लेजी ना बने.
3: वेरी नाइस. और इसके बाद आज वैसे बताया जा रहा है मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए बिजनेस अच्छा चलेगा. कष्ट थोड़ा आपको होगा, किसी तरह का भय और चिंता जो है ये भी आज आपको सताएगा. बेचैनी बनी रहेगी, बुरी खबर मिल सकती है. सो ऑल इन ऑल मकर के लिए बड़ा हैवी दिन रहने वाला है आज. आपको बस तैयार रहना है कि कैसे आप इस दिन के साथ डील करें एंड हाउ टू वर्क थिंग्स आउट फॉर यू टुडे.
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, किसी पुरानी बीमारी की वजह से आज आप परेशान हो सकते हैं. ट्रेवल वैसे अच्छा जाएगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. मुश्किल काम में भी आप सक्सेस हासिल करेंगे और परिवार वालों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर शायद कुछ मतभेद हो सकता है.
3: और आखिर में आज देखा जाए तो मीन यानी पाइसेस आपके लिए कहा गया है कि पुराने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ मुलाकात होगी. अच्छा समय बीतेगा, कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और खुश भी आप बहुत रहेंगे आज.
2: सो आज के आपके राशि वाइब्स ये रहे. थोड़ी ही देर में सेलिब्रिटी अलार्म हम खेलेंगे.
0: राशि वाइब्स, बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
5: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: smile right there.
1: Streaming on Rover.
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
3: Oh, ta-da! Oh, yeah!
4: South Auckland's buses just became a lot better.
3: Grey South Road, now even greener!
4: With better bus routes, more frequent buses, and more.
3: Weymouth Road, way better buses.
4: Search AT Better South Auckland Buses for more.
5: Happy is finding the sun and not moving all day long. Animates, we make happy happen.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
8: Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Saves Big Whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98 or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $3.98. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. T's and credit criteria apply, only at Big Save.
9: The show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: Celebrity Alarm. Hit it.
11: तो तैयार हैं आज के सेलिब्रिटी अलार्म के लिए आप?
12: I'm all ready, लेकिन देखना यह है कि आप में से कितने लोग तैयार हैं ना। कल का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा बाय द वे, जो सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए लेकर आए थे।
11: सभी के सभी करेक्ट आंसर्स आए थे, एंड लेट्स सी,
12: एक भी गलत आंसर नहीं था, ट्रू।
11: क्या आज आप इनको पहचान सकते हैं?
13: You know, we're funny people, and you know, and in New Zealand,
14: yes, you are.
13: And especially in New Zealand, growing up, you know, a lot of the things that you see, it's, and especially, you know, in the Americas, seeing First Nations people in a lot of film and stuff.
11: So, ye hai aaj ke hamare celebrity.
12: I think I have a name in my mind, but I'm not sure agar wo naam sahi hai ya galat hai aaj ke celebrity naam ke liye.
11: Itna to aapko pata chal gaya hoga ki ye New Zealand se hain.
12: जी,
11: ये न्यूजीलैंड से हैं। एक बार फिर ये आवाज आप सुन ले।
13: You know, we're funny people, and you know, and in New Zealand,
14: yes, you are.
13: And especially in New Zealand, growing up, you know, a lot of the things that you see, it's, and especially, you know, you, and especially in the Americas.
11: तो कोई नाम अगर आपके जहन में, दिमाग में आ रहा है, तो क्या करना होगा आपको?
12: आपको बस वो जो नाम आपके जहन में आ रहा है वो अपने अपने नाम के साथ हमारे पास भेजना होगा। व्हाट यू नीड टू डू इज सबसे पहले BF लिखें, फिर उसके बाद में आंसर आपका, और अपना नाम लिखकर 5599 पर आप हमारे पास सेंड कर दीजिए, और बदले में विल सी कि क्या आपने में सही जवाब दिया है या नहीं। ये हम आपको थोड़ी देर बाद हवा बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कोशिश तो आपको जरूर करनी है।
15: मैं लाऊं अपना A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: morning madness.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहली खबर में पुलिस ने कन्फर्म किया है कि पिछले महीने ब्लेनहम में वैराव बा रोड के किनारे पर जो नवजात शिशु मिला था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो एक स्टील बोन बच्चा था। 19 मई को एक मशीनरी ऑपरेटर को बच्चे की बॉडी मिली थी, जिसके बाद से पुलिस बच्ची की फैमिली और खासकर माँ को ढूंढ रही थी ताकि उन्हें सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट दिया जा सके। ऑकलैंड के दो काउंसलर्स ने मनुरेवा लोकल बोर्ड के मेंबर मार्शल अलुवालिया से रिजाइन करने की मांग की है, जिन पर फाइनेंशियल इंटिमिडेशन और करप्शन के आरोप लगे हैं और उनका मामला सीरियस फ्रॉड ऑफिस को भेज दिया गया है। रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलुवालिया पर आरोप है कि 2024 में एक फ्रेट कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर रहते हुए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा काम देने के बदले पैसे और 2025 के चुनाव के लिए डोनेशंस मांगा था, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। काउंसलर्स डैनियल न्यूमन और मैट विनियाता का कहना है कि अलुवालिया ने अपना भरोसा खो दिया है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि फिलहाल उन्हें 22 जून तक के लिए बोर्ड से लीव मिली हुई है। FIH विमेंस हॉकी नेशंस कप के अंतर्गत कल पहले राउंड के मैचेस खेले गए। कल इंडिया की जीत USA के खिलाफ 3-2 से हुई, जिसके बाद दूसरे मैच में जापान ने यूरुग्वे को 3-1 से हराया। कल का तीसरा खेल चिली और फ्रांस के बीच खेला गया और इसमें फ्रांस की हार 2-0 से हुई और वेंटेज ब्लैक स्टिक्स यानी न्यूजीलैंड ने अंतिम मैच में कोरिया को 3-1 से हराया। आज अगर देखें सुबह 11:15 USA यूरुग्वे से खेलेगा, जिसके बाद इंडिया और जापान का खेल होगा। फ्रांस कोरिया से 3:45 PM पर खेलेगा, जबकि शाम 6:00 न्यूजीलैंड और चिली का मैच खेला जाएगा। इन मैचेस पर भी अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: ब्रेकफास्ट शो

0: accurate traffic.
1: Thanks for your trust, Auckland.
2: High of 16, cloudy with some showers today. Coming in on the Northern Motorway, 32 minutes to town from Constellation Drive. We're heavy there to the bridge and slow at Silverdale. Northwestern, 35 minutes in from Massey. Slow all the way from Massey. Heavy patches frequent. Southern, 45 minutes in from Monaco. Slow all the way from Papakura. Heavy on and off there to Monaco. Southwestern, slow northbound through Whitty.
1: Harcourts, Cooper & Co. Part of New Zealand's most trusted real estate brand. Licensed REAA 2008.
3: Professional Financials has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
6: You don't need your toilets cleaned, do you?
5: Find a cheaper mechanic in Invercargill. Pretend you know what they're talking about.
7: Pretty sure the carbonara's playing up.
5: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
8: True Midas.
9: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
10: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
11: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
10: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
11: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
10: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
12: Birthday greetings.
15: इसका बर्थडे भाई?
16: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ.
17: Happy birthday to you.
18: आज 16th ऑफ जून को सबसे पहले माउंट रॉस्किल में संध्या बोकिल जी हैं, अपनी सालगिरह मना रही हैं. ये दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. आपके साथ पार्क हेवन ड्राइव में नीति शर्मा जी हैं, आपको भी सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. इसके अलावा हैप्पी 11th बर्थडे टू आवर फेस्ट नायशा. मे यू टेक एवरी स्टेप विद सक्सेस एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट विद लव एंड लाफ्टर. Love from younger sister Naira, baby brother Kian, mom and dad हैं आजा आजी और तमाम जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं. नायशा, हमारी ओर से भी आज का ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. A very very happy birthday, many many happy returns of the day. और आपके साथ हैप्पी बर्थडे विजय कृष्णा, बहन है आपकी केशनी तकनीनी से आज आपको याद कर रही हैं और सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रही हैं. आपको भी ये दिन अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एक और मैसेज आया है, इट्स माय मम्स बर्थडे. हरदीप कौर, थैंक यू सो मच. अभी आई एम नॉट श्योर कि आपकी माँ का नाम हरदीप कौर है या फिर आप जिन्होंने मैसेज भेजा है आपका नाम हरदीप कौर है, लेकिन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आपको हम कहना चाहेंगे ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं. इसी तरह से सालों साल आप अपनी सालगिरह जो है ये मनाते रहें और अपनी सालगिरह की खुशियों में हमें भी शामिल करते रहें. और आज जितने भी लोग जहाँ कहीं पर भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. एक और मैसेज आया है 6470 से फ्रॉम राजेश, रिया एंड रायना, लेकिन बाकी का मैसेज अच्छा, इट्स माय मम्स बर्थडे हरदीप कौर फ्रॉम राजेश, रिया एंड रायना. सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको, ये दिन अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
19: Good morning.
12: Morning Madness.
18: मॉर्निंग मैडनेस आपके खातिर जारी है. 22 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और आज का सेलिब्रिटी अलार्म. सोम ने ही कोशिश की लेकिन सोम आपका जवाब गलत हो गया. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट और सेकंड टाइम. अब वी विल कैरी ऑन फॉर टुमारो और देखेंगे कि क्या कल कोई हमारे सेलिब्रिटी को पहचान पाता है या नहीं.

0: Future.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Accurate traffic.
3: Dry July starts soon.
4: Showers at times, a high of 16 today into the city. Motorways fairly standard, southern 51 minutes Manukau to the city. Slow all the way from Papakura. Heavy spots frequent, especially from Otahu. Northwestern 41 minutes in from Massey. We're slow upper harbour to the city, heavy from Point Chev. Southwestern, little slow both ways, especially northbound at Wiri. Northern 32 from Constellation, heavy on and off from there.
3: Do good, feel good. Go dry this July. Search Dry July to register.
5: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
6: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden, queen size, now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
8: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
9: HBO Max is the all-killer, no-filler.
10: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
9: Exactly.
10: Right, we'll see. What have they got?
9: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
10: Whoa, okay, I get it. Fair call.
9: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी cute है.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. थोड़ी देर बाद News and Sports Update जो है ये भी हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में, और FIFA World Cup के मैचेस जो हैं ये भी खेले जा रहे हैं, इन पर भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. अभी फर्स्ट हाफ का मैच पूरा होने वाला है. इजिप्ट की जीत बेल्जियम के खिलाफ 1-0 से हो रही है.
0: Throwback.
13: आपके लिए लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और इस घंटे जहां पर आपके लिए इतनी सारी कमाल की चीजें, कमाल की जानकारियां हम लेकर आए, तो वहीं पर एक और एक अपडेट जस्ट इन केस इफ यू मिस्ड आउट ऑन इट. अर्लियर इन दिस मंथ इनफैक्ट ये आर्टिकल जो है ये शेयर किया गया था और इस पर कुछ रिपोर्ट्स जो है ये सामने आई है. और कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1st of July ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल मिनिमम वेज है ये 5.97% से बढ़ जाएगा. अब मतलब ऑस्ट्रेलियन $26.44 एन आवर हो जाएगा, विच विल बी अबाउट न्यूजीलैंड $32.02. इसके मतलब ये है कि एक फुल टाइम वर्कर जो है इनका एनुअल इनकम ऑफ अबाउट $52,245 बढ़कर ये मतलब इतना हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड $63,000 जो है ये एनुअल इनकम हो सकता है एक फुल टाइम वर्कर का जो मिनिमम वेज पे हो. Now, a lot of people we know जो New Zealand से Australia जा रहे हैं. इनफैक्ट ये जो you know Trans-Tasman migration है ये अभी भी रुका नहीं है. A lot of brain drain has happened. A lot of people are going to Australia for better opportunities, for better pay. और इनफैक्ट ये comparison अभी भी चल रहा है. And you can see very rightfully क्यों ऐसा हो रहा है. New Zealand में जो minimum wage है it increased by 1.9% 1st of April को.
12: Right.
13: So, ये $23.95 एन आवर हो चुका है और इसका मतलब ये है कि एक एनुअल जो फुल टाइम वर्कर ऑन दिस मिनिमम वेज है इनका एनुअल इनकम वुड बी अराउंड $49,816 इफ यू कंपेयर विद ऑस्ट्रेलिया ये 63,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स है. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, यू सी द पॉइंट.
12: हां, बट द थिंग इज यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद पेयर्स ना. न्यूजीलैंड एक डिफरेंट इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक सिचुएशन टोटली अलग है फ्रॉम न्यूजीलैंड.
13: 100% agreed, but in this particular situation, people in New Zealand are moving to Australia because वो ये comparison कर पा रहे हैं और उनको move होने के chances भी मिल रहे हैं. So the reason here why this comparison is happening, क्योंकि Australia better pay offer कर रहा है and the people from New Zealand are moving there, लेकिन New Zealand में ये नहीं है, which is why people are not staying here. इसीलिए comparison हो रहा है ताकि किस तरह से लोगों को retain किया जा सके या फिर क्यों लोग जो है ये country छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. नाउ मूविंग अहेड विद द आर्टिकल, ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलियन मिनिमम वेज वर्कर्स विल अर्न रफली अराउंड 13,000 मोर पर ईयर देन न्यूजीलैंड मिनिमम वेज वर्कर्स. अराउंड 2.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स जो है इन्होंने कवर किए हैं बाय द इंडस्ट्रीज अवार्ड रेट्स, जिसमें बहुत से ऐसे हैं जिनको 4.75% का पे राइज भी मिल सकता है. नाउ द गैप इज लाइकली टू स्ट्रेंथन टू अपील पीपल ताकि वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो सके. एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि वहां पर ये ज्यादा बड़ा गैप हो रहा है एंड पीपल आर गेटिंग एंटाइज्ड बाय इट, राइट. लिविंग वेज का एडवोकेट मतलब लिविंग वेज एडवोकेट्स का कहना है कि ग्रोइंग पे डिफरेंस कुड एनकरेज मोर न्यूजीलैंडर्स टू क्रॉस द टैस्मन. और एक्सपर्ट्स नोट करते हैं कि माइग्रेंट्स शुड ऑल्सो कंसिडर फैक्टर्स सच एज हाउसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड जॉब अवेलेबिलिटी बिफोर दे रिलोकेट. क्योंकि हाउसिंग कॉस्ट वहां पे भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे भी बढ़ रहा है एंड द वेज गैप एड्स टू कंसर्न्स अबाउट न्यूजीलैंड्स ऑनगोइंग ब्रेन ड्रेन, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने मेंशन किया, पर्टिकुलरली एज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिसेंटली ये न्यूजीलैंड में काफी बढ़ चुका है एंड इट्स क्लाइम्ब टू इट्स हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 30 years, जबकि ऑस्ट्रेलिया में वेजेस जो है दे कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर. इफ यू रिमेम्बर, हमने कल इसके बारे में बातें भी की थी कि न्यूजीलैंड में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा जो है ये बढ़ चुका है.
12: तो लेट्स सी टाइम क्या और हमें दिखाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का. भाई हमें किसी और देश से न्यूजीलैंड अच्छा लगा, अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ आए और यहाँ से अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कहीं और जा रहे हैं. बट सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इवेलुएट करना ज़रूरी है. जैसे किसी ने टेक्स्ट किया है कि बट इन ऑस्ट्रेलिया यू हैव टू ट्रेवल टू फार फॉर योर डेली जॉब कम्पेयर टू न्यूजीलैंड. 9227, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 12.5 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज रहेगा। दिन की शुरुआत बारिश के साथ होगी, वेस्ट में कुछ गंभीर बारिश हो सकती है और धीरे धीरे मौसम साफ होता जाएगा। सनसेट आज का शाम 5:12 पर होने को है।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज का ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। रश आवर की शुरुआत में हम लेकर आए हैं एक ऐसा नाम जो कल से यहाँ न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है,
1: और ये नाम जो है ये म्यूजिक लवर्स के बीच में सुपर डुपर पॉपुलर ग्लोबल सेंसेशन करण औजला, जो अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं ऑकलैंड।
3: Absolutely, कल ये अनाउंसमेंट जो ये हो चुका है, और आपके पास भी ये बेहतरीन मौका है कि आप भी इस अमेजिंग पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर का हिस्सा बन सके, जो कि डेफिनेटली मैसिव होने जा रहा है। करण औजला के बारे में अगर बातें करें तो हमने पिछली टाइम जब ये इनफेक्ट आए हुए थे यहाँ न्यूजीलैंड, तो इसके बारे में काफी बातें हुई थी, बिकॉज ही केम एंड ही परफॉर्म्ड ऑन अ वीकडे, इनफेक्ट ऑन अ वेंसडे। And people had their doubts कि like Wednesday के रोज न्यूजीलैंड में आकर, particularly ऑकलैंड में आकर कोई परफॉर्म कर रहा है तो कितने भी बड़े स्टार होंगे, स्पार्क अरेना जैसा जो वेन्यू है ये फुल नहीं होगा। A lot of people have their doubts in regards with that. But the interesting thing is he actually made it possible. Wednesday की रोज a weekday in ऑकलैंड स्पार्क अरेना जैसा जो वेन्यू है ये इन्होंने फिल किया था, एंड दिस टाइम अराउंड ये वापसी कर रहे हैं, एंड गेस वॉट, again he's gonna perform on a weekday. This time it's not a Wednesday, it's a Tuesday, 25th of August ko ye live perform karne wale hain at Spark Arena.
1: And that's not all, ek special guest bhi unke saath aa rahe hain, and he is none other than Ikki jo hai ye bhi Karan Aujla ke saath aa rahe hain, making this an unforgettable night of music and energy. पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो है इसके लिए टिकट्स जो है आज से लाइव जा रहे हैं, रिमेंबर आज से लाइव जा रहे हैं, एंड इसके खातिर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, विजिट hum.rover.nz या फिर livenation.co.nz। यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू मिस दिस चांस एंड बी पार्ट ऑफ द पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर। hum.rover.nz या livenation.co.nz आप विजिट कर सकते हैं। प्री सेल्स जो है ये आज सुबह 10 बजे से लेकर फ्राइडे 19 तक सुबह 10 बजे तक चलता रहेगा। रिमेंबर ये प्री सेल्स है वेंसडे 10 AM, आज 10 AM से फ्राइडे 10 AM तक, और लाइव नेशन प्री सेल थर्सडे 18 जून से लेकर फ्राइडे 19 जून 10 AM तक, और जो GP ऑन सेल फ्राइडे 19 जून को, इसी फ्राइडे को दिन में 11 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा।
3: तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप ग्रैब कर सकते हैं टिकट्स, क्योंकि टिकट्स आर लाइव नाउ, एंड जिस किसी भी दिन आप इनको इनका टिकट जो है ये ग्रैब करना चाहते हैं, गो एंड ग्रैब इट। बट ऑन द 25th of August स्पार्क अरेना पहुंच जाइएगा इनका अमेजिंग शो जो है ये विटनेस करने के लिए। नाउ ये तो रही बात है कि आप कैसे टिकट्स जो है ये ग्रैब कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड लेट अस आल्सो रिमाइंड यू, आप हमारे साथ कुछ पासेस जीत भी सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा विजिट करेंगे, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक पोस्ट जो है ये किया गया है फीचर्ड फोल्डर में आपको मिल जाएगा, जस्ट फॉलो व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड ऑन दैट पोस्ट एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ, जहां पर आप जीत सकते हैं एक बहुत ही अमेजिंग डबल पास टू गो एंड विटनेस दिस अमेजिंग आर्टिस्ट परफॉर्म लाइव ऑन द 25th of August। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप हमारे साथ डबल पासेस जीतना चाहते हैं तो एक मौका अभी ही चलिए आपको हम दे रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आपको हमारे पास भेजना है KA यानी करण औजला के नाम का शॉर्ट फॉर्म जो है ये लिखकर, पहले आपको लिखना है KA, फिर आंसर लिखना है और अपना नाम लिखना है, एंड 5599 पर हमारे पास आप

0: हैं ये आप हमें भेज सकते हैं.
1: एंड वी गॉट सो एक्साइटेड विद करण औजला और उनका जो पी पॉप कल्चर टू. हमने कहा कि आज से प्री सेल्स लाइव हो रहे हैं वेंसडे 17 जून. भाई आज तो ट्यूजडे 16 जून है, कल सुबह 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा. रिमेंबर आज नहीं, कल सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा. लेकिन अभी जल्दी जल्दी अपने जो आंसर्स हैं के ऐ, उसके बाद अपना आंसर. याद रहे के और ऐ के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. के ऐ उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, ये 5599 पर हमें भेजें.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when you update your wardrobe,
3: gorgeous,
2: money loops back,
3: gorgeous.
2: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
4: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner, winner, free chicken dinner. Yeah! Foursquare. What'll it be today? T's and C's apply.
5: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
6: Achha,
5: batao, tuhanda focus, focus. Sada kuch nahi.
6: Shh, Mrs. Singh.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond, and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: 18 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है। और उससे पहले जो मैच हो रहा है दूसरे हिस्से में, अभी भी इजिप्ट की जीत बेल्जियम के खिलाफ 1-0 से हो रही है। स्पेन और कई ब्रिटेन आज सुबह 0-0 से बराबर ठहरे। 10 बजे सऊदी अरेबिया वर्सेस यूरुग्वे और 1 PM ईरान वर्सेस ऑल वाइट्स, ये मैचेस फीफा वर्ल्ड कप में होने को हैं। और भी अपडेट्स हम आपको बारी बारी से देते रहेंगे इस प्रोग्राम में। इन द मीन टाइम आज व्हाट्स योर टेक, इतना हम आपको पहले बता दें कि वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट सम कॉन्ट्रोवर्सी, और बस कहीं पर या एक न्यूज़ पोर्टल पर मैंने कुछ देखा, सोचा आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि व्हाट्स योर टेक। ये जो लेडी हैं जिन्हें हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अमेरिका में रहती हैं। हैव अ लिसन।
14: अमेरिका में पंडित जी कितना कमाते हैं और किस वीजा पे आते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार डीएम्स में और कमेंट्स में पूछा है, तो आज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ अमेरिका में पंडित जी एक छोटी सी पूजा का कितना चार्ज करते हैं सुन के आप सरप्राइज हो जाओगे। अगर हम घर में एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं ना, जिसमें सिर्फ हमारी फैमिली है, कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, तो भी आराम से $350-$300 चार्ज करते हैं, मतलब $22,000 या फिर $25,000 के आसपास। और इसके अलावा $100 या $150 मंदिर की फीस अलग से होती है। और अगर पूजा का सामान आप खुद से ला सकते हो तो ठीक है, वरना आप पंडित जी को डॉलर्स दे सकते हो, वो खुद ही ले आते हैं। अगर कोई नई कार लेता है और उसकी पूजा करवाने के लिए मंदिर में जाता है तो उसके लिए भी अच्छा खासा चार्ज होता है। गृह प्रवेश, धनतेरस और सावन के महीने में बहुत लोग पूजा करवाते हैं, तो यहाँ पे पंडित जी की डिमांड भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। और जैसे आपको पता है कि अमेरिका में इतने सारे इंडियंस हैं और धीरे धीरे ग्रो ही हो रहे हैं, तो रिलीजियस सर्विसेज की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है, तो इसलिए पंडित जी तो हमेशा डिमांड में रहते ही है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि
13: तो ये इन्होंने जाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया और सारिका इनका नाम है, हमने सोचा ये आपको सुनाते हैं और उससे उसके बाद आपसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर टेक, आपने क्या न्यूजीलैंड में यहाँ एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक यहाँ पर जो भी रहा है कि आज तक किसी भी पंडित जी ने हम लोगों से या मुझसे पर्टिकुलरली तो कोई एक स्पेसिफिक डिमांड नहीं की है कि एक पर्टिकुलर पूजा करवाने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। जो भी श्रद्धा से देते हैं वो हमेशा उन्होंने स्वीकार किया है। तो आई हैवंट हैड एन एक्सपीरियंस लाइक दिस. और हम आज आपसे जानना चाहते हैं व्हाट्स योर टेक, क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ न्यूजीलैंड में. 0800 004866 ये हमारा नंबर है. व्हाट्स योर टेक, क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ न्यूजीलैंड में. 0800 यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपने घरों में पूजा पाठ जो है ये करवाते हैं, चाहे सत्यनारायण व्रत कथा हो या फिर किसी और तरह की माता की पूजा हो या जो भी हो, तो अलग अलग तरह के जो अनुष्ठान है ये अपने घरों पर आप करते हैं. क्या आपको कभी एक स्पेसिफिक फी जो है ये बताया गया है, तो वो आपसे हम जानना चाहते हैं. और अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या फिर आपने भी हमेशा ही जो भी दिया है वो स्वीकारा गया है, वो भी आप बता सकते हैं. गुड मॉर्निंग. हेलो.
3: गुड मॉर्निंग. कैसे विजय जी?
13: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
3: बस मैं ठीक हूँ. पूजा कैसी है?
13: पूजा भी ठीक है, बढ़िया है.
3: गुड गुड. विजय जी, नहीं मांगते यहाँ तो, बिल्कुल नहीं मांगते. और अभी तो रिसेंटली, मतलब हम लोग रिसेंटली मूव हुए हैं यहाँ का भी हमने देखा. और माय मदर इन लॉ पास्ड अवे बैक इन इंडिया, या सो वी डिड देयर आल्सो. तो वहाँ तो मुंह फटे हुए पंडितों के, तो सीरियसली इट्स टू मच. इंडिया में तो बहुत है.
13: ओके, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ?
3: इंडिया में तेरा पैकेज है, अंतिम संस्कार का पैकेज, फिर तीसरे दिन का पैकेज, फिर अगर आप घर पे पाठ वाठ रखवा रहे हैं कुछ तो उसका पैकेज. तो दे हैव सेपरेट पैकेजेस फॉर इंडिया, बट यहाँ नहीं है.
13: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. गुड मॉर्निंग. हेलो.
12: गुड मॉर्निंग विजय भाई, अंकित है.
13: कैसे हो अंकित? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया.
12: यू वेलकम.
13: जी
12: है तो न्यूजीलैंडर ही.
13: जी बिल्कुल.
12: यस, मैंने दो कल्चर प्रेफर देखे हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. फीजी कल्चर, जिसमें घर पे सारी पूजा होती है, मंडली होती है, जिसमें कोई फीस नहीं होती. इट्स जस्ट ए फैमिली गेट टुगेदर जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और ये सारी चीजें हो जाती हैं. बट यस दिस जो इंस्टा पे वीडियो है वो भी सही है. वो चीज मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस की है और मेलबर्न में भी ऐसा ही है.
13: ओके, स्पेसिफिक फी होता है?
12: यस सेम यही प्राइस, $300 $400
13: दैट्स व्हाट दे चार्ज फॉर. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो आपने न्यूजीलैंड में जब आप थे यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था ये?
12: हाँ, यहाँ पे भी मैंने एक्सपीरियंस किया है. और दे आस्क फॉर दक्षिणा, ठीक है, कि गाड़ी लिए तो आप दक्षिणा जो देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है. बट दे स्पेसिफिकली से दैट.
13: ओके ओके, थैंक यू.
12: और लिए तो आप दक्षिणा जो देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है. बट दे स्पेसिफिकली से दैट.
13: ओके ओके, थैंक यू.
12: और पूजा के लिए अगर घर पे आप पूजा अरेंज कराते हो तो यस, वो भी उनको फीस होती है कि जो आपकी श्रद्धा हो आप दे देना. बट उनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है कि नॉर्मल वे में क्या लोग कितना देते हैं, ठीक है. तो दैट्स व्हाट यू विल गेट द आंसर कि यस.
13: ओके, थैंक यू अंकित आपके कॉल के लिए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए. आपका भी अगर कोई है एक्सपीरियंस, अगर आपने कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, यू नेवर बीन आस्क, तो वो भी बताएं भाई. अभी देखो एक लिस्नर है, इनफैक्ट दोनों लिस्नर अगर देखें तो उन्होंने ये कहा है कि आप दक्षिणा दे देना. दान तो देते ही हैं, पंडित जी जब आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए तो हम बेशक दान करते हैं. लेकिन अंकित ने भी कहा कि वो स्पेसिफिक अमाउंट नहीं कहते हैं, लेकिन शायद कहीं संकेत जो है ये उनको मिल जाता है. गुड मॉर्निंग. हेलो.
15: मॉर्निंग. आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस.
13: जी भाई.
15: हमने घर बाय किया तो वी वेंट टू अ टेंपल इन साउथ ऑकलैंड.
13: जी.
15: हमने उनको बोला कि गृह प्रवेश की पूजा करवानी है. एंड दे सेड कि अगर सामान अपना लेके आओगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे तरफ से तो $300 लगेंगे सामान का.
13: जी.
15: एंड उसके बाद दे सेड कि नॉर्मली लोग दक्षिणा में 300-350 देते हैं, तो आप इतना भी दे सकते हो, थोड़ा कम भी दे सकते हो. बट दे क्लियरली सेड कि इतना देते हैं लोग,
13: इतना.
15: तो डायरेक्टली फीस नहीं मांगी, बट क्लियरली एक इंडिकेशन दे दिया कि इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे.
13: ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आप अपना जो एक्सपीरियंस है ये बताने के लिए. तो भाई अलसी किस तरह से जो बातें हैं ये सामने, और आई डोंट थिंक इस तरह से खुलकर इस चीज़ के बारे में बातें जो है ये हुई हैं. एंड मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मुझसे तो आज तक कभी भी या हमसे कभी भी किसी भी पंडित जी ने ऐसा नहीं कहा कि इतना दान मिलता है तो आप देख लो क्या आप कर सकते हो. जब भी जितना भी बन सका, जो भी हो सका, हमसे जो भी हमने दिया वो बहुत भाव से उन्होंने स्वीकार किया. और सारिका ने जो बताया कि अमेरिका में जो है कि 300 to 350 dollars सत्यनारायण व्रत की पूजा के लिए देते हैं. अभी भाई साहब ने एक बताया है कि उन्होंने मंदिर गए थे गृह प्रवेश पूजा के लिए, और उन्होंने बताया कि अगर आप सामान ले आते तो ठीक है, और उनकी ओर से अगर सामान अगर नहीं तो सामान क्या लगभग $300 मेरे ख्याल से उन्होंने बताया. और लोग जनरली 300 to 350 dollars देते हैं गृह प्रवेश पूजा के लिए. आप उतना दे सकते हो या उससे कम ज़्यादा भी दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो. तो आपका जो एक्सपीरियंस है ये. हाय विजय, किसी ने मैसेज किया है, फॉर रोड पूजा $175, ट्रांसपोर्ट ट्रेवल $30, if he supplies puja things $45 I think, not too sure. Acha, abhi ye pata nahi ki kya unhone specifically aapko charge bataya hai ya phir aap ye anuman laga rahe hain. तो अगर आपका भी कोई टेक है, कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, 0800 हम या 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस जो हैं ये हमारे पास भेज सकते हैं आप. एंड जनरली अगर देखा जाए तो अभी तक जितने 3-4 लोगों ने जो भी कॉल किया है, द एक्सपीरियंस जो लोगों का रहा है ठीक ठाक ही लग रहा है सुनने में. अनलेस आप में से और लोग सामने आकर अपने एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करें, बताएं कि आपके केस में क्या रहा है, क्या आपसे कोई स्पेसिफिक चार्ज मांगी गई है. कुछ लोगों ने कहा कि वो स्पेसिफिकली डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि ये चार्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो है ये मिल जाता है कि लोग जनरली इतना देते हैं. आप देख लो आपको क्या करना है. तो अभी टाइम उतना नहीं है और कॉल्स लेने के लिए, शायद आप हिचकिचा भी रहे होंगे इस तरह के टॉपिक पर बातें करने के लिए. कोई बात नहीं, आप चाहें तो 5599 पर अपने जो मैसेजेस हैं ये हमें ज़रूर भेज सकते हैं.
10: Bollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
17: मैं लाऊं अपना ए गेम.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
13: अच्छा लगता है एक और कॉल जो है ये आ रहा है, जल्दी से ये कॉल भी ले लेते हैं. गुड मॉर्निंग. हेलो.
18: गुड मॉर्निंग
13: जी मैम.
18: वेरी गुड टॉपिक आपने उठाया है, तो मैंने सोचा मैं अपना भी कुछ दे दूं जिसका मुझे अनुभव है.
13: जी
18: हमारे घर फैमिली में एक डेथ हुआ था यहाँ पर न्यूजीलैंड में. तो हमें नहीं मालूम था कि कितना होगा, जब पहली बार था तो जब हमारे पुरोहित आए उन्होंने सब कुछ बताया था, ऐसे ऐसे करना है, इस दिन पे फ्यूनरल होगा, कौन सा दिन पे जाएंगे, समुद्र जाएंगे वो शेरवाने के लिए, राखी शेरवाना. तो फिर उसने बताया कि हम गरुड़ पुराण रखेंगे. उसके बाद में अबाउट 7th डे पे जब उन्होंने आया गरुड़ पुराण करने, तो एक कोना में हमारे जो फैमिली है उनको ले जाकर बताया कि देखो मैं आता हूँ, हम नोचो में रहते हैं, और वो आ रहे थे पापा टोई से.
13: जी.
18: तो उन्होंने बताया कि हमारा 5000 चार्ज है.
13: कितना कितना सॉरी?
18: $5000.
13: $5000 ओके.
18: $5000 चार्ज है, और फिर उसके उपरांत जो सीधा पे डाल के देना है वो सब अलग है.
13: अच्छा.
18: और फिर कोई वहाँ पर होता है जो ब्रह्म भोज होता, तो कितना 5 पुरोहित को बुलाया जाता है, उनका हाथ धोया जाता है, भोजन कराते हैं, फिर उन सब को देना, और फिर जो मेन ब्राह्मण होता है उसको. तो मैं तो चकित रह गई, क्योंकि अगर हम शादी करते हैं तो वो प्लान रहता है ना, बट ये जो इसका दाह संस्कार का होता है ये तो अचानक से हो जाता है, कोई के नहीं मालूम है किस दिन कब समय आएगा, फिर उसके ऊपर से उपरांत ये जो नमूना पानी है ये सब लाना जो भज निकालते हैं, आई थिंक ब्राह्मण पुरोहित सभा से कुछ ऐसा बात करना चाहिए कि एक एक ऐसा मुद्दा पे आवे कि अच्छा ठीक है इतना चार्जेस है आपको बुलाना है पहले बता दो ना, ऐसे नहीं कि अब जब हाफ वे अपना काम कर चुके तब अब अपना तो पहले कोट दे दो तो फिर वो पर्सन सोचेगा क्या ठीक है हम कराएंगे या नहीं कराएंगे
13: जी, फिर क्या
18: टू इयर्स के बाद जस्ट ऑलमोस्ट 2 years अगो इट हैपेंड और मैं तो मैं खुद ही ब्राह्मण परिवार से हूँ पर मुझे तो सुन के तो मैं आई वाज जस्ट स्पीचलेस। मैं आपका प्रोग्राम हर वक्त सुनती हूँ पर जब कोई ऐसा मुद्दा आता तभी मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ।
13: थैंक यू सो मच मैम अपना एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करने के लिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे अपनी ओर से पता लगाने की कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने मैसेज किया है, आई एम एन आर्य सो आई टेल पंडित स्ट्रेट अप नो डोनेशन और टिप्स फॉर पूजा, करनी हो तो करो अदरवाइज आई विल फाइंड अ राइट पंडित। बाय द वे माय रेगुलर पंडित आई थिंक आप बोलना चाहते हैं डज नॉट टेक एनीथिंग। विकास थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। तो 5599 हमारा नंबर है, आप अपने मैसेजेस हमारे पास भेज सकते हैं।

0: 22 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 9 बजने में और अभी जो स्कोर हो चुका है इजिप्ट 1 बेल्जियम 1 और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। एक और मैसेज आया है आज व्हाट्स योर टेक के बारे में। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजय, आई एम अ शॉप ओनर एंड हैड अ लिस्ट टू प्रिपेयर एंड ऑन लिस्ट आई सो वन डे गीता पाठ $250 ट्रांसपोर्ट $25 एंड सीधा ही रोट ऑन द लिस्ट एवरीथिंग ही वॉन्टेड ऑन द लिस्ट फॉर दान हैज टू बी प्योर सिल्वर आई वॉज शॉक्ड। ये किसी ने हमारे पास मैसेज किया है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।
3: Accurate traffic.
4: Spend and win at Silverdale.
5: Cloud and some showers today. Got a high of 16 degrees. Southwestern motorway, fairly slow southbound at Mount Roskill with a possible incident just past Hillsborough Road. Slow northbound at Whitty. Southern 55 minutes in from Manukau. We're slow all the way from Papakura, heavy from Otahu. Northern 34 from Constellation Drive, heavy there to the bridge. And northern 40 minutes in from Massey, heavy a lot of the way from Te Aratu.
4: Spend $50 in Silverdale to enter to win an SUV. Silverdalebusiness.co.nz. T's and C's apply.
6: Smile.

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: The Rush Hour aapke liye jaari hai aur duniya ka sabse bada soca bowl jo hai ye display par aa chuka hai.
2: Kahan pe?
1: और ये है अमेरिका में. इस जगह का नाम मुझसे तो प्रोनाउंस नहीं होता है. स्टार्ट्स विद एम. आप गूगल करके देख सकते हैं कि कहाँ पर है. एंड ये जो सोका बोल है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोका बोल. और इसने इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अप्रूव किया है एंड ऑफिशियली टुक द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोका बोल फ्रॉम अ 39.98 फुट बोल जो 2013 में कतार में क्रिएट किया गया था. और ये बोल जो है इसे क्रिएट किया गया है ब्रिटेन इनकॉर्पोरेटेड और क्रिएटिव इन्फ्लेटेबल्स द्वारा जो ओहायो में है. और फीफा वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो सोका बोल है इसे बनाया गया है. और ये पब्लिक डिस्प्ले पर रहेगा अंटिल द नेक्स्ट टू डेज वहाँ अमेरिका में. और मैस्पोर्ट ऑफिशियल्स कहना है कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इस बोल को क्रिएट करने के लिए इन सभी चीज़ों को बाद में रिसाइकल कर दिया जाएगा. एंड इट इज़ मैसिव. सच अ बिग बोल. ये बहुत बड़ा है.
2: आप इतना फैसिनेटेड लग रहे हैं इससे कि मैं क्या ही बताऊं.
1: Who is not fascinated with football?
2: I am not fascinated, but anyways, the people who really love football, they definitely would be fascinated by this.
1: अरे मैं इतना आपको बताऊं, इसका डायमीटर जो है is 47.9 feet.
2: Okay.
1: What? Okay.
2: मैं क्या ही बोलूं?
1: You should have said, oh really? 47.9
2: में? Oh really? 47.9 whatever diameter का है ये.
1: Sound like my daughter right now.
2: नहीं मैं honestly I don't know. I'm not fascinated by it. But as I said, कि football का season है, FIFA World Cup का season है, तो definitely there are people who would be interested and they will be fascinated by this. So अगर आपको भी enticing और fascinating लग रहा है, आप विजिट कर सकते हैं दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे जाकर ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ हाउ इट एक्चुअली लुक्स. बट ऑन द अदर हैंड ये याद रखें फीफा वर्ल्ड कप जारी है और ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज टेकिंग पार्ट इन इट. इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड.
1: नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट.
2: हां, यूनिवर्स.
1: फुटबॉल यानी सोका इज द बिगेस्ट स्पोर्ट ऑन दिस प्लेनेट.
2: आई सेड इट द बिगेस्ट.
1: No, you said one of the.
2: I didn't say one of the. नहीं, मैंने बोला the biggest.
1: No, you said one of the biggest.
2: Oh my God, whatever it is. चलो, मैंने बोल दिया, it's done. And talking about FIFA World Cup, एक खबर जो है ये सामने आई है, and this is such a beautiful story. जो जापान के लोगों के डिसिप्लिन और एथिक्स के बारे में बातें होती हैं इसके बारे में. आई थिंक संडे को जापान और नेदरलैंड्स के बीच में वर्ल्ड कप का मैच जो ये हुआ था डेलिस स्टेडियम में. और इसके बाद जाकर जापान के जो फैंस यहाँ पर आए थे टू वॉच द मैच एंड टू सपोर्ट द टीम, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन है ये कंटिन्यू किया. द ट्रेडिशन ऑफ बेसिकली क्लीनिंग अप देयर पर्टिकुलर एरिया आफ्टर द टूर्नामेंट और द मैच फिनिश्ड. जितने भी फैंस आए थे, यू कुड सी एवरीवन विद गार्बेज बैग्स इन देयर हैंड जिनमें जापान लिखा हुआ था सरप्राइजिंगली, एंड दे वर कलेक्टिंग ऑल द रबिश जो वहां पर उनके एरिया में पड़ा हुआ था जहां पर वो बैठकर मैचेस जो है ये देख रहे थे. कलेक्टेड द रबिश एंड दे डिस्पोज्ड इट ऑफ नाइसली. एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो अगेन कैप्चर्ड दिस जापानीज कल्चर जहां पर वो आफ्टर दे यू नो एनी सेलिब्रेशन और एनी थिंग दे क्लीन अप टुगेदर एंड दे कीप द प्लेस क्लीन एंड नीट. वो वीडियो जो है इनका ये वायरल हुआ एंड यू कैन सी अ फैन एक्सप्लेनिंग कि दिस इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट दे हैव बीन यू नो टॉट एंड दैट्स हाउ दे हैव ग्रोन अप. एंड इसीलिए वो चाहे कहीं भी जाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, दे कंटिन्यू टू डू दैट. एंड ये जो मैच हुआ था जापान एंड नेदरलैंड्स के बीच में, आई थिंक द मैच फिनिश्ड ऑन अ ड्रॉ, टू ऑल जो है ये था. दोनों टीमें ने दो गोल्स जो है ये स्कोर की थी. बट दिस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, it attracted a lot of people of the respect the Japanese fans show whenever wo kahin bhi jaate hain apni team ko represent karne ke liye.

0: accurate traffic.
1: Auckland Airport, park and ride.
2: Some showers on a cloudy day, 16 now high. Southern Motorway starting to ease, 45 minutes Manukau to the city. Slow from Manukau, heavy patches on and off through to Rimuera. Little slow both ways on the southwestern, but not bad. Northwestern, 35 minutes in from Massey, slow from Te Aratu, lots of heavy patches. Northern, 30 minutes in from Constellation Drive, slow at Silverdale, heavy patches Constellation to the bridge.
1: Park and ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
3: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
4: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden, queen size, now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5pm with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket Thursday, 25th June, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
9: अभी 7:30 रह गए हैं 9 बजने में 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे व्हाट्सएप टेका के लिए एक और मैसेज पीपल स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर पार्टी देन क्राइंग ओवर पंडित्स ये भी सही है थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और मैच पूरा होने वाला है इजिप्ट और बेल्जियम का दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर हैं लेटेस्ट न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट बस थोड़ी ही देर में हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे

0: Accurate traffic.
1: Bargain Chemist, worth checking first.
2: A high of 16, cloudy and some showers today as well. It's easing nicely on motorway. Southern now just 40 minutes, Manukau to the CBD. Slow patches from Manukau, quite heavy on and off from Otahu to Remuera. Southwestern looking okay. Northwestern, 35 minutes, Massey to town. Heavy on and off to Aratu to about Grey Lynn. Northern, under half an hour from Constellation Drive. Heavy patches there to the bridge.
1: Sharp prices every day. Auckland only deals when you least expect them. Bargain Chemist, worth checking first.
3: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur Vecity Omoda Jeku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 super hybrid system. Performance bhi, efficiency bhi aur all electric J5 EV. Zero emissions, maximum savings. Aaj hi Vecity Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
4: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
5: We've got double glazing.
4: Have you still got that cold, damp feeling?
6: Yeah, we do.
4: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz
8: Bunnings Trade is here to help get insulation jobs sorted. Save time and money with Earthwall Glasswall R7.0. It's quick and easy to install in a single layer, meeting H1 ceiling compliance. Call 0800 134 872 to arrange a quote and easy on-site delivery at Bunnings Trade.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
10: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं।
11: Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A trespasser is said to be behind train cancellations between Wellington and Porirua this morning. Metlink says they were on the tracks and police were called to apprehend them. Police say they're unaware of any incident. Principals claim a 2025 budget boost to support the country's highest need students is not delivering. Aotearoa Educators Collective says it remains a battle for schools to access. Sarah Aono spoke to a deputy principal yesterday about her applications.
13: They're significantly time-consuming to do, and none of which have ever been accepted, and yet they have children that they believe meet that criteria.
12: Strong exports are helping keep regional economies afloat. The latest ASB regional scoreboard has Bay of Plenty on top, largely driven by kiwifruit. Economist Nick Tuffley.
14: The parts of New Zealand that have quite an export slant are doing pretty well at the moment, which is continuing a theme we've seen over the last couple of years.
12: The UK plans to roll out a full social media ban for under-16s by spring 2027. Prime Minister Keir Starmer says it stops children doing their homework, reading, playing and getting to bed at a decent hour.
15: That may not sound like much, but these are the activities that help a child develop into an adult.
12: In sport, the All Whites return to the FIFA World Cup stage for the first time in 16 years this afternoon. They're taking on Iran in Los Angeles from 1 o'clock. Captain Chris Wood is urging his team to keep calm in what's set to be a pressure cooker environment.
16: How the boys can overcome that and still apply their footballing ability and show the world what we can actually do as individuals and as a team.
12: Also in New Zealand's group are Belgium and Egypt, who were locked at 1-1 a short time ago, approaching full-time. Football updates brought to you by Hisense.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari good brands nahi hai.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: 13.2 degrees temperature abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16, overnight kam se kam 10 degrees. Kuch halki barish rehkar hoti rahegi. It should clear out this afternoon. Sunset sham 5:12 par hoga.
11: Breakfast.
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: What's going on? Kya bakte ho?
18: Are kehna kya chahte ho?
10: क्या वक्त हो का वक्त अब हो चुका है और आज मेलबर्न के एक शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि अभी ये खबरों में आए हैं कि इनकी शादी हाल ही में हुई और इनका इनके वेडिंग सेरेमनी में एक्स्ट्रा 20 मिनट्स टाइम जो है ये लगे हैं
19: ओके
10: 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा और दुनिया भर में आमतौर पर शादी में ज्यादा टाइम लग जाता है ना लेकिन इनका जो ऑफिशियल वेडिंग सेरेमनी है
19: उसमें एक्स्ट्रा 20 मिनट
10: एक्स्ट्रा 20 मिनट लगे और ये दुनिया भर में एक खबर की तरह आ गई
19: बट इतनी बड़ी बात क्या थी 20 मिनट ही तो लगे थे एक्स्ट्रा उसमें व्हाट्स द बिग डील
10: द बिग डील इज लॉरेंस वाटकिंस ये एक फॉर्मर सिटी लाइब्रेरी वोका है ही होल्ड्स द ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पर्सनल नेम
19: ये 20 मिनट एक्स्ट्रा इनके नाम प्रोनाउंस करने में लगे क्या
10: हाँ
19: इनके, really?
10: इनके पास 2,253 फर्स्ट नेम्स हैं
19: वाओ
10: अभी अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो 20 मिनट
19: हमारे शो ही खत्म हो जाएगा
10: हाँ हा, तो इन्होंने क्या किया है कि द ऑस्ट्रेलियन मैन हु रेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक कवर टू कवर लीगली चेंज हिज नेम उन्होंने लीगली अपना नाम जो है ये चेंज किया और एक रिकॉर्ड जो है ये हासिल किया लेकिन इसके बाद जब शादी हुई तो वेडिंग सेलिब्रेंट जो है उसकी सांसें जो है ये कम पड़ने लगी थी आई मीन नॉट कम पड़ने लगी थी अटकने लगी थी
19: अटकने लगी थी मेरा नाम प्रोनाउंस करते करते
10: 2,253 फर्स्ट नेम्स क्या बकते हो
19: आई एम shook I would say
10: I'm shook
19: seriously I'm in shock मतलब 20 मिनट लगा इनका नाम प्रोनाउंस करते हुए that is shocking ना it is इतना लंबा नाम रखता कौन है that's another thing.
10: इतना लंबा नाम रखता है लॉरेंस वाटकिंस
19: अच्छा नहीं उनका असल नाम थोड़ी ना वो आप में हिम्मत ही नहीं है उनका रियल नाम लेने की
10: मैं उनके रियल नाम तक अभी तक पहुंच भी नहीं पाया हूँ इस स्टोरी में वहीं पढ़ के मैं रुक गया मैं भाई छोड़ो इससे आगे क्या जाना इतना लंबा नाम है पढ़कर क्या करेंगे
19: वही तो शो ही खत्म हो जाएगा जैसे कि मैंने कहा एनीवेज थैंक यू सो मच हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए आज का क्या बकते हो

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: चलिए बताते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में. सबसे पहले एक इंटरनेशनल सिकल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव ये इसी सैटरडे को होने जा रहा है मनुकाओ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर में, और इससे ऑर्गेनाइज किया है मुस्कान केयर ट्रस्ट ने. एक तो ब्लड डोनेशन, साथ में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. आप भी अपना डोनेशन कर सकते हैं. डिटेल्स के लिए मुस्कान केयर ट्रस्ट .org.nz या मुस्कान केयर ट्रस्ट का फेसबुक पेज आप विजिट कर सकते हैं.
4: और इसके अलावा आपको हम याद दिला रहे हैं कि एक और एक बहुत ही खास इवेंट होने जा रहा है जिसका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं. सहज योगा ग्लोबल मेडिटेशन आपके लिए फ्री वीकली मेडिटेशन सेशंस लेकर आ रहे हैं. 4 डिफरेंट लोकेशंस पर ये हो रहा है. व्हाटएवर सूट्स यू, आप उसका हिस्सा श्योरली बन सकते हैं. सबसे पहले मेरीज बे में आउटरम हॉल 478 बीच रोड मेरीज बे, मंडेज को रहता है 7:15 से 8:15 पीएम तक. मारिया को 02-2303-998-9918 पर आप कॉल कर सकते हैं. दूसरा माउंट एल्बर्ट में अवराका सी स्काउट्स होल रेंज व्यू रोड मुरे हर्लबर्ग पार्क माउंट एल्बर्ट में, ये एवरी सैटरडे को 10 AM to 12 PM रहता है. डिटेल्स के लिए आप आरती से बातें कर सकते हैं 02-2404-8386 पर. और हॉविक में द ग्रीन रूम वर्क्स ब्रिज सेंटर 35 वर्क्स ब्रिज रोड हॉविक, एवरी ट्यूजडेज को 7 PM to 8 PM ये रहता है. और 02-2566-9445 पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर डिटेल्स. वेर इज नॉर्थ कोर्ट में 27 लेक रोड नॉर्थ कोर्ट, एवरी ट्यूजडेज को 7 PM से रहता है टिल 8 PM तक. ओमकार को 02-2107-4452 पर आप कॉल कर सकते हैं, या माफ कीजिएगा 02-2107-4452 पर आप ओमकार को कॉल कर सकते हैं, या मोहन को 02-2657-7266 पर कॉल कर सकते हैं.
3: न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला, एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. 8 अगस्त को ये होगा वैदिक सेंटर पापाटोई टोई में, और आप भी इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाएं. साथ में अगर आप टीम में शामिल होना चाहते हैं एज अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर तो मास्टर अशोक से आप बातें कर सकते हैं 02-1179-5459 पर. नंबर उनका याद रखें 02-1179-5459.
4: और साथ में आपके पास मौका है कि आप भी एक्सपीरियंस कर सके एक बहुत ही हिलेरियस गुजराती क्लासिक गुजराती ह्यूमर जिसे बोलते हैं रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स, और साथ में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ एक हिलेरियस अमेजिंग शो जिसका नाम है गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर, जिसमें लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया जो है ये आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए. इनका ब्रांड न्यू कॉमेडी शो गुज्जू भाई जो है ये आप लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो आप देख सकते हैं इनको परफॉर्म करता हुआ. बहुत ही अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर जो है ये इनको मिलता है, और कैसे ये एक्सचेंज ऑफर के बाद अ सीरीज ऑफ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है जो आपको हंसने पर एकदम मजबूर कर देगी. और ये याद रखें सिद्धार्थ रंडेरिया जी का जो गुज्जू भाई प्रोडक्शन है, जब भी ये कोई शो लेकर आते हैं यहाँ न्यूजीलैंड हमेशा सोल्ड आउट होता है. सो डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट एंड ग्रैब योर टिकट्स ASAP. premiumtickets.co.nz विजिट करते हुए फ्राइडे 3 जुलाई को ये होने वाला है, मतलब ज्यादा दिन बाकी नहीं है इसके लिए. 7:30 PM से विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर आप जा सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं.
3: माँ दुर्गा मंदिर 4x3 ऑनस्लो एव पापाटोई टोई में माँ भगवती का जागरण इसी शनिवार को रहेगा, और शाम 7 बजे या रात 7 बजे आपके लिए भोजन का प्रबंध रहेगा, और उसके बाद रात 9 बजे ज्योति प्रचंड और जागरण जो है कि रात भर जारी रहेगी, तो आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
4: और फाइनली आपको याद दिला रहे अबाउट द इंडियन इंक थिएटर कंपनी जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बड़ा ही कमाल का बहुत ही अमेजिंग प्ले विच इज कॉल्ड बलून डॉग which has been written and performed by Jacob Rajan और Justin Lewis जिन्होंने इसकी कहानी लिखी उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है. आप भी Jacob Rajan को ऑन स्टेज देख सकते हैं when he returns to the stage for the world premiere of Balloon Dog. एक बहुत ही deeply moving न्यू प्रोडक्शन के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी की काबुलीवाला से इंस्पायर्ड बलून डॉग इज सेट इन द 21st सेंचुरी इन ऑकलैंड. और इसकी जो खूबसूरत सी कहानी है इट्स बेसिकली अबाउट अ फ्रेंडशिप, एक अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old और साथ में एक लोनली माइग्रेंट वोका. आफ्टर देयर फ्रेंडशिप जो बच्ची है उसके परिवार वालों को कैसे कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स के बारे में पता चलता है अबाउट देम सेल्व्स एंड ऑफ कोर्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, ये पूरी की पूरी कहानी उसके बारे में है. सो इफ यू नेवर एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ थिएटर, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडियन इंक का लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस आप एक्सपीरियंस करें with live original music, dance and pura magical theatrical experience jo aapke samne rahega, revealing both the resilience and humanity of Balloon Dog. Ek bahut hi powerful celebration hai ye jiska hissa aap zarur ban sakte hain. It's happening till the 20th of June at Q Theatre. और आप विजिट कर सकते हैं iticket.co.nz जहां से आप टिकट्स अपने ग्रैब कर सकते हैं. यू कैन विटनेस बलून डॉग एनी टाइम एनी डे, नॉट एनी टाइम बेसिकली बट द गिवन टाइम एनी डे, आज से लेकर टिल 20th of June, मतलब 4 दिन और 4 शोज. आप कोई भी एक शो जो है ये चुन सकते हैं जिसका हिस्सा आपको बनना हो.
3: तो आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो और लोगों तक आपको पहुंचानी है, buzz@hamfm.com, buzz@hummfm.com पर अपने ईमेल्स आप हमें जरूर भेजें.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Hey, देखो मैं आ गए.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
8: Kyun? Kya hua?
7: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne hi documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
9: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
1: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान, सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477.
10: Thinking about becoming a teacher? Visit the Ministry of Education's Become a Teacher store at the Auckland Showgrounds on the 16th and 17th of June. Discover what teaching involves, explore your study options, and find out where a career in teaching could take you.
11: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
12: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 23 minutes after 9 o'clock on The Breakfast Show with Vijay and Pooja on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 104.2 FM aur Rover par aap ke saath ke liye. Thank you so much. Auckland ki ek IT professional hai. Inhone New Zealand ka naam jo hai history books mein dal diya hai.
3: हाँ, कैसे?
2: ये जो प्रोफेशनल हैं, इनका नाम है कामिनी मगनलाल और उन्होंने जो फर्स्ट एवर वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है इसमें न्यूजीलैंड के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं.
3: वाओ.
2: यस. और कामिनी मगनलाल जो हैं, इन्होंने योगा जो है 3 साल पहले ही शुरू किया और वो उन्होंने शुरू किया जब अपने वेलबींग के लिए ही. और इन्होंने इस साल न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट किया इस कंपटीशन में जो अहमदाबाद इंडिया में हुआ था. इस जो वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है इसमें 79 कंट्रीज से 522 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था.
3: That's quite a lot of people, yeah.
2: Yes.
3: और 79 countries भी कम नहीं होता है for competition.
2: पांच दिनों का ये इवेंट था जिसे officially Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी ने ओपन किया था. और कामिनी जो है इन्होंने 3rd प्लेस हासिल किया 2 competitions में, both the forward bending और साथ में supine categories में within the senior C female division for women aged 45 to 55 years. उनका जो अचीवमेंट है मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ न्यूजीलैंड प्रैक्टिशनर है स्टूड अप ऑन द पोडियम एट अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव योगासना इवेंट. इनकी पूरी कहानी जो है आपको हमारे रोवा ऐप पर मिल जाएगी, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं.
3: Definitely go and have a look and then see कि कामिनी जो है कितनी inspiring है. और फिर if I'm not mistaken 21st of June तो वैसे भी World Yoga Day जो है International Yoga Day रहता ये mark किया जाता है. So this is something which is not just good for your body but for your mind as well. तो physical health के साथ साथ mental health भी आपका बहुत अच्छा जो है ये रखता है yoga. और इससे जुड़े जितने भी benefits होते हैं इसके बारे में जितनी बातें करें उतना कम है. पर फिलहाल के लिए कामिनी के बारे में जरूर आप जाकर हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं.
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडीघर जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: 28 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में, और मनोज वाजपेयी की एक फिल्म जो है बगैर शोर किए ही आई थिएटर्स में, और थिएटर्स में आने के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर शोर करना शुरू किया है।
1: कौन सी फिल्म?
0: फिल्म का नाम है गवना।
1: अच्छा, ये कब रिलीज हुई है?
0: आई थिंक वो तो वीकेंड रिलीज हुई होगी, क्योंकि मुझे भी इस फिल्म के बारे में कुछ खास पता नहीं था। विपुल अमृतलाल शाह ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है इस फिल्म को अभी तक मिला है। इस फिल्म की कहानी जो है ये इंस्पायर्ड है इंडिया के 1991 फाइनेंशियल क्राइसिस से, और ये फिल्म जो है इट टेल्स रिमार्केबल स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो हुज कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेड अ क्रूशल रोल इन द कंट्रीज रिकवरी। और इस फिल्म का जो नैरेटिव है, साथ में मनोज वाजपेयी का जो परफॉर्मेंस है, लोगों को बहुत पसंद आया है। इस फिल्म ने मनोज वाजपेयी को द बिगेस्ट थिएट्रिकल ओपनिंग ऑफ हिज करियर भी दिया है।
1: दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, एक चीज तो आई कैन से कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स जो चेंज हुई है, इफ वी सी सर्टेन बॉलीवुड फिल्म्स, उनको जब आप ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो टीजर रिलीज होता है। पहले तो खैर ना तो ट्रेलर होता था ना तो टीजर होता था, सिर्फ ऐसे प्रमोशंस होते थे वेरी सिंपल वे। देन केम अफेक्ट जहाँ पर लोगों ने ट्रेलर रिलीज करना शुरू कर दिया, एंड ट्रेलर रिलीज के बाद फिर ऐसा एक टाइम आया जब जहाँ पर लोगों ने इनफैक्ट टीजर रिलीज शुरू करना कर दिया ना, कि टीजर जो ट्रेलर से छोटा होता है जस्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवी। बट फिर उसके बाद ग्रैंड लॉन्चेस होने लगे, बेसिकली टीजर लॉन्च होने लगा, ट्रेलर लॉन्च होने लगा, एकदम ग्रैंड अफेयर जैसा, जहाँ पर बहुत से लोग जो ये आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, दे कवर द इवेंट, द पीपल हु आर कनेक्टेड टू द मूवी दे कम एंड दे डू सम सॉर्ट ऑफ स्किट टू प्रमोट देयर मूवी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ ऐसी भी फिल्में होती है जिनको कुछ नहीं करना पड़ता, प्रोबेबली अ ट्रेलर और टीजर वुड डू, बट कुछ प्रमोशनल चीज़ें नहीं करनी पड़ती, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग चैनल्स पे जाकर, अलग अलग कॉन्टेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर, एंड स्टिल इट गेट्स द ड्यू क्रेडिट इट डिजर्व्स।
0: एग्जैक्टली, वहीं पर अभी एक और फिल्म आई है, 3-4 दिन हुए, कंगना रनौत की फिल्म है भारत भाग्य विधाता। इस नाम से पहले भी वैसे एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, आई कांट रिमेम्बर कौन थे उस फिल्म में, उस फिल्म का एक गाना बहुत ही खूबसूरत था, इतना मुझे याद है।
1: लेकिन आई थिंक आई नो हु वाज इन दैट मूवी बाय द वे।
0: कौन थे?
1: इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक उसमें के क्या नाम है उनका,
0: मेनन
1: केआरके,
0: नहीं
1: नो केआरके ना,
0: हां हां केआरके, नहीं वो नहीं,
1: आई थिंक देयर वाज अ मूवी जिसमें केआरके थे एंड
0: केआरके किसी और फिल्म में थे।
1: व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी?
0: अरे भाई
1: आपको नहीं याद है?
0: आपको लगता
1: एक तो एक आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म थी जिसमें वो थे, और उसके अलावा क्या नाम था, ग्रेसी सिंह वो भी थी, और नहीं देयर इज अनदर मूवी 2002 में आई थी भारत भाग्य विधाता, और उस पर्टिकुलर मूवी में पुरु राजकुमार थे।
0: यस, पुरु राजकुमार
1: एंड चंद्रचूर सिंह एंड शत्रुघ्न सिन्हा मेरे ख्याल से।
0: तो वो फिल्म, इस फिल्म का एक गाना जो है बहुत खूबसूरत था, इतना मुझे पता है। तो यहीं पर अब कंगना रनौत की ये फिल्म जो है थर्ड डे पर जाकर उसने थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है ये रेवेन्यू में नोटिस किया है, लेकिन मेजरली अगर देखें तो इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है बॉक्स ऑफिस पर।
1: Let's see how it goes. It's based on a true story. I mean, inspired by some true incidents. जो 26/11 जो अटैक हुआ था, not 26/11. I think it was, yeah. I forgot the date, but anyways, तो हाँ, तो जो अटैक हुआ था मुंबई में, one of the you know biggest terror attack जो है ये मुंबई में हुआ था, तो उसके बारे में ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ी एक कहानी है जो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इट्स 23 मिनट्स अवे फ्रॉम 10, थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंडअप आपके लिए हम लेकर आएंगे, एंड विल सी आज राउंडअप में क्या कुछ आपके लिए है।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
4: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers, make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
5: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000 watt upright desktop fan heater, just $15.
4: We can help you get winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
6: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
7: Nissan Big Deals, sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat, plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
8: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
6: What's going on?
7: 19 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में, और थोड़ी देर बाद ऑल वाइट्स टीम जो है कुछ घंटों बाद ईरान के खिलाफ मैदान लेने वाली है फीफा वर्ल्ड कप में। तो वहीं अभी खबरें आ रही हैं कि ऑल वाइट्स मिडफील्डर मैट गाबेट अब वो फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे।
8: ओके, एंड व्हाट्स द रीजन फॉर दैट?
7: उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी रीजन बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें रूल आउट कर दिया गया है ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, और वो शायद अगले कुछ दिनों में घर वापस आ जाए, बट ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का अभी हम इंतजार करेंगे। लेट्स सी व्हाट कम्स अप।
8: दैट्स क्वाइट हार्टब्रेकिंग ना, लोग आई मीन दिस प्लेयर्स दे वर्क सो हार्ड, कितने सालों तक अलग अलग टूर्नामेंट्स, अलग अलग मैचेस, अलग अलग टीम के लिए खेल खेल कर दे रीच दिस स्टेज जहाँ पर उनको इतना बड़ा मैच, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैच खेलने का मौका मिलता है, एंड देन दे फेस सम सॉर्ट ऑफ इंजरी जिसकी वजह से वो सपना उनका बीच में अधूरा रह जाता है। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, यू नो।
7: आई थिंक 1982 में भी न्यूजीलैंड टीम के साथ ऐसा कुछ हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ टूर्नामेंट या स्कॉटलैंड के खिलाफ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन न्यूजीलैंड को खेलना था, और मैच से कुछ दिन पहले उस समय पर भी एक मिडफील्डर थे जिन्होंने अपना एंकल जो है ये ट्विस्ट कर लिया था, समथिंग हैपन, और वो नहीं खेल पाए थे टूर्नामेंट।
8: That is quite heartbreaking, yeah, honestly, because बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वहाँ तक पहुँच कर भी जब उनको अपना जो टैलेंट है ये दिखाने का मौका, या उनको अपना जो एबिलिटी है ये दर्शाने का मौका नहीं मिलता, इट्स रियली रियली हार्टब्रेकिंग। और कभी कभी तो यू नो द मोस्ट हार्टब्रेकिंग थिंग्स दैट शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इज़ बेसिकली व्हेन यू सी अ पर्टिकुलर पॉपुलर सेलिब्रिटी, यू नो, सेलिब्रेटेड जो कहते हैं परफॉर्मर है, एथलीट है या फिर प्लेयर है, जिनका आखिरी मैच होता है, लाइक फाइनल मैच दे प्ले बिफोर दे रिटायर एंड ऑल, तो वो भी इटसेल्फ कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है टू विटनेस ना। एंड इज देयर एनीवन जो इस साल फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं हु इज रिटायरिंग वेरी सून?
7: आई एम नॉट रियली श्योर, वो तो जाकर पता लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि आप हमें इतना बताइए, आज ऑल वाइट्स का पहला मैच है ईरान के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप में, व्हाट डू यू थिंक द फाइनल स्कोर विल बी, ये आप हमें टेक्स्ट करके बताएं 5599 पर।
8: राइट, तो आप भी अपना अंदाजा जो है ये हमारे पास भेज सकते हैं, और 5599 पर अपना जवाब हमें आप सेंड करें, और लेट्स सी कि क्या अनुमान जो है ये आप लगाते हैं।
7: साथ ही में अन्य खबरों में अगर देखें, ओवरनाइट माटामाटा में घटी एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, इट इन्वॉल्व कार एंड अ ट्रक। इमरजेंसी सर्विसेज को सुबह 2 बजे के वक्त बुलाया गया नियर द इंटरसेक्शन ऑफ स्टेट हाईवे 29 और स्टेट हाईवे 24 तेपोई में, और गाड़ी का जो ड्राइवर था, जो एक ही ऑक्यूपेंट था उस व्हीकल का, घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। किसी और को कोई चोट चपेट नहीं लगी है। सीन एग्जामिनेशन जो है सुबह से किया गया और मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। इससे पहले एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है उनको ऑकलैंड हॉस्पिटल ले जाना पड़ा गंभीर हालत में आफ्टर क्रैश इन वैराव वैली। ये कल रात दुर्घटना जो है ये घटी थी, और ये एक्सीडेंट वैराव और टारगेट रोड के जंक्शन पर कल शाम को घटी थी। तो ऐसे और भी अपडेट्स वगैरह हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
9: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL.

0: वक्त है आज की दो बातों का। पहली बात, दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं।
1: ओके।
0: दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, मुश्किलें तो उन्हें होती हैं जिनकी चाल तिरछी होती है।
1: अच्छा, दो दुनिया के सारे रास्ते वैसे सीधे होते नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट्स अ मीनिंग ऑफ हाउ यू आर गोइंग इन लाइफ, व्हिच वे यू चूजिंग, ना कर क्या रहे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए।
0: वाह वाह वाह, क्या एक्सप्लेन किया आपने।
1: आई नो, आई एम वेरी गुड एट इट।
0: दूसरी बात आज की, चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है।
1: ट्रू।
0: हाँ, चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली करता है, इसीलिए चमचों से सावधान रहें।
1: वेरी नाइस यार, दैट्स सो ट्रू। उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, अपनी लाइफ में इसे अमल में लाएंगे और यू नो यू'ल यूज इट टू मेक योरसेल्फ इवन अ बेटर पर्सन। हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा, लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। जाते जाते बस अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, इतना ही कहना है।

0: जो कि आ रही है।
1: My time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल। हाउ आर यू? थोड़ा थोड़ा भीग भीग कर आप आए होंगे शायद। आई हैव नो आइडिया कि कैसे आप आए, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपका दिन किस तरह से स्टार्ट हुआ। थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी हवाओं के साथ साथ ठंडा ठंडा मैं मौसम, चाय की एक प्याली या कॉफ़ी की एक प्याली और साथ में आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका स्टूडियोज में हाजिर हो चुकी हूँ। 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा। माय टाइम लेकर मैं आ जाती हूँ 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, और ये आपके लिए हो जाता है कशिश फूड्स के सौजन्य से। अपना समय आप किस तरह से व्यतीत करते हैं, समय एकदम हम कह सकते हैं धन है, टाइम इज मनी, और जो समय की कद्र नहीं करता, समय एक दिन उसकी कद्र नहीं करता। भाई आप भी तो अपनी समय की कद्र करते हैं, मैं भी समय की कद्र करती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर हमारे सामने से कुछ निकल जाता है, रह जाता है, तो फिर वो हमें खाने लगती है बात, है ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आपके लिए आज का दिन अच्छा जाए, बस यही हमारी मनोकामना है। थोड़ी देर बाद कुछ फैशन की तरफ मोड़ लेंगे और कुछ बातें करेंगे फैशन से रिलेटेड। लेकिन आपको पता है अभी क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है? अभी ट्रेंड कर रही है जहाँ ब्रेकफास्ट शो के कुछ कैचअप्स अगर आपने मिस किए हैं तो BF लिख के भेजें। ड्राइव शो के कुछ कैचअप्स हैं तो उन्होंने अनफिल्टर्ड ड्राइव में थैलेसीमिया के बारे में बात की है, विच इज़ के क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन साउथ एशियन कम्युनिटी, क्या है क्या नहीं है, तो उनकी जानकारी भी आपको मिल सकती है। ड्राइव लिख के भेजें एंड 5599 पे आपको पूरा ऑडियो मिल जाएगा। अभी के लिए मैं गाना बजाती हूँ, लेकिन वापस लौट के आती हूँ विथ सम स्टाइल एंड फैशन।
1: बचाओ क्या

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट्स अड्डा में वैसे आज मैं नोट कर रही थी कि आलिया भट्ट ने कुछ खास एक अलग तरह का ट्रेंड स्टार्ट किया है। एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जहाँ पे ये शायद अपने मूवी जो है एक्शन पैक थीम जो है अल्फा वाली वो कैरी कर रही हैं लगता है, बट इन्होंने एम्पलीफाई करी अपनी पोजीशन जहाँ इन्होंने चारकोल ग्रे ओवरसाइज ब्लेज़र पहना और उसके ऊपर उन्होंने पहना ब्लैक पैंट्स और एक फ्लोई ब्लैक स्कर्ट उसके साथ विद अ वाइट टैंक टॉप। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह से माफ़ कीजिएगा एक फैशन के टर्म्स में इसको बनाया गया, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एक अपना जो लुक था उसको दिखाया जहाँ पे ब्लैक बेसबॉल कैप कभी लिया, कुछ एक्सेसरीज को उन्होंने ऐड किया, एक बड़ा एजी सा लुक था और ये एब्सोल्यूट फैशन लुक था बड़े शार्प नोट्स के साथ। कहते हैं ये फैशन सीन 90s के टाइम का था जहाँ पे अब ये 2026 में लौट कर वापस आ रहा है। ये फैशन स्टेटस जो है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी एलिगेंट है और ये एक कैजुअल आप जो लुक है वो लेकर आ सकते हैं। इन्होंने एक कैप ली और टी शर्ट टाइप कुछ लॉन्ग जैसा पहन रखा है, ओवरसाइज कोट है ऑफ कोर्स एंड ब्लैक पैंट्स के साथ। इट्स लुकिंग डिफरेंट एंड इट्स लुकिंग नाइस। थोड़ा ब्लैक एंड वाइट का ड्रेसिंग जो है अभी प्रॉब्ली इट्स बिकम लाइक अ यूनिफॉर्म इन द वर्ल्ड और मोस्टली एक एनर्जी जो है ये लेकर आई हैं, बट इन्होंने खास तौर पे एक ब्लैक वाइट स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था, क्लासिक ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे, एक लुक ऐसा था जिससे एलिगेंट भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। बट द थिंग व्हाट मैटर्ड मोस्ट वाज दैट के ओवरसाइज कपड़े थे।
0: माय टाइम विद कशिका,
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।

0: प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
1: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
2: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
1: कौन है?
2: हुनुआ और वेटाकरे।
1: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
2: किधर है हुनुआ?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: Reliance Ventilation System।
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: Moisture और ventilation का problem लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
7: Oh, that's not good। हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer। और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111। Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
11: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800-4SUN-TOURS, दैट्स 0800-478-686। लिमिटेड स्पेसेस।
12: सोना संसार पापा टोयोटा के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
13: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
12: सोना संसार पापा टोयोटा, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटा।
14: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटा। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: माय टाइम विद कशिका, ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर, लिव बेटर।
15: A big thank you to you. आपने भेजा है, नाम तो भेज देते प्लीज। 6040 काशिका जी, आई थॉट इट वॉज फ्राइडे टूडे, आई वोक अप विद दैट फीलिंग, और फिर पता चला इट्स ट्यूजडे। हाँ भाई, बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, ये तो मेरा रोज का रोना है। रोज उठती सोचती आज चलो फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, और उठती हूँ कहती अरे आज तो मंडे है, आज ट्यूसडे है। आई टोटली रिलेट विद यू। और ख़ासतौर पे जब ये ठंड का मौसम होता है ना, तो बस मन करता है कि बेड में से निकलो ही नहीं, है ना, ये फीलिंग होती है। ऐश, हाउ आर यू? और आपने भेजा है वेरी ठंडी ठंडी गीली गीली और चाय की प्याली के साथ वाली। गुड मॉर्निंग कशिका जी, थैंक यू जी, वेरी वेरी मच जी। भाई बहुत मज़ा आता है जब ख़ासतौर पर आप लोग यू नो इस तरह मैसेज करते हैं और हम फिर उसे इंजॉय करने लगते हैं। वैसे इंजॉय कर सकते हैं आप FIH हॉकीज वर्न्स वुमेन्स नेशन कप जो है 2025-2026 का, ये 15 जून से 21 जून तक होने वाला है, और सीनियर वुमेन्स आउटडोर जो है ये होगा बस थोड़ी देर बाद। उरुग्वे वर्सेस USA जो है थोड़ी देर में होगा, और लगभग 2 घंटे के बाद जापान वर्सेस इंडिया भी होने वाला है, एंड 5 घंटे के बाद कोरिया वर्सेस फ्रांस, 7 घंटे के बाद चिली वर्सेस न्यूजीलैंड, ये भी होगा। चलो, तो अपडेट्स हमारे साथ साथ आपको डेफिनेटली मिलती चली जाएंगी, एंड हमारे साथ साथ आप जुड़े रहिएगा। वैसे जब आप हमारे साथ जुड़े ही हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हम चाहते हैं कि आप यू नो अगर जीतना चाहे तो जीत सकते हैं, हॉकी लिख के भेजे 5599 पे और टेक्स्ट कर दीजिए, शायद आप एक डबल पास जीत जाएं। एंड गो एंड वॉच द गेम्स hockeynz.flicket.nz पर आप क्लिक भी कर सकते हैं।
3: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं ना, कितना कुछ बॉलीवुड में होता रहता है। अरे इतनी गप्पे होती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है इन सबको देखते हुए। और जब ये गप्पे होने लग जाती हैं और इनमें कुछ नई नई खास खास बातें होने लग जाती हैं, तो फिर तो एक तड़का तो लगाना ही पड़ता है। बट प्रियंका चोपड़ा हैज़ जॉइन द रोलेक्स फैमिली। अब रोलेक्स जो घड़ी है, एक बहुत बढ़िया घड़ी है, एंड शी इज़ दी ऑफिशियल ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस आइकॉनिक लग्जरी वॉच। अब ये वॉच मेकर जो है, इन्होंने ये बहुत ही मेजर मोमेंट था जहाँ पे इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के तौर पर एक कमर्शियल फेस बनकर इसे ज्वाइन किया। और फिर वी ऑल नो दैट बुल्गारी के लिए भी शी हैज़ डन सम ज्वेलरी, लग्जरी ज्वेलरी की ब्रांडिंग भी इन्होंने, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये बनी हुई थी। लेकिन इट्स सच अ प्राउड मोमेंट जब रोलेक्स जो एक कितना बड़ा एक नाम है घड़ियों में, उसके लिए अगर आप कहें कि प्रियंका चोपड़ा को अगर ऐड किया गया है तो हैट्स ऑफ है कि नहीं भाई। ऐसे तो हम बहुत चीज़ों को हैट्स ऑफ करते हैं, लेकिन एक चीज़ को जो मैं अब हैट्स ऑफ करने वाली हूँ वो है हमारे लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो गोविंदा जी के भांजे यानी कि कृष्णा अभिषेक जो हैं आ रहे हैं। एक कपिल शर्मा शो में देखा, इनके कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। और पता नहीं जब ये सामने आएंगे और किस तरह के कैरेक्टर्स लेकर आएंगे, वो देखने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अब आप सोच रहे हो ये कब होने वाला है। 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये होगा द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहाँ कृष्णा अभिषेक इनके साथ राजीव ठाकुर जो हैं लाइव परफॉर्म करने वाले हैं पहली बार। bookmyevent.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं। एक ऑप्शन है आफ्टर पे का, जहाँ पर आप अगर कॉल करेंगे तो शायद आपके लिए इसका भी बंदोबस्त ये कर देंगे। 02104327200 पर आप इनके साथ संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल राइट, यानी कि धर्मेंद्र श्याम जी के साथ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्या बात है भाई, तुम लोग टिकट शिकट नहीं दे रहे हो, चलो चलो जल्दी से जाओ फेसबुक के पेज पर, और वहाँ पर हमने एक फ़ोटो ऐड करी है, उसके साथ अपना एक फन साइड जो है आप शो कीजिए एंड गेट इनटू द ड्रॉ टू विन अ डबल पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी जल्दी जाओ। अच्छा, टाइम तो स्टार्ट हो चुका है भाई। कोई सपना, कोई सपना है तो बताओ, जल्दी करो।
1: Gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: Joe's Supermart uses fiber for their payment systems, while staff secretly use fiber to share funny videos like the one Perry uploaded of his dog skateboarding down a street that happens to have an ad from Chorus which says New Zealand runs on fiber.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
5: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: ये ड्रीम तो खैर मुझे भी बहुत बार आया है, एंड आई थिंक बिकॉज आई यूज टू लव प्लेइंग बैडमिंटन, तो टू ड्रीम ऑफ बैडमिंटन एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स अ चैलेंज, बट इट रिक्वायर्स क्विक थिंकिंग एज वेल। ये एक स्ट्रगल है जिसको कीपअप करना बहुत मुश्किल होता है। देखो मेरे साथ सेम हो रहा है। डिसीजन जो आपका डिसीजन होता है वो बहुत जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी चली जाती है हाथ से। एक स्ट्रगल, एक कॉन्टेस्ट जो लोगों के बीच में होता है, क्विक थिंकिंग, क्विक एक्ट के साथ आपका वो मैन्यूवर हो सकता है। बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी एबिलिटी टू अडेप्ट इनटू समथिंग जो आपके सामने कन्फ्रंट हो रहा है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी। यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग, तो वो आपके पास जब शटल कॉक आती है तो आप उसको कौन से एंगल से, कहाँ से उसको हिट बैक कर रहे होते हैं, कैसे उसको फेस कर रहे होते हैं। तो यस, सो दिस वॉज रियली इम्पॉर्टेंट। एंड जब आपने लिखा कि यू ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, सो आई स्टार्टेड थिंकिंग, हाँ एक्चुअली कि कई बार होता है यू नो कि इन योर सबकॉन्शियस यू आर डूइंग समथिंग, याद नहीं रहता, लेकिन जब कोई आपकी मेमोरी को जॉग करता है तो आप कहते हैं हाँ ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। एग्जैक्टली सेम मेरे साथ भी हो चुका है। सो बट डोंट वरी, आई थिंक ये ड्रीम जो होता है ये एक चैलेंज रिप्रेजेंट करता है जिसमें बहुत जल्दी आपको क्विक थिंकिंग करनी होती है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपके दिल से बहुत करीब होते हैं, और ऐसे ही दिल से दिल तक में आपके लिए हम लेकर आते हैं कुछ अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स। चलिए इन गानों की तरफ अब आपको हमको लेके जाना ही जाना है।

throwback. वैसे एक बात बता देती हूँ, कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा होता है और ऐसे में अगर आप सहज योगा ग्लोबल मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये फ्री मेडिटेशन की क्लासेस जो होती हैं आपको बिल्कुल आपकी सपोर्ट मेंटल वेलबींग के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, इनर पीस को बढ़ाने के लिए आपके लिए क्लासेस होती हैं। हर मंडे के दिन 7:15 से 8:15 मरेज बे में होती हैं, माउंट एल्बर्ट में ये क्लासेस होती हैं आपके लिए। सैटरडेज़ को 10 से 12 बजे सुबह को के लिए, और हार्विक में भी ये क्लासेस होती हैं 7 से 8 बजे, और नॉर्थ कोर्ट में होती है 7 से 8 बजे रात के समय। तो भाई आप डेफिनेटली मुझे अभी कॉल कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू नो एनी अदर फर्दर डिटेल्स कि कहाँ कहाँ की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। और रामलीला जो है ये न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रही है। क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर जो है आपको पूछ रहे हैं कि अगर आप टीम में भाग लेना चाहते हैं, और बात करें मास्टर अशोक से 02117954549 पर। और साथ साथ माँ दुर्गा टेम्पल जो है ऑनस्लो एवेन्यू पापा टोइटो में, ये 20 तारीख को माँ भगवती का जागरण कर रहे हैं। 7 बजे महाप्रसाद होगा, ज्योति प्रचंड की जाएगी 9 बजे के करीब। सो आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है buzz@hamfm.com के जरिए। अभी के लिए कि गाना बहुत दिन से नहीं बजा, मैंने सोचा चलिए मूड्स को थोड़ा बढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत नाचते हैं जहाँ कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: एक बात बताऊं कि बे ऑफ प्लेंटी है ये कंट्री की बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन बन चुकी है द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जहां पे कैंटरबरी इनिशियली वाज टेकिंग द फर्स्ट प्लेस.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: First impressions happen before customers walk through the door. If your signage looks faded or hard to read, people assume more than you think. Speedy Signs creates sharp, professional shopfront signage that makes your business look open, confident, and ready for business. Sometimes the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
2: Bunnings Traders here to help get interior jobs sorted with a huge range of kitchen and laundry cabinetry, flooring, wardrobes and more. Our kitchen experts can help with the plan and design of your next job. Call 0800 134 872 to arrange a quote or book a consultation at Bunnings Trade.
3: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
4: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner winner free chicken dinner. Yeah! Foursquare, what'll it be today? T's and C's apply.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
7: Thank you.
8: It's all I can think about.
7: What does it sound like?
8: Yeah, I'd rather not.
7: Go on, why don't you have a crack?
8: Okay, got a plumbing problem.
7: Oh, I need a bit more than that.
8: They've got your back.
7: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
8: Oh, okay.
9: There's no better plumber to give it a crack.
7: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
8: No, I want a plumber.
1: Advertise with
10: Media Works.
1: New Zealand listens to us.
11: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. An investigation has been launched into the Ministry of Business, Innovation and Employment. It's been driven by the Public Service Commission and focuses on integrity issues relating to a failed technology project. An initial review found MB's decisions, oversight and governance failings led to its downfall and had a significant financial impact. In the States, 8 crew members are believed to have been killed in a military plane crash in the US. The B-52 bomber went down at the Edwards Air Force Base in California while on a routine test flight. There are concerns New Zealand is lagging behind in banning social media for under-16s. The UK is the latest country to make moves by announcing a ban from next year. Researcher Samantha Marsh says it's time we took a stand.
13: Things are a bit quiet in New Zealand at the moment, but you know, I think it's just important to remember that children are being harmed today and we need to act sooner rather than later.
12: And drivers have been urged to take care on roads in Otago. Black ice warnings in place for State Highway 1 from Dunedin to Palmerston, along with sections of 87 and 85. In sport, New Zealand's Football World Cup campaign gets underway in just 2 hours' time. They take on Iran in Los Angeles. All Whites great Shane Smeltz told Football 360 there's only one way to play.
14: You have to score. We can't sit back and just defend. You need to go out at some point and get goals, and that's what's going to bring you the points. I think everyone wants to get out of the group. I think that is the expectation.
12: Football updates brought to you by Hisense. And the sold-out sign is set to go up at Wellington's Henry Stadium for Saturday's Super Rugby final between the Hurricanes and Chiefs. Almost all of the tickets have been sold since going on sale at 10.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
15: Hum par shok suchnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
10: सूचित किया जाता है कि मोटा गुजरात के स्वर्गीय भीकू भाई टेलर की पत्नी महेंद्र चंद्रकांत सुशीला बेन, हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड की मंजुला बेन भीकू भाई टेलर की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0274202441 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, मोटा गुजरात के स्वर्गीय भीकू भाई टेलर की पत्नी महेंद्र चंद्रकांत सुशीला बेन, हेमलता बेन और चंद्रिका की मां लिनफील्ड की मंजुला बेन भीकू भाई टेलर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 0274202441 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वर्गीय सोनी हरिलाल और सविता बहन धर्मसी की पुत्री अरविंद और राकेश धर्मसी की भाई सोनी प्रवीण धर्मसी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0224521984 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, स्वर्गीय सोनी हरिलाल और सविता बहन धर्मसी की पुत्री के पुत्र अरविंद और राकेश धर्मसी के भाई सोनी प्रवीण धर्मसी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0224521984 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि शैलेंद्र सैम नीव इश्वनी के पिता बिंदमती के पति सिंगा टोगा फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0216631001 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, शैलेंद्र सैम नीव इश्वनी के पिता बिंदमती के पति सिंगाटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0216631001 पर आप संपर्क कर सकते हैं। रवि बा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के रामकरण के भाई मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जयकरण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैंगरी लॉन सेमिट्री मैंगरी में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0210834375 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रवि बा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के रामकरण के भाई मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जय करण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैंगरी लॉन सेमेट्री मैंगरी में की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए 0210834375 पर आप संपर्क करें। सूचित किया जाता है कि लाउटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आने वाले शुक्रवार को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप 0210647520 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, लाउटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आने वाले शुक्रवार 19 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210647520 पर संपर्क करें।
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 16, overnight temperature of 10. आज का फोकस बताया जा रहा है. कुछ scattered rainfalls थी, लेकिन वो दोपहर के समय clear होती चली जाएंगी. It feels like 13 degrees right now. 5:12 पर sunset बताया जा रहा है.

स्टोरी तो है ही है, लेकिन इसके साथ कुछ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग है। अब ये इंटरेस्टिंग है अबाउट आई नो व्हाट यू थिंकिंग अबाउट, बिकॉज मैं तो एक्साइटेड हो ही जाती हूँ जब मुझे पता चलता है कि कुछ खास तौर पे न्यूजीलैंड से रिलेटेड। सो इट इज एन एंटीसिपेशन जो न्यूजीलैंड

0: करने वाले हैं वर्ल्ड कप कैंपेन इन लॉस एंजलिस एट 1 PM न्यूजीलैंड टाइम. फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट इन 16 years. वाओ, इजंट दैट इंटरेस्टिंग. एंड साथ साथ ये कह सकती हूँ एक्साइटिंग.
1: बचाओ क्या,
0: जितने लोगों ने ट्यून इन किया वो सोच रहे हैं कि कौन बोल रहा है, तो मैं कशिका आपका साथ निभा रही हूँ 12 बजे तक. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मैं माय टाइम लेकर आ जाती हूँ 10 से 12 मंडे टू फ्राइडे. चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. याद रखिएगा 6 वर्ड स्टोरी जल्दी से भेज दीजिए मुझे. बच्चों से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, न्यू बॉर्न्स.

0: ईट बेटर लिव बेटर. कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जब बड़े मतलब पैदा होते हैं उसके बाद पेरेंट्स थोड़े थोड़े अनश्योर होने लगते हैं कि उन्हें अंडा कब खिलाना चाहिए. गुड न्यूज़ इज़ कि अंडा जो होता है ना बच्चों की डाइट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. खासतौर पे प्लंकेट रिकमेंड करता है मैश्ड एग्स फ्रॉम 6 months ऑफ एज. ये अर्ली एज से बच्चों की रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फर्क लेकर आता है. सो इट्स वेरी गुड न्यूट्रिशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग. 6 महीने से आपका जो बेबी है आप उसको डेफिनेटली अंडा खिला सकते हैं, और वो भी अच्छे से मैश करके. ये नहीं कि भाई ये अंडा उबला है खा लो, अपने आप पटा पटा खाए, नहीं ऐसे नहीं. बच्चा चौक हो सकता है तो उसको अच्छी तरह मैश कर सकते हैं. कई बार तो ऐसा भी होता है कि यू नो हाउ आई वुड डू फॉर माय बेबीज वुड बी हल्का सा एग को मतलब पानी के अंदर डालने के बाद एक उबाला हल्का सा दे देती थी मैं उसको, और उसके बाद निकाल के वो लिक्विड फॉर्म में ही होता था और उसको मैं बच्चे को खिला दिया करती थी. दैट्स वॉट हाउ आई हैव ट्राइड टू डू इट. बट कुछ लोग दूध के साथ भी अंडा डाल के दे देते हैं. सो डिपेंड्स ऑन हाउ योर चाइल्ड कैन टेक इट एंड हाउ योर चाइल्ड कैन रिएक्ट टू इट. बच्चे हेल्दी रहते हैं, वेल बैलेंस्ड मील रहता है उनका. अंडे जो है एक न्यूट्रिशन देते हैं, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर, हाई क्वालिटी प्रोटीन, गुड फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग यू नो बोथ योग एंड वाइट. बच्चों की डाइट में हो तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने लेकर आते हैं. एग वाइट सिर्फ प्रोटीन देता है, एग योक जो है उसमें फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिंस और साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं. और प्रोटीन जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए. अंडे जो है इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज हाई क्वालिटी, एकदम एक कंप्लीट प्रोटीन जो कि बहुत एसेंशियल रहता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स जहाँ ग्रोइंग चाइल्ड के लिए अंडा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey, मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखी है, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगी है तेरा.

0: Streaming on Rover.
1: Maddie didn't think she needed a DVS system.
2: I've got a heat pump. That should do.
1: But it didn't do it, did it, Maddie?
2: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Sun Tours ke successful March 2026 Best of India Tour ke baad ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, LP mein houseboat ka experience aur aamche Mumbai ke Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights aur 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
4: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
9: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six Word Story.
10: अच्छा, सिक्स वर्ड स्टोरी पे पहुंचने से पहले वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल द गुजूज हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, बी रेडी, क्योंकि हंसी का खजाना लेकर आपके लिए आ रहे हैं गुजुबाइनी एक्सचेंज ऑफर. और लेजेंडरी सिद्धार्थ रंधेरिया इज कमिंग बैक. सिद्धार्थ रंधेरियाज गुज्जू प्रोडक्शंस जो है, गुज्जू भाई प्रोडक्शंस, हमेशा एक सेल आउट होता है जहाँ कहीं पे भी जाते हैं. सो लास्ट मिनट तक मत छोड़िएगा टिकट्स खरीदने के लिए. premierTickets.co.nz के जरिए जाइए, जाके टिकट खरीदिए. फॉर द गुजरात मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर इन्हें लाइव देख सकते हैं आप ऑन 3rd of July 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. पहुँच जाइएगा कुछ अमेजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ. ओके, नाउ द टर्न स्टार्ट. में टर्न कर लिया टूवर्ड्स माई टेक्स्ट प्लेटफॉर्म. मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है सिड. ऑफ कोर्स आपने कहा एवरीवन हैज सेकंड चांस कॉल्ड टुमारो. ओ माय गॉड, आई लव इट. एवरीवन हैज सेकंड चांस कॉल्ड टुमारो. एब्सोल्युटली, अगर आज आप हताश हो गए, आप निराश हो गए, तो आप कहते हैं ना कल है ना, तो डेफिनेटली एवरीवन हैज सेकंड चांस कॉल्ड टुमारो. भाई, वी हैव अ न्यू एंट्रेंट एज वेल अभी. हाय कौशिका जी, माई नेम इज जिया. जिया, आपने लिखा है माई सिक्स वर्ड स्टोरी, slept through alarm, very frantic morning. Very good, slept through alarm, very frantic morning. I think जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने टेक्स्ट किया था, जब सुबह हमने शुरुआत किया था, कि काशिका जी, आई थॉट इट वॉज फ्राइडे टूडे, आई वोक अप विद दैट फीलिंग, फिर पता चला इट्स जस्ट ट्यूजडे. बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करना मुश्किल हुआ. और यही सब बातें करते करते ऐश भी सब लोग जुड़ जाइए. थैंक यू जिया, आपने बहुत ही क्यूट सी स्टोरी अपनी भी भेजी है. एंड बोथ स्टोरीज सिड एंड जिया, आप लोगों की बहुत ही कमाल की है. सो एवरीवन हैज सेकंड चांस कॉल टुमारो एंड स्लेप्ट थ्रू अलार्म, वेरी फ्रैंटिक मॉर्निंग. ऐसा कभी होता है वैसे आपके लाइफ में कि आपका अलार्म नहीं बजता? होता है, होता है. बचता नहीं है, और उसके बाद जो भगदड़ मचती है ना वो कमाल होती है. थैंक यू जिया फॉर गिविंग अस अ रियलिटी चेक. बाय द वे, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपका नाम जिया है और मैंने गाना जिया लाइन अप किया हुआ है इस घंटे पे. सुनाती हूँ.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

माहौल बनाने के लिए तो ग्लोबल सेंसेशन करण औजला जो आ रहे हैं, इज ब्रिंगिंग हिज पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ऑकलैंड, और ये चार्ट टॉपिंग आपके लिए एंथम्स लेकर आने वाले हैं जो आप स्पा करीना में 25th ऑफ अगस्त के दिन देख सकते हैं. और यही नहीं, इनके एक स्पेशल गेस्ट है जो हिट मेकर इकी हैं. ये एक अनफॉरगेटेबल नाइट आपके लिए म्यूजिक एंड एनर्जी के साथ लेकर आने वाले हैं. सो बी इन टू विन, बी द फर्स्ट वन टू विन, आई कैन से दैट. करण औजला के लिए आप बताइए एक गाना, के ए लिखिए और कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद है इन ऑर्डर टू विन अ डबल पास. 22nd ऑफ जून के दिन ब्रेकफास्ट शो में ये चांस जो है आप मिस मत कीजिएगा, जहां आपको शायद आपका नाम ड्रॉ में आ जाए. वैसे ज़्यादा जानकारी के लिए हम .rova.nz पर आप पहुंच सकते हैं, livenation.co.nz पर भी पहुंच सकते हैं. और इसकी जो टिकट्स जो है ये कल सुबह से स्टार्ट होने वाली हैं प्री सेल, एंड लाइव नेशन पे प्री सेल 18 जून से होगी. सो करण औजला 25th ऑफ ऑगस्ट, पा करीना, बी देर. हमारे फेसबुक के चांस पर भी आप पहुंच सकते हैं, फेसबुक के पेज पे पहुंच सकते हैं. एक चांस है आपके लिए जीतने के लिए एक डबल पास. टैग कीजिए अपने फ्रेंड को एंड गेट इनटू द ड्रॉ टू विन अ डबल पास.

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: एक बात तो अद्भुत और भी है, जो पुरानी पुरानी बातें जब याद आने लग जाती हैं तो उस समय लगता है कि भाई नॉस्टैल्जिक होने लग जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ कुछ प्यारी प्यारी बातों के साथ। सो काबुलीवाला रविंद्रनाथ टैगोर की, अगर उसको एक नया रुख दिए के आपके सामने लाया जाए तो कितना डिफरेंट है। इट्स सो यूनिक एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन डन बाय अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन MNZM। इन्होंने एक वर्ल्ड प्रीमियर किया है, इसका एक खूबसूरत नाम दिया है बलून डॉग। और ये 21st सेंचुरी के एक एनवायरनमेंट के साथ मिलाकर एक इस बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, जो 5 साल की लड़की बच्ची और एक लोनली माइग्रेंट की कहानी है। तो किस तरह से बच्ची अपनी फैमिली की आंखें खोलती है, वो द ट्रुथ अराउंड अस ऑल उन्हें बहुत प्यारों से लफ्ज़ों में समझाती है। द कहानी इज़ ऑल अबाउट इट। ये चल रहा है 20th of June तक क्यू थिएटर में, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। iticket.co.nz के ज़रिए आप फटाफट जाके अपने टिकट ले सकते हैं। एंड वाई नॉट गो टू द थिएटर फॉर दिस अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। जेकब राजन एंड जस्टिन लुई जो हैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इंडियन इंक थिएटर कंपनी बलून डॉग लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट टू बी मिस्ड आउट।
0: ड्राइविंग योर होम The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज ही मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी को बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप तो
5: आए आए बताओगे।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
0: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान, सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना। बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz। फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477।
8: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
9: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
10: Thinking about becoming a teacher? Visit the Ministry of Education's Become a Teacher store at the Auckland Showgrounds on the 16th and 17th of June. Discover what teaching involves, explore your study options, and find out where a career in teaching could take you.
11: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
12: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
11: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
12: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
13: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

रेस्क्यू में रिसाइकिल में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दैट हमारे पास कभी कभी क्लोदिंग, शूज़, बुक्स, टॉयज़ जो होते हैं अच्छी कंडीशन में होते हैं, और यहाँ जो चैरिटी शॉप्स होती हैं वहाँ पर आप इनको जाके डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें पोस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि चलो ठीक है आप यहाँ से सो इन सो चीज़ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं. डोंट थ्रो अवे हार्ड टू साइकिल रिसाइकिल आइटम्स, जैसे कि सॉफ्ट प्लास्टिक ब्रेड बैग्स होते हैं, बबल रैप्स होते हैं, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे बिन्स में हम लोग रहते हैं, इनको ड्रॉप कीजिए एट द डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स जहाँ लोकल सुपर मार्केट्स और हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं. आपको ये डेफिनेटली मिल जाएंगे. ऑफकोर्स आपका बल्कि फर्नीचर, बिल्डिंग मटीरियल, लार्ज हाउस होल्ड आइटम्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो काउंसिल के कम्युनिटी के रिसाइकिलिंग सेंटर्स पर भी आप जाकर दे सकते हैं. कितने सारे आइडियाज़ होते हैं ना, और इन आइडियाज़ को डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप तक हम पहुँचाएँ, आप तक लेकर आएँ. वैसे हमारे म्यूज़िक स्टेशन आप तक बहुत ही प्यार प्यार से आ जाते हैं, और रोवा स्टेशन हो, रोवा पर जब आप हैं हमारे साथ सुन रहे हैं तो रिवाइंड है हमारा, हम रिवाइंड 70s, 60s, 70s के ट्रैक्स, 80s के जूक बॉक्स, फीजी कीर्तन संग्रह, फीजी कीर्तन भजन, चढ़दी कला, पंजाबी हिट्स, राहत फ़तेह अली खान, कितने सारे आपके लिए ऐसे ऑप्शंस रेडी हो जाते हैं जिन्हें आप सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. दिल से दिल तक. सो जिया, दिस इज द सॉन्ग आई वाज टॉकिंग अबाउट.

आपको मजा आया बड़ी बात है। और यही मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है, भरसक कोशिश रहती है कि आप पेप अप हो जाएं किसी ना किसी तरीके से। एंड दिस इज द मोमेंट जहां मैं कहना चाहती हूं कि कीजिए स्वीकार, काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, मेरी मुलाकात आपसे होगी वो दिन कहलाएगा हम्पवार या बुधवार, जो भी कहना चाहें। वैसे आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, मौसम थोड़ा सा ऐसा वैसा ही चल रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच आप जितने लोगों के भी टेक्स्ट आए हैं। एंड जब आप लोगों के टेक्स्ट आते हैं ना तो मुझे लगता है हाँ मैं आई एम डूइंग समथिंग राइट डेफिनेटली, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग राइट बाई लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आपके लिए ब्रेकफास्ट शो, ड्राइव शो, फिर माई टाइम, लंच बॉक्स, नाइट कैफे, और फिर वीकेंड्स पर आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा माहौल बनाकर हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि तरह तरह की बातें, तरह तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ। सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज, हैव अ ग्रेट ट्यूजडे अहेड। केतन कमिंग अप नेक्स्ट, इनका साथ लंच बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाय।

0: Simply listen for the cue to call from your announcer. Then text HOCKEY to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: It's time to learn.